0: सख्त जरूरत है।
1: मोहब्बत के प्रोफेसर अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
2: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुर शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
1: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

0: ऐकलत
1: का?
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें? अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पूरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ ज्ञान की कुछ बातें, तो आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं बच्चों से अपेक्षाएं नहीं उनकी क्षमता बढ़ाएं। वर्तमान समय बच्चों की शिक्षा तथा आजीविका को लेकर प्रत्येक माता पिता अत्यधिक सचेत, प्रयासरत और चिंतित भी है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन करके दिखाए, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करे, शीर्ष स्थान पर पहुँच कर दिखाए, जिससे कि माता पिता का सर समाज में, गांव में, शहर में ऊंचा हो। इन्हीं अपेक्षाओं को लेकर ज्यादातर वाला खंड बच्चों पर पढ़ाई को लेकर निरंतर दबाव बनाते जा रहे हैं। बच्चों से असीमित अपेक्षाएं माता पिता की आंखों को धुंधला कर रही है, जिसके कारण उनको बच्चे की क्षमता, रुचि, दक्षता, कौशल, कला, समस्याएं और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के अपने सपने नजर नहीं आते। इसके फलस्वरूप यही देखा जाता है कि प्रत्येक माता पिता खुद के सपनों व अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पर डालते जाते हैं। प्रिय पालकगण और माता पिता, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर अपेक्षा न रखें या उनके लिए सपने न देखें। जरूर सपने देखें, परंतु ध्यान रहे कि खुद के सपने बच्चों से पूरे कराने के बजाय बच्चे को उसका अपना सपना पूरा करने में सहयोग करें। बच्चों से अपना सपना पूरा कराने के लिए बच्चों के सपनों की बलि ना चढ़ाएं, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। तो हम चर्चा कर रहे थे बच्चों से अपेक्षाएं नहीं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाएं। उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। हर कोई दूसरे के सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करते करते स्वयं के सपनों की कुर्बानी देता है। किसी भी इंसान को पूर्ण संतुष्टि और खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह स्वयं का सपना पूर्ण नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपेक्षाओं की। बच्चों पर अपेक्षाएं नहीं बल्कि विश्वास रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपेक्षाएं बढ़ाने से बच्चों का प्रदर्शन बेहतर नहीं होता, बल्कि बच्चों की क्षमता बढ़ाने से उनका प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतर होता है। अपेक्षा रखने से पहले बच्चे की क्षमता की जांच करें, बच्चे की रुचि व सपने की पहचान करें। बच्चे की जो कार्य क्षमता है उसकी भी जो भी कार्य कुशलता है, दक्षता कौशल व कला को विकसित करने पर जोर लगाएं, प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, सपने देखना व पूरे करना सिखाएं। फिर जब बच्चे के अंदर वो क्षमता एक बार आ जाए तो यकीन मानिए आपका बच्चा आपकी अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन करके दिखाएगा। जो सपना आपने अपने लिए देखा था उसे भी पूरा करके दिखाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी पालकगण व माता पिता तथा बच्चों के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे बच्चों से अपेक्षाएं नहीं उनकी क्षमता बढ़ाएं। एक होता है तुलना करने की, बच्चों की तुलना ना करें, अपने बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से कभी ना करें, क्योंकि हर एक बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। जब हम बच्चों की तुलना करने लगते हैं तो बच्चों में ही भावना उत्पन्न होती है, वे हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर उनकी कार्य क्षमता गिरने लगती है, जिसके कारण वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? तुलना करने की जगह आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें सकारात्मक संकल्प दें, जैसे तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, सफलता तुम्हारे लिए ही बनी है, ऐसे ऐसा बोलिए उसे, ऐसे ऐसे संकल्प दे उसे। हाँ, जब ऐसे संकल्प वो विचार बच्चों को देंगे तो बच्चे जो हैं बच्चों में उत्साह बढ़ेगा और उनकी कार्य क्षमता भी तेजी से विकसित होगी। असफलता में भी बच्चे को साथ दें, कभी कभी बच्चे असफल भी हो जाते तो उसमें हमें बच्चों को साथ देना चाहिए। बच्चों का साथ माता पिता को बहुत जरूरी, माता पिता के साथ से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चों की हर असफलता में उसके साथ खड़े रहें, ऐसे समय पर बच्चों की जो भावनात्मक जो है उनको भावनात्मक उनको सहयोग चाहिए। सहयोग की बहुत जरूरत होती है, माता पिता ही बच्चे के सबसे करीब और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। भावनात्मक सहयोग देने का अर्थ यही है कि बच्चे की सफलता माँ बच्चे की जो असफलता को माता पिता स्वीकार करें और बच्चे को यह विश्वास दिलाएं कि तुम्हारे बार बार असफल होने पर भी साथ और सहयोग देने के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आपका ये कथन आपके प्रति बच्चे का विश्वास बढ़ाएगा और यही विश्वास बच्चे का आत्मविश्वास बनेगा और यही आत्मविश्वास आपके बच्चे को हर क्षेत्र में असीम सफलता दिलाएगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे री आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग द ड्रामा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की जहां हम बात कर रहे हैं, खुद को समझा और किस तरह से खुद को मैनेज करने का प्रोसेस है, जहां रिस्पांसिबिलिटी की बात आई तो सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मेरे ही प्रति थी। आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज में जानते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी के बाद कौन सा एस्पेक्ट है जिंदगी का जिसको देखना जरूरी है जब हम सेल्फ को मैनेज करने की बात करते हैं। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुश्री शिवानी, जिस तरह से रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर हमने बात कर रहे थे, बड़ी अमेजिंग बात यह है, क्लैरिटी ये हुई कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ही प्रति होती है, उसके बाद बाकी सारी जिम्मेदारियां अपने आप आती जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ें और जाने कि अगला पड़ाव क्या होगा।
1: जैसे हमने देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट, तो हम हर चीज अपने से जोड़कर कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले आए स्व के प्रति हमारी जिम्मेवारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, क्योंकि हमने पहले दिन ही देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट में चार एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है, द फोर आर्स दैट वी हैड सेड, सो दैट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेज। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन, कि जीवन में मेरी अपने प्रति जिम्मेवारियां और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य, पर्पस ऑफ माय लाइफ, एंड वो पर्पस को अचीव करने में वैल्यूज ऑफ माय लाइफ। तो वो एक कंपस, क्योंकि एक कंपस नहीं होगा तो जैसे एक दिशाहीन जीवन हो जाता है, बट वंस यू हैव अ कंपस यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग, सो द कंपस इज द कंपस ऑफ माय वैल्यूज। तो जीवन में चलते चलते अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है मन में, कई बार डिसीशंस लेने में कॉन्फ्लिक्ट होता कि ऐसा करें या ऐसा करें, तो जब डायरेक्शन नहीं पता चल रहा तो अपना कंपस निकालना है। कंपस निकालें और कंपस पर ही डिपेंड करें कि कंपस विल शो मी द राइट डायरेक्शन, लेकिन वो कंपस पहले तैयार होना चाहिए, एंड दैट कंपस इज द कंपस ऑफ माई वैल्यूज। तो अपनी वैल्यूज पर अगर चलकर डिसीशन लेंगे तो हम जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे लिए एटलीस्ट हित में होगा, और जहां मेरे हित में होगा ऑटोमेटिकली उसमें सारा कल्याण ही समाया होगा। एंड इट समटाइम्स सीम्स कि जब हम वैल्यूज पर चलते तो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं, इनफैक्ट कुछ न कुछ लगता कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपस विल ऑलवेज शो मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कि लॉन्ग टर्म ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम सेल्फ को नहीं पहचानते तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर आता है, बिकॉज वी सो कि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी

0: वो आर्ग्यूमेंट हो, ना मुझे उसको फेस करना पड़े, ना वो मुझे कुछ कहे, ना मुझे सुनना पड़े, तो ये क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं. देन रिलेशनशिप्स विद अदर्स, देन रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, इसमें भी तो कहीं उतनी हीलिंग नहीं है. आई डोंट नो, आज अगर हम किसी से कहें रिलेशनशिप विद सेल्फ, तो दे विल जस्ट लुक, अपने आप से कौन सा रिश्ता होता है? रिश्ता तो दूसरों से निभाया जाता है, अपने आप से रिश्ता इज समथिंग दैट वी हैड नॉट इवन थॉट ऑफ. के आई वॉज जस्ट टॉकिंग इन अ प्रोग्राम एंड आई सेड, वट अबाउट स्पेंडिंग सम टाइम टॉकिंग टू योर सेल्फ, के सारा दिन में इतने लोगों को पूछते हो क्या हाल है क्या हाल है, एक मिनट रुक के अपने आप से भी तो पूछ सकते हैं क्या हाल है. एंड देयर वर पीपल एंड दे सेड, अपने आप से कैसे पूछा जाता है, मतलब द कॉन्सेप्ट वॉज सो एलियन, लाइक ये औरों को पूछना तो बहुत ईजी है क्या हाल है, ये अपने आप को कौन पूछता है, तो वो ज्यादा उनको लगा था कि ये कहीं मतलब पता नहीं कोई अजीब सी बात है.
1: मैं somebody and he says कि मुझे तो ये रिलेशनशिप, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप शब्द से ही इतनी चिड़ हो चुकी है, क्योंकि हर जगह यही बात किया जाता है. एंड हाउ टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, इफ रिलेशनशिप आर देयर तो आर देयर, उन पर वर्क क्या करना है, लाइक पीपल आर बिकमिंग सो वेरी ऑफ इट कि हमें नहीं जानना उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो मिलना चाहिए था वो खत्म होता जा रहा है शायद.
0: किससे मिलना चाहिए था?
1: जो रिलेशनशिप्स में हम ढूंढ रहे थे.
0: हाँ, तो फिर अगर हम गलत जगह पर ढूंढेंगे तो और वहां नहीं मिलेगा, तो ये गलती किसकी है? अगेन लाइक यू सेड, रिलेशनशिप्स में जो मिलना चाहिए था, रिलेशनशिप्स में मिलना नहीं है कुछ भी.
1: या दिस इज यू नो लाइक
0: इट इज like this, we are taking relationships only for receiving. ki mujhe ye chahiye, mujhe ye chahiye, aur fir jahan jahan dhoond rahe hain, it's like a hide and seek game going on.
1: fir bahut logon ka ye bhi kehna hota hai ki agar relationship mein kuch milna hi nahi hai to fir relationship ki zarurat kya hai.
0: exactly, so important question ki agar relationship mein main itna effort kyu karu, fir itna inke sath bhi adjust karu, ye bhi karu, tolerate bhi karu, agar inse kuch milna hi nahi hai mujhe to main itna sab kyu karu, to what is the other option, ki main akele rahu. And I do not come into contact with people.
1: नहीं, फिर मैं और लोगों को ढूंढता, अकेले तो मैं रह नहीं सकता.
0: वो और लोग भी तो वैसे ही वाले होंगे आपके. So here the important realization is कि relationships हमारे लिए बहुत बहुत बहुत matter करते हैं. क्यों matter करते हैं? Relationships में हमें मिलना नहीं है कुछ भी, उस एंगल से नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन relationships इसलिए matter करते हैं क्योंकि एक relationship में ही मेरे पास जो है एनर्जी, चाहे वो प्यार की है, शांति की है, खुशी की है, वो एनर्जी मैं क्रिएट करता हूँ, और जब मैं आपकी तरफ उसको ट्रांसमिट करती हूँ तब वो पहले मुझे मिलता है.
1: तो मैं महसूस करता हूँ,
0: आई फील इट फर्स्ट,
1: यू नो. अच्छा, रियलाइजेशन ऑफ माई ओन इनर वैल्यू इज थ्रू रिलेशनशिप. ओह यस.
0: सो द एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस पीस, लव एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीजें तो आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस. नाउ आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर देम देयर. इफ मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, देन आई एम नॉट गेटिंग. परमात्मा ने आकर सिर्फ फॉर्मूला चेंज किया. इट्स नॉट आस्क, मुझे एक्सपीरियंस करना है, इट इज गिव, एंड व्हाइल यू आर गिविंग इट विल फ्लो थ्रू यू, एंड द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट
1: इज मी.
0: इट्स मी. अगर मैं रिलेशनशिप्स में नहीं हूं, इफ आई एम नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट, कई बार ऐसा होता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अकेले बैठ जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जीवन कैसे हो जाएगी? क्योंकि जब तक मैं इंटरेक्शन में नहीं आती तो मुझे मौका नहीं मिलता वो एनर्जी क्रिएट करने का, वो एनर्जी एक्सप्रेस करने का, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एनर्जी एक्सपीरियंस करने का.
1: तो इसीलिए हम जो रिलेशनशिप से थके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो सारी नेगेटिविटी कर रहे हैं.
0: तो वो सबसे पहले किसको मिल रही है?
1: मुझे ही मिल रही है. तो एक तो नेगेटिविटी ऑलरेडी है, दूसरा जैसे ही मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ वही नेगेटिविटी और क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम में से हर कोई अब ये चाह रहा है कि बस हम रिश्तों में और नहीं घुसना चाहते, नहीं फंसना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोझ लगने लग गए.
0: वो बोझ इसलिए लगने लग गया क्योंकि हम रॉन्ग एंगल से फॉर्मूला को यूज कर रहे थे. अच्छे से अच्छी चीज भी रॉन्ग डायरेक्शन से अगर यूज करनी जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो जो जनरल स्टेटमेंट अब है वो ये, रिलेशनशिप्स जस्ट डोंट वर्क, दे डोंट वर्क. अब व्हेन वी आर सेइंग रिलेशनशिप्स डोंट वर्क, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आई एम नॉट गेटिंग,
1: दे डोंट गिव एनीथिंग,
0: दे डोंट गिव एनीथिंग.
1: नो, बट पीपल आर ओपन अबाउट इट, आई डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम माई रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग इन दैट रिलेशनशिप.
0: सो आज से हमें सिर्फ उस

0: एनर्जी फ्लो होगी वही एनर्जी वापस मिलेगी. तो इट्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग. दिस इज द फॉर्मूला, गिव एंड रिसीव. बट वी थॉट टेक एंड गेट. कीप ऑन. मेरा कुछ रोल है उस रिलेशनशिप में? दैट आई डिडंट नो. इट वॉज ओनली टेक टेक टेक टेक. तो फिर वो क्या हो गया? आज किसी से हम पूछे
1: वो टेक टेक, और उसके लिए मैं करती थी सिर्फ कर्म तो कर रही थी. अगर अगेन ये नहीं मुझे पता था कि कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जैसे ही जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, जो भी है, चाहे मेरा बेब बच्चा है या कोई भी है, उनके होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत सारी चीजें कर्म करूंगी उनके लिए.
0: वो तो आउटसाइड हो गया.
1: हाँ, पर मेरे लिए तो वही इम्पोर्टेंट था, तो वो मैं कर्म करती रही. और उसके बाद अगर वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा वो कर्म करने के बाद, तब मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और फिर आप मेरे लिए नहीं कर रहे.
0: सो दैट विल बिकम एक्सपेक्टेशंस कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने इन रिटर्न क्या किया. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एटलीस्ट इन टूडेज टाइम, अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से मेंटेन करके चलना चाहते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंट, हम खुश रहना चाहते हैं, तो कितने लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए? हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक?
1: आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो अब और मैक्सिमम लोग ये बोलते भी हैं कि हमारे जीरो एक्सपेक्टेशन.
0: जीरो एक्सपेक्टेशन वो बोलते हैं.
1: हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते.
0: दैट्स नॉट इन द नेगेटिव सेंस कि उससे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. बट नो एक्सपेक्टेशंस मीन्स कि यू गिव फॉर द फीलिंग ऑफ योर गेटिंग इट व्हाइल इट्स गोइंग. अब वहां से आता है या नहीं, डोंट थिंक अबाउट इट. हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देने में मुझे अच्छा लगता है. लेट्स पुट दैट एज आर बेंचमार्क कि आपको जो कुछ देने में अच्छा लगता है, अगर उसको हम फिजिकल रूप पर,
1: हमें जो चाहिए वो हम देना शुरू कर दें, तो वो हमें तो मिलेगा.
0: एब्सोल्युटली. परमात्मा हमेशा कहते हमें कि तुम्हें जो चाहिए ना पहले तुम दो. सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, रिस्पेक्ट दो, बिकॉज यू विल फर्स्ट बी गिविंग इट टू योर सेल्फ. हाउ डू वी वर्क विद जीरो एक्सपेक्टेशंस? इट्स अगर फिजिकल रूप से देखें, हम किसी को एक गिफ्ट देते हैं. अभी आज क्या होता, मैंने आपको ये गिफ्ट दिया, आपने मुझे क्या दिया? या मैंने जो आपको गिफ्ट दिया वो तो 2000 का था, आपने मुझे जो गिफ्ट दिया वो वाई डिड वी गिव? वर वी गिविंग फॉर द विद द इंटेंशन दैट नाउ इन रिटर्न इफ आई हैव गिवन अ गिफ्ट ऑफ 2000 आई शुड गेट अ गिफ्ट ऑफ 3000 इन रिटर्न? नो. सेम जो ये गिफ्ट का फ्लो है, अगर आपको गिफ्ट देना है आप दीजिए, जितने का देना है उतने का दीजिए, जितना देने से आपको कंफर्टेबल लगता है उतना दीजिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि यू आर टू गेट अ गिफ्ट इन रिटर्न. अगर वो देने में इट मेक्स यू फील गुड, एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ एनर्जी. ये गिफ्ट तो ठीक है, इजी है.
1: नो, आई कैन मेक इट आउट. यू नो, आजकल बर्थडे में देयर इज अ रिटर्न गिफ्ट.
0: वो तो ठीक है ना, दैट आई टुक एन एग्जांपल, बिकॉज फिजिकल करने से इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड.
1: कि बच्चा पहले जहां पे भी अपने किसी भी फ्रेंड के पास जा रहा है, नो इट हैज चेंज्ड. Suddenly I can make it out, you know. उसके मन में पहले ही होता है कि रिटर्न गिफ्ट क्या होगा. यू नो, समवेयर वो जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक छोटी सी चीज थी, कहीं न कहीं हमने पूरे थॉट प्रोसेस में किया हुआ है.
0: सो वी नीड टू गिव. अब जो आप संबंधों में कल चले, उतना दें जितना देते हुए इट्स योर कैपेसिटी. यू नो, आज हम क्या कहते हैं, मैंने इतना किया जितना मैं कर सकती थी, उससे भी कई गुना ज्यादा किया. क्यों किया? अगर आपसे नहीं हो रहा आप मत करो, लेकिन इसलिए नहीं करो क्योंकि सामने वाले ने भी मुझे उतना देना है. वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग इन आर रिलेशनशिप्स विद द प्रोसेस ऑफ गिविंग. उतना देना है जितना आई कैन गिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. आपके पास जितनी खुशी है, जितना प्यार है, जितनी शांति है, आप उसको देते जाएं. जितना देंगे उतना आपके अंदर.
1: वही तो मैं कह रही हूँ, राउंड. इनफैक्ट अब मुझे जितना चाहिए मैं उतना देना शुरू करूँ.
0: एब्सोल्युटली. नॉट विद द एक्सपेक्टेशन कि आप मुझे इन रिटर्न क्या देंगे.
1: नहीं, मैं ये मान के ही चलूँ ना फिर कि जितना मैं दे रही हूँ वो मेरा सारा मुझसे ही जा रहा है.
0: एब्सोल्युटली. मैं ये समझ कर चलूँ कि जब मैं दे रही हूँ तभी मुझे मिल रहा है. अब मुझे कब मिलेगा, किससे मिलेगा, नहीं, मिलने वाला पार्ट हो गया देते टाइम. दिस इज लाइक अ गिफ्ट के जब हम वो दे रहे हैं, वो गिफ्ट पहले मुझे मिल रहा है, फुल स्टॉप, मिल गया.
1: आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव गिवन इट,
0: एंड बाय गिविंग इट इट इंक्रीजेस इन मी. जितना हम खुशी से, हमने पहले भी देखा वही कर्म है.

0: मचा के भी हो सकता है, शांति से भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है। जितना उसको प्यार से शांति से करेंगे वो शांति की शक्ति हमारे अंदर
1: और
0: बढ़ती जाएगी। तो वो वहां से नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरे अंदर क्रिएट करने से वो अपने आप बढ़ती जाएगी। सो रिलेशनशिप्स मीन्स गिविंग एंड गिविंग, रिसीविंग अपने आप हो रहा है।
1: रिसीविंग पहले इनफैक्ट अगर हम ये थॉट प्रोसेस लें, अगर हम करके देखें, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट आउट।
0: इट्स जस्ट लाइक दैट, वंस आई जस्ट, बिकॉज एनर्जी फ्लो तो ऐसे ही कर रही है। अब क्या हो रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, दिस इज अ नेगेटिव थॉट, इट्स अ पेनफुल थॉट। अब मैं आपको मुझे चाहिए के एंगल से जब रिश्ते में आती हूँ तो मैं आपको कौन सी एनर्जी दे रही हूँ,
1: नेगेटिव
0: नेगेटिव। तो मतलब मुझे क्या मिला
1: कि ये मुझे देंगे कि नहीं देंगे,
0: तो
1: मुझे कैसे बात करेंगे, मुझे कैसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे,
0: तो मुझे क्या मिला,
1: पूरा नेगेटिविटी।
0: मैंने सोचा किसने दिया मुझे,
1: उन्होंने दिया। ओ यस, इज अ फॉर्मूला विच वी नीड टू वर्क ऑन। वेरी गुड शिवानी, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आज जो रिश्तों को देखने का एक नया अंदाज हमारे सामने है कि कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है, और हर बार की तरह एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तर्क की कसौटी पे अगर हम देखते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं, तो इट रियली वर्क्स, यू नो, एनर्जी का फ्लो अगर हम देखें। लेकिन यही है कि अपने अनुभव को, अपने अनुभव से बड़ी और कोई कसौटी नहीं हो सकती।
0: We'll explore this more.
1: इसको हम अपनी आने वाली कड़ियों में जरूर करेंगे। आज की इस बातचीत के लिए थैंक यू सो मच।
0: ओम
1: शांति। देखना यही है कि क्या हमें चाहिए। अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें प्यार चाहिए, खासकर रिश्तों में तो हम प्यार तलाश रहे होते हैं, कई बार खुशी तलाश रहे होते हैं, कई बार शांति तलाश रहे होते हैं। ये फॉर्मूला आप अपना के देखें कि मुझे चाहिए। सपोज अगर अपने आप से हम बात करें और कहें कि इस रिश्ते में मुझे प्यार चाहिए, तो उतना ही प्यार देने की कोशिश करें, देना शुरू कर दें। ये अनुभव एक दिन के लिए करके देखें, तो क्या मैं प्यार का अनुभव कर रही हूं विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वो मुझे देंगे, या ये कहें कि उनसे ही प्यार मुझे मिलेगा। मैं जब प्यार अपने आप को देना, उनको देना शुरू करती हूँ, किसी को भी देती हूँ, वो मुझसे होकर गुजर रहा है। ये थॉट अगर हम अपने साथ रखें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर अपने अनुभव को आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करें। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी आपका अपना प्रोग्राम है। हर रोज हमारे साथ कुछ नया हो रहा है, कुछ नया घट रहा है। नए अंदाज से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा था, अब रिश्तों को देख रहे हैं। इन्हें एक्सप्लोर जरूर करें। कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, कोई अनुभव है आपका, हमारे साथ शेयर करें, या तो फोन पर संपर्क करें, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब एक नई ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि जो भी बात हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं, वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। तो जरूर इन सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, ताकि वो खुशी, वो पीस, वो शांति, वो प्रेम जिसकी मैं अधिकारी हूँ, हम सब अधिकारी हैं, हम अनुभव कर पाए। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लेते हैं आपसे विदा। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है,

0: उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स. एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी. 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क. सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस. अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा. तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है. और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर. उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: अला अला अला.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ और एक बार फिर जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीख रहे हैं, जिसे हम लाइफ स्किल्स कह रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में बहुत कुछ नया सीखा अपने बारे में और देखा कि किस तरह से माइंड पावर, थॉट पावर जो है वो ना सिर्फ मेरे रिश्तों को, मेरे पूरे जीवन को, बल्कि मेरी बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं किए हैं हमने, जो हमारे बैकलॉग में चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बहुत सारी बातें तो आपने हमें हमारी बॉडी के बारे में अवेयर करके बताई, ये भी बताया कि एक एक थॉट, एक एक फीलिंग कैसे विजुअलाइज करके हम उसको हील कर सकते हैं। बात करते हैं उन मुद्दों की जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने पहले भी इसी श्रृंखला में बात की थी कि वो नहीं छूटती हैं, वो जो एक दर्द है, एक गुस्सा है, एक हर्ट है, मतलब वो थॉट आते ही, वो घटना सामने आते ही वो सब कुछ सामने आता है और बहुत मुश्किल होता है पास से निकल पाना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कम आउट?
1: सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इफेक्ट कितनी पावरफुल हो रही है बॉडी पर। आज कई बार कोई इस प्रकार के इमोशंस हो, इमीडिएट हार्ट अटैक आ सकता है। हैंसेल की, जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत काम किया है, उनका कहना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनका कारण है कि वह किसी को माफ नहीं कर पाते और वह जो फीलिंग है उसके कारण उनको इस प्रकार की बीमारी भी हुई। तो जब जब भी वह फाइल खुलती है तो सारी नेगेटिव इफेक्ट, न केवल मन पर, आपने जो कहा मन पर तो इफेक्ट हो ही रही है कि बॉडी पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। यह भी एक पावरफुल रीजन है कि इन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जितना उससे ऊपर उठेंगे तब ही आप पूरे स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकेंगे।
0: तो क्या करें, मतलब हर बार यही आ जाता है सवाल कि क्या करें, ये रिजॉल्व करें और कैसे करें, उस पर आते हैं। पहले ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक समवेयर वी नीड टू नो कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, मुझे धोखा दिया था, चीट किया था,

0: you know, it's like I'll not say it comes, but I create, continue to create, even if I don't want to.
1: Yeah.
0: It just comes. It's because we don't want to forgive. Forgiving is not difficult. Forgiving is
2: very easy. We don't want to forgive.
0: We don't want to forgive. अब मैं क्यों नहीं forgive करना चाहती? क्योंकि गलती उनकी इतनी बड़ी थी, दर्द मुझे इतना हुआ था, तो क्यों मैं फॉरगिव करूं? अगर मैं फॉरगिव करती हूं तो फिर वो और वो ही करेंगे. यू नो कितना ज्यादा
2: हम वो जस्टिफाई हो जाएंगे फिर.
0: अगर मैं ही बार बार माफ करती रहूं तो वो तो फिर से चलो कुछ होती हैं जीवन की बड़ी बातें जिसमें यू नो विच कैन बी लाइफ चेंजिंग. लेकिन छोटी छोटी बातों में ले लेते हैं. सारा दिन बातें हो रही हैं जो हम कहते हैं मैं अगर हर बार इसको बात को हल्का कर दूं, माफ कर दूं, तो ये तो हर बार करते जाएंगे. तो औरों को सुधारने के लिए अपना नुकसान. एंड फिर वो इतना संस्कार पक्का होता जाता है, इट बिकम्स माई नेचर टू होल्ड थिंग्स अगेंस्ट पीपल, नॉट बींग एबल टू फॉरगिव बिकॉज आई से उनकी गलती इतनी बड़ी थी. बहुत सारे भाई बहने हमें मिलते हैं हु आर कैरिंग बर्डन पास्ट. हुआ है जीवन में, इट कुड बी एनीथिंग. कुछ समय पहले एक बहन से मिलना हुआ जो ये टेलीविजन का प्रोग्राम काफी समय से देख रहे हैं, और उन्होंने आकर अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक दिन अपने किसी दोस्त के घर भेजा जो अकेला था. वो अबाउट 50-year-old पर्सन था जिसकी फैमिली किसी और सिटी में गई थी. तो पेरेंट्स ने कहा वो अंकल अकेले हैं, आप आज उनके घर चले जाओ. And that person, and this girl was 11 years old. That 50-year-old man physically abused this 11-year-old girl. Today, that lady is 40+.
2: Lekin, 11-year-old.
0: Yeah, so 11-year-old girl. Today, she's 40+. लेकिन ये 30 साल से ऊपर की जर्नी में उसने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पकड़ के रखी है. She openly says, "I hate my parents." I thought she'll say, "I hate that person," जिसने ये किया. She said. उससे मुझे कोई इतना लेना देना नहीं. गलती किसकी थी इसमें? मेरे पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी मेरा ध्यान रखना. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां भेजा, तो पूरी गलती मेरे पेरेंट्स की. शी कैरीड दैट रिजेंटमेंट इन हर फॉर मोर देन 30 years नाउ. रिजल्ट आज वो एडिक्शंस में है और वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल के आ रही. कितनी इतनी नफरत मेरे अंदर भरी है कि जब तक मैं ये नहीं लेती आई डोंट फील गुड एट ऑल. नहीं तो वो माइंड में मेरे वही थॉट्स चलती रहती है. मैरिज हुई, बेटी है, लेकिन डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी. करियर वाइज कुछ भी नहीं कर पा रही. फिजिकली भी कुछ एक एलिमेंट्स लगी हुई है. पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ओनली बिकॉज 30 years से ऊपर वो नफरत पकड़ के रखी है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये रिजेंटमेंट नहीं कैरी कर सकते, इवन इफ द पास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी वेरी डैमेजिंग. चाहे कुछ भी हुआ हो, we need to forgive, क्योंकि उसी से हमारी हीलिंग होंगी. नहीं तो उस बहन को देखकर मुझे लगा देखो पूरी जीवन इस नफरत को पकड़ने की वजह से इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, चारों एस्पेक्ट्स पर कहीं भी हेल्दी नहीं चला.
2: आई थिंक रक्ष पटेल, क्यों हम फॉरगिव नहीं करते? क्योंकि शायद हम उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन चाहते हैं. तो अब वो तो आएगा नहीं क्योंकि लगता है वो तो खत्म हो गया. तो इसीलिए अब वो प्राप्ति तो होने वाली है नहीं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं करते हैं. हम उसको पकड़ के रखते हैं या रिजेंटमेंट या गुस्से में रहते हैं कि वो तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो वापस नहीं मिल पाएगा जो था हमारा इतना सुंदर.
0: नहीं, हम अपने
1: डैमेज तो सोचे ना. जैसे शिवानी बहन ने कहा, मुझे मेरे दो पेशेंट के एग्जाम्पल याद आए. यहाँ तो डिप्रेशन सिर्फ हुआ है, वहां तो सिजोफ्रेनिया हुआ है. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अब्यूज्ड. आज दोनों सिजोफ्रेनिक है. तो देखो उन्होंने इतना उसको दिल पर ले लिया कि पागलपन आ गया. तो अगर वहीं पर माफ कर देते जल्दी से, कोई टेक्निक को अच्छे से समझ लेते तो बीमारी नहीं होती.
2: माफ करना क्यों जरूरी है?
0: क्योंकि माफ करने से मेरी कितनी सारी हीलिंग हो गई ना. देखो जैसे गिरीश भाई ने कहा, एक एक थॉट हमारे सेल पर वर्क कर रही है, माइंड पर वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के हर सेल पर वर्क कर रही है. तो हेट्रेड की थॉट है ना, आई एम कैरिंग अ होल बंच ऑफ थॉट्स ऑफ हेट्रेड. तो पूरे इफेक्ट नहीं आएगा. एनर्जी है, वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगी. जिनसे भी मैं मिलूंगी उनको मुझसे कौन सी वाइब्रेशंस मिलेंगी? इट्स लाइक द परफ्यूम यू आर यूजिंग, That is your energy. तो अगर आपने नफरत की परफ्यूम यूज की हुई है, आपके किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा. I'll come near you and I'll move away.

0: और लेकिन अब आगे की डेस्टिनी, इसके बाद मुझे कैसी क्रिएट करनी है, दैट्स कम्प्लीटली इन माई हैंड्स नाउ. नफरत पकड़ के रखो, दिस विल बी द डेस्टिनी. फॉरगिव, द वर्ल्ड विल बी ब्यूटिफुल फॉर मी. देयर वाज अनदर लेडी, शी वाज अब्यूज्ड व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. Today she is 35 plus. I think she is one of the most sincere watchers I have seen of this program. Ek bhi episode shayad nahi miss kiya, notes banaye, study kiya. She had been physically abused and ek din wo program mein baithi thi, live program mein, and humme us pe commentary kar rahe the ki let go, jinko bhi humne aaj din tak pakad kar rakha tha, aaj hum unko jaane dete hain. After the program she got up and said, 30 years ke baad आज उस व्यक्ति को जाने दिया. उस एक इंसिडेंट की वजह से शी डिड नॉट गेट मैरिड, लोगों से वो दूर हो गई, शी हेट पीपल, उस एक एक्सपीरियंस की वजह से. लेकिन थोड़ी देर बैठी, उसके डैमेज को समझा, शी सेड आई लेट हिम गो टुडे. जीवन परिवर्तन हो गई, टुडे शी इज अ डिफरेंट पर्सन. सो हम ही खुद को डैमेज करते, हम ही खुद को हील कर सकते हैं. दिस इज ट्रिमेंडस पावर दैट वी हैव.
1: Really, you know, this is powerful. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया. और एक इम्पोर्टेंट बात की भी, क्यों मैं माफ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे कारण मेरे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं तुमको माफ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके. लेकिन मेरे पर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू राइज अबाउट दैट.
2: तो मैं अपने आप को तो माफ करूँ कम से कम.
1: नहीं, उसको ही माफ कर, तभी वो इन्फ्लुएंस से आप ऊपर उठेंगे. तो मेरे फायदे के लिए मैं किसी को माफ कर रहा हूँ तो करना ही चाहिए.
0: एंड माफ करना मतलब भी क्या, मतलब उस इंसिडेंट और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद. इट डजेंट हैव टू कम बैक ऑन माई माइंड, दैट इज माफ करना ना. माफ मीन्स वो बार बार बार बार बार मेरे माइंड में चलती रहती है, वो थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं. माफ करना नीड नॉट मीन कि मैं उनके साथ जाकर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाऊं. माफ करना इज नॉट कि मैं उनसे रोज बातें. माफ करना जस्ट मीन्स वो मेरे चित्त पर अब नहीं है,
2: वो मेरे थॉट्स में ना आए, मैं उनके वो जो फीलिंग्स थी वो ना. बट इज इट पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं होता ना. सी अगेन व्हेन इट ओके आई क्रिएट, बट देन वो जब क्रिएट कर रही होती हूँ मैं, तो मैं उसके वश में हूँ.
0: तो अपने आप को फिर से समझाओ ना. सी अगेन अवेयरनेस, ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं फिर अपने आप को समझाऊ. एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, बाकी नुकसान मैं अपने कर रही हूँ. एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, जो भी किया, बिजनेस में चीट किया, अब्यूज किया, जो एक नुकसान किया, येस दैट पर्सन हैज डन व्हाट डैमेज. बाकी नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ. टॉक टू योर सेल्फ, दिस इज चेंजिंग माई थॉट्स. और इसमें परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें वो हील करने में मदद करता है. कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है, कोई भी प्रकार का धोखा, इट्स अ रिजेक्शन. मुझे एक रिजेक्शन मिलता है किसी रिश्ते में, परमात्मा से मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो मेरी हीलिंग को ईजी कर देता है. जस्ट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द प्रोसेस. बट ओनली इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, डैमेज उन्होंने नहीं किया, ये रिपीटेड करने से डैमेज मैं कर रही हूँ. दिस आई हैव टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ. आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया, क्या नुकसान किया, पैसे ले गए ना आपके, सारे पैसे ले गए लेट से. लेकिन आपके मन का, शरीर का और आपके रिश्तों का अब नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ. किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज किया, फिजिकली किया ना, लेकिन अब माइंड का, रिलेशनशिप्स का, प्रोफेशन का नुकसान मैं कर रही हूँ. दिस इज हाउ आई विल हैव टू कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड कम आउट ऑफ इट.
1: और कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स भी याद करो. ग्राहम स्टेन का उदाहरण बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जो उड़ीसा में एक फादर थे, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था. तो एक साल के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी को यह प्रश्न पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में आपके दिल में कैसी भावनाएं. तो उस महिला ने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया. तो बताने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए.
2: तो उनका जो रख के भी क्या फायदा,
0: इट्स नॉट अबाउट क्या फायदा, शी चेंज्ड हर डेस्टिनी. वो पूरा परिवार अपना देश छोड़ के इन लोगों की सेवा के लिए आए थे. इन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया. नाउ दिस लेडी, शी इज लॉस्ट ऑल हर थ्री फैमिली मेंबर्स. शी कुड हैव लिव्ड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन पेन. शी इज वर्किंग टुडे विद द सेम पीपल. शी इज सर्विंग देम, शी इज हेल्पिंग देम, शी इज चेंज्ड हर डेस्टिनी. आप उस सिचुएशन को तो नहीं चेंज कर सकते, यू कैन गेट दोज पीपल बैक, बट यू कैन चेंज हाउ यू आर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड. दैट्स द पावर क्रिएट.

0: holding my present and my future, not only holding back my past. Mm. This is the power we have.
1: Exactly.
2: Remember such example. Aur isme bahut bada healing power hai. Kehte I forgive you. ये तीन शब्दों में बहुत जबरदस्त शक्ति है. बस
1: यहाँ एक मेरे को एक और भी आज तक लेना है, रिजेक्शन का जो आपने कहा कि ये तो सिचुएशंस होती कि लोग चले भी गए और लोगों से मैंने अपना नाता भी नहीं रखा बिकॉज आई वॉज रिजेक्टेड या मुझे धोखा हुआ. देर आर टाइम्स वेन आई हैव बीन रिजेक्टेड बट आई एम वेटिंग. आई नो समबडी जो एक रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ और उसके बाद वो लड़का कहीं गया, लड़की यही है. अब वो रिजेक्शन है या जो भी, द गर्ल इज स्टिल वेटिंग, यू नो, वो वेट. और उसके प्रति वो नफरत भी है कि मुझे रिजेक्ट किया, किस कारण किया क्या. और वो जो वो वेट, तो आज भी पूरा जीवन, दो साल बाद भी वो जीवन वैसा का वैसा ही, और आना वेट भी. और तो ये इसको कैसे हील करे, क्योंकि ये पूरी जिंदगी एक तरह के रिजेंटमेंट में चल रही है. बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो और खराब होने शुरू हो गए क्योंकि वेट जो है वो बहुत पेनफुल है. और ऑब्सेशन, उसको कैसे हैंडल करे.
2: अपोजिट है नहीं, यहाँ पर जो लेट गो करने की बात थी, हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में वो अटैचमेंट है. अटैचमेंट इतना पावरफुल है कि व्यक्ति डिटैच नहीं हो पाता है. तब अगर ये अच्छी तरह से मन को समझाए कि डिटैच होना ही मेरे लिए सॉल्यूशन है, मैंने अटैचमेंट रखा तो मेरी सुख शांति आनंद सब कुछ खत्म हो गया है. तो बस कुछ भी हो जाए मुझे डिटैच होना है.
1: अच्छा, हम अगर ऑब्सेशन की बात करते हैं रिलेशनशिप में, कि वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो गया और दूसरा व्यक्ति चला गया है.
0: कुछ नहीं है इसमें, एक ही थॉट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन. एक थॉट है, विच इज नॉट ट्रू. ये सच नहीं है ये थॉट. लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये लोग अपने आप को वही थॉट देते जाते हैं. हमारे पास इतनी लंबी लंबी ईमेल आती है, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन. सेज हु, सेज मी. चेंज वॉट यूर सेइंग टू योर सेल्फ बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बिना हमारा जीना बंद हो जाएगा. लेकिन आई लव टू गिव माई सेल्फ दिस थिंकिंग कि मैं इसलिए दर्द में हूं, मैं इनके बिना नहीं जी सकती. तो जब तक आप अपने आप को वो थॉट दोगे, आपको वही फीलिंग आएगी, आपकी वो वेट पीरियड चलती रहेगी. चेंज योर थॉट पैटर्न. आई एम अ पावरफुल सोल. मेरी लिविंग, मेरी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था उनके साथ, यू नो, बात करना, रिश्ता, वो ठीक है, बट डिपेंडेंसी नहीं है. इमिजिएटली आई विल बी एबल टू गेट बैक माई सेल्फ टू दैट डिग्निटी. ये एक्चुअली अपनी डिग्निटी को बहुत नीचे कर देना है कि एक किसी की वजह से आई एम नॉट रेडी टू लिव, आई कांट डू विदाउट दिस पर्सन.
1: इनफैक्ट उसके बारे में हम बात भी नहीं कर पाते किसी और से, क्योंकि अंदर अंदर खुद को बहुत बुरा लग रहा है.
0: नहीं, और खुद पर बहुत गुस्सा आता है.
1: हाँ, हम क्या कर रहे हैं.
0: खुद से नफरत होती है कि मैं कितनी कमजोर हूँ. इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन कि मैं इस ड्रग के बिना नहीं रह सकती, मैं इस सिगरेट के बिना नहीं रह सकती, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती. तो जैसे बाकी एडिक्शन से हम अपने आप को जबरदस्ती हटाते हैं ना, सपोज आई वांट टू गिव अप सम एडिक्शन, मैं उसको जबरदस्ती छोड़ती हूँ, थोड़े दिन तकलीफ होगी, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम. इसी तरह ऐसे रिश्ते में भी जो नहीं वर्कआउट कर रहा, आपको अपने आप को जबरदस्ती हटाना है. यू विल हैव टू ब्रेक अवे. थोड़े दिन तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ में अपनी काउंसलिंग खुद करते जाएंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे एडिक्शन ओवरकम हो जाएगा. लेकिन क्या करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर बीच में कहते हैं मैं एक बार फोन करके बात कर लूं, बस दो मिनट के लिए बात कर लूं. तो इट्स लाइक 10 दिन मेहनत किया, 10 दिन मेहनत किया, सिगरेट छोड़ा, विड्रॉल सिम्टम हुए, थोड़ी सी विल पावर आई, फिर जाके एक सिगरेट ले ली, तो आपका वो पूरा 10 दिन का एफर्ट वेस्ट हुआ. यू हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन. सोचे, डिसाइड करे, यू वॉन्ट टू मूव अवे, डू इट स्ट्रिक्टली. एवरी वन हैज द पावर टू डू इट. इट ओनली डिपेंड्स आप अपने आप को कौन सी थॉट्स देंगे. हम अपने आप को ही, यही अगर आपके आसपास किसी और को हो रहा होता, आप उनको क्या थॉट्स देते. कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है. जो थॉट्स आप दूसरों को देते हैं, वही थॉट्स अपने आप को देने हैं.
2: टू पॉसिबिलिटीज. एक तो अपने आप को ये सोचो कि भी और क्या क्या संभावना है. ये एक व्यक्ति से मैं अटैच हूँ, उसको छोड़ नहीं पा, और कुछ संभावनाएं हैं वो लिखो सचमुच, तो भी आपको मिल जाएगी कि भी और भी कई संभावनाएं हैं. आई कैन मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स, मैं कोई अच्छा प्रोफेशन कर सकती हूँ, और कोई मेरे लिए अच्छी संभावनाएं हैं. और एक बात ये बहुत समझने की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे केसेस में

0: कि अगर वो अटैच ही रहे तो दुख में जीवन जिया, डिप्रेशन में जिया, बीमारियां आई, खत्म हो गए, और जो इससे बाहर निकल गए तो फिर उनका जीवन और बहुत अच्छा हो गया। बाद में तो ये कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हम इससे बाहर आ गए, अगर नहीं आते तो शायद हमारा जीवन बहुत दुखी होता। मेरे पास ऐसे कई प्रैक्टिकल केसेस है नहीं, जहां भी लड़की को कहीं अटैचमेंट हो गया, वो सोचती थी मैं सुसाइड करूंगी, ये लड़के के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़ा अच्छे से उसका पीछा किया और बातें समझाई, ट्रीटमेंट की और से मुक्त हुई, आकर बड़ा अच्छा हुआ वो। तो ये सब आप लोगों ने मेहनत की, एफर्ट
1: की पावर, बिकॉज ये एक पावर है। ना सिर्फ यूथ इसमें फंस रहा है, आज मिडिल एज में जो लोग, हमने बहुत बार बात की है, ऑब्सेशन होके और खुद, जैसे आपने कहा, शर्म खुद से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, काउंसलर के पास भी नहीं जा पा रहे, तो क्या मेरे थॉट्स पावरफुल थॉट्स या मेडिटेशन?
2: आई कैन जस्ट टेल यू के थ्रू दिस टेलीविजन प्रोग्राम लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन इट। आई कांट शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बहुत बहुत बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो मैरिड कपल्स हैं, जो आउट ऑफ मैरिज रिश्तों में जुड़ चुके थे, they have overcome it and it's an inspiration. I feel very nice when I meet such people ki look at the power every soul has. Jo atma decide kar leti hai ki mujhe ye karna hai, wo kar leti hai, and every time hum kisi se aise milte hain it reinforces ki jo apne upar karega usko result zarur milega.
1: Dr. Patel, Sister Shivani, aaj phir ek baar hum apne hi थॉट पावर को क्या मिरेकल देखते हैं। यू नो, ऐसे ऐसे सिचुएशंस जब लगता है कि लेट को किया ही नहीं जा सकता, हम छोड़ ही नहीं सकते, ये दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हमने मतलब जीवन का एक सच मान लिया है,
2: दर्द को हम, दर्द हमें नहीं छोड़ेगा, हमें दर्द को छोड़ना है,
1: हम दर्द को छोड़ के इक्वेशन चेंज करके स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
2: शांति।
1: अभी तक तो ये चल रहा था कि बाहर दर्द है उस व्यक्ति के कारण, उस सिचुएशन के कारण मैं कंटिन्यूस पेन में हूँ, पूरा टाइम मेरे मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लिए जाना ही, उसको ढोए जाना ही मेरी जिंदगी है। लेकिन जब अपने आप को पहचानते हैं और इस शक्ति को जानते हैं कि ये मुझ में ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ही क्रिएट किया, ये ऑब्सेशन भी उस व्यक्ति या सिचुएशन ने तो नहीं कहा था, या वो जो कुछ हुआ था वो उस वक्त का सच था, आज उस सच को बदले बहुत वक्त गुजर चुका है, आज का सच ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शरीर के साथ हूँ, इसीलिए शरीर भी, शरीर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने प्रति मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी देखें, अपनी ही ताकत को पहचानें, बदलाव संभव है। अब एक निंग ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही

0: प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: डरा नहीं मांगता
1: तो कौन मांगता।
0: जूली जूली सोनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है।

0: The Corn Monster.
1: Johnny, Johnny, Johnny का दिल तुम पे आया Johnny, तुझको ही माना मैंने अपना honey, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं जूली।

0: तो कौन मांगता?
1: जानी जानी, चूल्हे का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही मारा मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है।

0: हमको मेरे नहीं मांगता, हमको ले ले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम सैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: A ti está sugando.
1: जुन्या गाड्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा. घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर वेलकम टू बीइंग ब्लिस.
3: ओम शांती.
2: ओम शांति एंड नमस्कार.
3: थैंक यू.
2: लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि जो कंपटीशन है वो भी एक संस्कार बन जाता है और इतना मतलब हैबिट कहें उसको
3: बिलीफ सिस्टम बिलीफ
2: आदत पड़ जाती है ना.
3: हाँ, तो वो आदत कैसे पड़ी? वी सॉ ना हैबिट. आपने कहा ये हैबिट बन गई है. हैबिट कहाँ से बनी?
2: तो स्कूल से सिखाया गया था.
3: बिलीफ सिस्टम बना ना. आप देखिए, एक बच्चे की परफॉर्मेंस हमेशा बाकी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर की जाती है एंड उसको यही मोटिवेट किया जाता है, आपको उनसे आगे जाना है, उनसे आगे जाना है. उसकी अपनी यूनिक परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स, क्वालिटीज, सिर्फ उस पर न फोकस कर. इट्स ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विथ समथिंग एल्स. सो ये बिलीफ सिस्टम जो तब बना और फिर हर स्टेप पे वो री इन्फोर्स होता गया, मतलब मेरी थॉट्स उसी से अराइज हुई. फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, नाउ पर्सनैलिटी ट्रेट, स्टार्टेड विद द बिलीफ सिस्टम. आज भी वो संस्कार को या हैबिट को चेंज करना इजी है, प्रोवाइडेड बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, हर जगह मुझे आगे होना है. जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा, फैमिली में भी वो चीज आ जाएगी.
2: घर में नौकर किसको ज्यादा प्यार करते हैं?
3: यस, व्हाई नॉट,
2: मुझे या मेरी पत्नी को?
3: यस, वो भी नहीं, सास और बहू में कितना होगा ये कि किसकी बात ज्यादा मानी जाती है,
2: किसको बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा है भले, लेकिन चाचा की बात ज्यादा सुनते हैं, डैडी की नहीं.
3: तो अब इसमें तो कोई प्रॉफिट की भी बात नहीं है, कोई टारगेट और अचीवमेंट की भी बात नहीं है, बट इट्स अ संस्कार.
2: बट सिस्टर, एज अ पेरेंट मैं ये पूछूंगा, मेरा बच्चा कल स्विमिंग कॉम्पिटिशन, ये जो शब्द है,
3: राइट,
2: रनिंग कॉम्पिटिशन,
3: राइट,
2: राइटिंग कॉम्पिटिशन, एग्जाम्स, मेरे समझ में कॉम्पिटिशन का वर्ड है तो कम्पीट तो करते हैं एक दूसरे से.
3: हाँ, तो वही
2: और भी शब्द है इंग्लिश में, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज गुड.
3: जैसे गुड स्ट्रेस था, जैसे गुड स्ट्रेस था ना, वैसे ही हेल्दी कॉम्पिटिशन है. आई नीड टू आस्क मैसेल्फ, जो आपने कहा रेस है, जहाँ कि स्विमिंग रेस है, रनिंग रेस है, वो एक रेस है, एक स्पोर्ट है ना. स्पोर्ट में और जीवन में तो फर्क होगा. और स्पोर्ट में भी क्या सिखाया जाता है? डू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, वो करना है. सी, कॉम्पिटिशन क्यों एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हेल्दी अनहेल्दी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब तो चलो सेकेंडरी. कॉम्पिटिशन पॉसिबल नहीं है दो लोगों के बीच, क्योंकि दो लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट तब करें जब दोनों के पैरामीटर सेम होने चाहिए.
2: दुनिया में कोई चीज दो चीज एक नहीं है.
3: लेट्स से आप और मैं इकट्ठे अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ओके, सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम पर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ. आपने कहा दुनिया में कभी भी दो चीजें सेम नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं अभी कि सब कुछ सेम है. लेट्स से हाइपोथेटिकली नो अजम्पशन, सपोज सेम शहर, सेम लोकेशन, सेम टाइम, सेम प्रोडक्ट. हाँ, ये है एक्सटर्नल चीजें कि सेम जगह पर, सेम शहर में, सेम समय पर और सेम प्रोडक्ट हम दो बिजनेस शुरू करते हैं. अब हम अपनी क्वालिटीज को लेते हैं जो एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए.
2: ऐड कर लें,
3: हाँ,
2: सेम पेरेंट्स के दो बेटे.
3: फैंटास्टिक, सेम पेरेंट्स के दो बेटे. अब ये हैं आउटसाइड पैरामीटर्स, हमारे सेम है. अब इनसाइड पैरामीटर्स ले लेते हैं एंड लेट्स अज्यूम कि वो भी सेम है. सेम अमाउंट ऑफ ऑनेस्टी, दोनों के अंदर वैल्यू सिस्टम उतनी ही सत्यता है, उतना ही हार्डवर्क, मेहनत करने का संस्कार, सिंसियरिटी, विल पावर, दृढ़ता, जो चाहिए ना एक काम को करने के लिए, एक बिजनेस को करने के लिए, वो दोनों के पास सेम है. आपने कहा दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, उसको एक स्टेप और लेकर जाते हैं, दोनों ट्विन्स हैं।
2: अरे वाह।
3: पैदा एक ही टाइम एक ही दिन हुए थे, तो दोनों का वो जो प्लैनेटरी इफेक्ट है, क्योंकि वो भी नहीं तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, वो भी सेम है। अब सारे पैरामीटर्स सेम होकर, सेम पेरेंट्स तो सेम पेरेंट संस्कार, सेम रिसोर्सेस, सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम प्रोडक्ट, सेम लोकेशन, सेम सिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, लॉयल्टी, ये सब कुछ सेम जब होगा तो दोनों का आउटपुट बिजनेस का सेम होगा।
2: होना तो चाहिए।
3: होगा, लेकिन अगर हम ये करके देख लें, हम ये कर लेते हैं, लेट्स से वी डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट, ये कर लें जुड़वा भाइयों को लेकर जिनके संस्कार भी सिमिलर हैं।
2: आज तक तो नहीं हुआ कहीं।
3: नाउ वी हैव टू थिंक, सब कुछ सेम होकर, सब कुछ, एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट, जो एक इनपुट होगा एक बिजनेस के लिए, सब कुछ सेम होकर भी आउटपुट क्यों सेम नहीं है? कहाँ डिफरेंस आ रहा है? क्या उसको क्या बोलेंगे? दोनों को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है?
2: पास्ट कर्म।
3: दिस इज इट।
2: रियली, एम आई राइट?
3: एब्सोल्युटली।
2: मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि सही हो सकता है कि नहीं।
3: वी सॉ बिफोर ऑल्सो, हम जितनी मेहनत करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, हमारे अंदर जितनी क्वालिटीज, वैल्यूज, सब कुछ आज है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, इनफैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे सक्सेस को डिसाइड करता है, वो है हमारा
2: पास्ट कर्म,
3: पास्ट कार्मिक अकाउंट। कोई भी दो सोल्स के सारे प्रेजेंट फैक्टर्स भी अगर सेम होंगे तो दोनों का पास्ट कार्मिक अकाउंट तो सेम नहीं हो सकता है। किसी का भी दोनों का सेम पास्ट कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए सब कुछ सेम होते हुए भी, क्योंकि पास्ट कर्म दोनों का अलग अलग है और ये एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है आउटपुट डिसाइड करने के लिए, तो सब कुछ सेम होके भी आउटपुट सेम नहीं होगी। वेयर इज द कॉम्पिटिशन? अब मैं इनके साथ कम्पीट ही कैसे करूं? मैं इनके साथ रेस में लड़ू ही कैसे जब इनपुट फैक्टर ही अलग है? दिस नाउ वी विल नीड टू अंडरस्टैंड।
2: मैंने ये देखा है सिस्टर कि बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टूडियो, बड़े लोग, उनके एक एक के तीन तीन बच्चे हैं, किसी के चार हैं, किसी के दो हैं, किसी का एक है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, लेकिन सारे के सारे एक्टर नहीं बने ना, बाप की तरह या दादा की तरह या चाचा की तरह। सारे सब कुछ थे, उनके पास गुण भी वो थे, जीन्स भी वो थे, पैसा भी सबके पास था, गुड लुक्स भी थे, लेकिन किसी में आठ में से एक बन गया, तीन में से एक बन गया, किसी की बेटी बन गई, बेटा नहीं बना, किसी का बेटा बन गया।
3: और ये भी देखा कि सबने ट्राई किया।
2: हाँ,
3: है ना,
2: इक्वल।
3: यस, सबने ट्राई किया, कोई बहुत सक्सेसफुल हो गए।
2: एक पेरेंट्स के बच्चे होकर भी, सारी सुविधाओं के साथ भी, अपना अपना कर्म लेके आते हैं सब।
3: एक पेरेंट्स के बच्चे तो वो सिर्फ अभी है ना, वो तो इस कॉस्ट्यूम में वो पेरेंट्स के बच्चे है ना, थोड़े साल पहले। इसीलिए कंपटीशन नहीं हो सकता कोई दो आत्माओं के बीच। आप और मैं अब इक्वल भी मेहनत कर लें, लेकिन आप बहुत श्रेष्ठ पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकर आए हैं और मैंने अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट में कुछ गफलत किया है, कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं कैसे आपके साथ कम्पीट करूं? अब मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी सब कुछ करूं, आपको सक्सेस ज्यादा मिलने वाली है।
2: मेरे साथ थे ना सिस्टर, आप जो बोल रहे हो मुझे इतना ट्रू लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट, मेरे साथ थे लड़के और लड़कियां, मुंबई के थे, मेरे पास तो घर भी नहीं था, मैं तो हैदराबाद का हूँ। उनके पेरेंट्स भी थे इंडस्ट्री में, उनको गाड़ी भी थी, उन यहाँ के इंडस्ट्री के फैमिली मेंबर्स भी थे, फिर भी वो पीछे गए, कोई रह गया, किसी को। इक्वली टैलेंटेड थे,
3: इक्वली टैलेंटेड,
2: वरना इंस्टीट्यूट में जगह भी नहीं मिलती, सीट भी नहीं मिलती।
3: तो जहाँ, जैसे आपने कहा, हमने तो ये लिया था ना केस कि सब कुछ इक्वल है, हाइपोथेटिकली ये लिया कि प्रेजेंट में सारे फैक्टर्स इक्वल है,
2: तो रिवर्स उल्टा है मेरा तो।
3: दैट इज वाई, सो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता, कि सारे फैक्टर्स इक्वल होने के बाद भी सक्सेस इक्वल नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि किसी के फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने कहा फेवरेबल, और हमारे नए हैं तो भी हमें

0: ज्यादा सक्सेस मिल रही है. क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द रीजन? पास्ट कार्मिक अकाउंट, ये एक अननोन फैक्टर है, यू नो, उसको पता नहीं है. अभी का हमें पता है, मेरे अंदर ये स्किल है, आपके अंदर ये है, मेरे पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतने हैं, मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके इतने हैं, तो कहीं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. जैसे आपने कहा उनके पास ये था, मेरे पास ये नहीं था, लेकिन उनका पास्ट कर्म क्या था और आपका पास्ट कर्म क्या था, इसका तो हमें मालूम ही नहीं है. सो इट्स एन अननोन फैक्टर.
1: तो आज के रिजल्ट देखकर हमें जानना चाहिए कि पास्ट कार्मिक अकाउंट
0: जानना तो है, मतलब जानना क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक बहुत बड़ा इनपुट फैक्टर अननोन है दो आत्माओं के जीवन में, तो फिर वो दो आत्माएं कॉम्पीट कैसे कर सकती है एक दूसरे के साथ. उन दोनों को अपनी यात्रा चलनी होगी, क्योंकि एक इनपुट फैक्टर वो है जो आपसे बिल्कुल अलग है. एक कंपटीशन करने के लिए, एक रेस अगर हम कह रहे हैं, रेस करने के लिए रेस में जितने लोग खड़े होते हैं उनको सारा फैक्टर सेम दिया जाएगा ना. ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना आप 100 मीटर रन करो, मैं 200 मीटर रन करूं और ये रेस है. नहीं, सारे फैक्टर्स आइडेंटिकल होंगे, अब रेस करें. यहाँ तो फैक्टर्स ही आइडेंटिकल नहीं है. अब क्योंकि मेरा आउटपुट आपके आउटपुट से सेम नहीं आ रहा, मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही, जबकि हमारे इनपुट्स सेम थे एक्सेप्ट फॉर वन अननोन फैक्टर पास्ट कर्मा. आपके आउटपुट के साथ अपने आउटपुट को कंपेयर करके कि मुझे इतनी सफलता क्यों नहीं, उनका बिजनेस इतना अच्छा मेरा क्यों नहीं, या आपकी इंडस्ट्री में कहेंगे तो उनकी मूवी इतनी अच्छी चलती है मेरी क्यों नहीं, व्हाटएवर, ये कंपैरिजन करने से मेरे जो इनपुट फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट होने लग जाएंगे. अब जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर 80 पे था, आपका भी 80 पे था, लेकिन अब आपकी सक्सेस को देखकर और अपने लैक ऑफ सक्सेस को देखकर
1: मेरा किस्मत को कोसते हुए,
0: हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब 80 से
1: 50 पे
0: 60-50 पे आ जाएगा. इनसिक्योरिटी मुझे पहले नहीं थी, आई वॉज वेरी सेफ कि हो जाएगा, लेकिन अब वो थोड़ी कम हुई. अब मुझे आपसे जेलेसी भी होने लगी,
1: एनवी,
0: जेलेसी होने लगी. जेलेसी मीन्स क्या थॉट, इनका अच्छा क्यों है. जेलेसी यही है ना कि मेरा अच्छा नहीं, इनका अच्छा क्यों. वी कैन से दैट इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेगेटिव थॉट यू कैन क्रिएट फॉर समबडी.
1: रियली,
0: बिकॉज सी व्हाट इट इज, अगर आपका सक्सेस
1: है, कंपैरिजन,
0: नो, जेलेसी इज नॉट अ कंपैरिजन. जेलेसी इज नॉट कंपैरिजन. कंपैरिजन इज आपको 100, मुझे 80, ये कंपैरिजन है.
1: नहीं, मैं नहीं बोलता कि ये सब कुछ खराब करता है, फिर भी इसको देखो, हर सक्सेसफुल आदमी है, इतने गलत काम करता है फिर भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है.
0: सो मीन्स आपको अच्छा नहीं लग रही ना वो बात. आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं उनकी सक्सेस पर, एंड साथ में कह रहे हैं हम इतना अच्छा
1: काम दिखता नहीं है.
0: एक बहुत बड़ा अननोन फैक्टर है, वो हमें नहीं मालूम है. अब अगर मैं आपके सक्सेस को देखकर ये थॉट क्रिएट करूं कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे नहीं मिला, उन्होंने भी सपोज उतनी ही की, चलो कम नहीं ज्यादा नहीं, उतनी ही की, उनको मिल गया, मतलब मुझे आपकी सक्सेस अच्छी नहीं लग रही. आई डोंट लाइक दैट यू आर सक्सेसफुल. इससे ज्यादा हम किसी के लिए नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं. मुझे आपकी खुशी अच्छी नहीं लग रही, मुझे अपना असफलता अच्छी नहीं लगे इज ओके, वो एक चीज है, वो ठीक है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन जेलेसी मीन्स मुझे आपकी सफलता अच्छी नहीं लग रही. मतलब आपके प्रति कैसा थॉट क्रिएट किया फिर कि ये इतने सफल क्यों, मतलब सूक्ष्म में इनको इतना सफल होना नहीं चाहिए था.
1: और ये जब बैठ जाए, डूब जाए,
0: वो तो
1: खुशी भी हो,
0: हाँ, बट फिर भी ये सपोज हम नहीं भी क्रिएट करें किसी के लिए, हम कहते हैं ना, नहीं मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, लेकिन ये थॉट दूसरे की सक्सेस पे एक क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट करना, ये बोलना चाहिए ना, आई एम सो हैप्पी इनको ये इतना अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये बोलना इनको इतना कैसे मिल रहा है मुझे नहीं.
1: सेम क्वेश्चन मैंने अपनी माँ से पूछा था. मेरी मदर बहुत वाइज थी, विजडम. मैंने बोला माता जी को पंजाबी में पूछता था, मैंने बोला ऐसा है देखो वो ये किया, इतने गंदे काम करता, مجھے بولے انہوں نے

0: शुरू कर देंगे, हमारे प्रेजेंट कर्मा कौन से हो जाएंगे। ये हमें थोड़ा सा अपने कर्मों से डरना चाहिए कि हम आगे जो हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कॉम्पिटिशन,
1: तो हम लोग कहते हैं कि भगवान से डरो बेटा, तो भगवान जो लाइन बोली कर्म से डरो बेटा,
0: अपने कर्म से डरना चाहिए ना, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम में कॉम्पिटिशन है आगे जाना, एंड देन लुक एट द लाइन, ऑल इज फेयर इन कॉम्पिटिशन। तो मैं आगे नहीं जा सकती तो मैं आपको पीछे खींचना शुरू करूंगी, कुछ कुछ करूंगी, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भी भेज सकती हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है।
1: नहीं करते
0: उसके बाद फिर वो, एंड देन इट्स सच ए डीप एडिक्शन, इतना डीप एडिक्शन, कॉम्पिटिशन भी एडिक्शन है, ये इतना डीप एडिक्शन हो जाएगा कि अब मैं अपनी मर्यादाएं, अपने प्रिंसिपल्स को कितना भी तोड़ दूंगी आपको पीछे करने के लिए।
1: मैंने उस दिन देखा सिस्टर कि एक हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरीशिप के लिए,
0: यस,
1: सोसाइटी में उसकी इतनी बदनामी की, और हमारे गोल्फ कोर्स में कोई प्रेसिडेंट या वो जो भी बनते हैं, वो बनने के लिए इसने इतना नुकसान कर दिया, उसने इतना, इतने बड़े बड़े प्रिंट एक एक घर में पोस्ट कर रहे हैं, फोटोज डाल के इतने लाखों रुपए खा गया, करोड़ों खा गया, इसको मत देना वोट, क्या नहीं करते। और
0: ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे को अपने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है हम नहीं जा पा रहे आगे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे को मलाइन करना, दूसरे के बारे में गलत फैलाना, दूसरे के ऊपर गलत काम करना, दूसरे की सक्सेस में बाधा डालना, ये हम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा प्रेजेंट कर्मा, अब पास्ट तो था ही थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमारा प्रेजेंट कर्मा तो किस क्वालिटी का बन जाएगा। अब जब प्रेजेंट कर्मा इस क्वालिटी का बन गया, हो सकता है इस तरह के तरीके यूज करके या किसी को गिरा के आगे जाके मटेरियलिस्टिकली मैं सक्सेसफुल हो भी जाऊं, उनसे आगे भी निकल जाऊं,
1: गेन कर भी लिया,
0: लेकिन अंदर जो दो चीजें हम साथ लाते हैं और दो साथ में जाते हैं, संस्कार और कार्मिक अकाउंट, ये तो हमने किस लेवल के क्रिएट कर दिए है। स्टॉप एंड वेक योर सेल्फ अप, अगर हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा फोकस नहीं है। जिनका ऐसे फोकस होगा, माय इनपुट माय सक्सेस, नॉट सफिशिएंट वर्क हार्डर, स्टिल नॉट सफिशिएंट पुट इन मोर, लेकिन ओनली फोकस ऑन माय इनपुट माय आउटपुट, वो आत्मा कभी ना दुखी होगी, ना ईर्ष्या होगी, ना विल पावर कम होगी, एंड ना कभी गलत कर्म करेगा आगे जाने के लिए। वो सिर्फ अपनी यात्रा पर फोकस करेगा, और क्योंकि उसके प्रेजेंट कर्म बहुत अच्छे होंगे, और जो हमने देखा प्रेजेंट अच्छे करते जाओ तो आपका पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल होता जाएगा, फाइनली धीरे धीरे वो पास्ट कर्म का जो पैरामीटर था वो कम होता जाएगा, एंड आपकी सक्सेस जितनी आपको मिलनी थी, आपका भाग्य उससे ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने थॉट्स अभी प्रेजेंट की चेंज की, डेस्टिनी विल चेंज, ऑल इन आवर हैंड। सफलता ये एक बहुत सूक्ष्म है, एंड हर एक को अपनी चेक करनी चाहिए ना, इवन वी सीन इन स्कूल ऑल्सो, अगर दो पड़ोसी हैं, दोनों के बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं, एक फर्स्ट आ गया और दूसरे का बच्चा थर्ड सेकेंड आ गया या थर्ड आ गया, उसको उस बच्चे की सफलता देखकर खुशी नहीं होगी। एक सूक्ष्म लॉ है, जिसको देखकर आपको खुशी नहीं होगी वो आपके घर नहीं आएगा।
1: मतलब
0: सफलता, अब सफलता एक एंटिटी बना,
1: मैं समझा इंसान
0: ना,
1: अगर सुरेश ओबेरॉय को देखकर आपको खुशी नहीं होगी तो सुरेश आपके घर नहीं आएगा, ऐसा नहीं।
0: सफलता एक एंटिटी है, अब उसको एक एंटिटी की तरह देखें। मुझे आपको मिलती हुई सफलता देखकर खुशी नहीं हो रही, मतलब मुझे सफलता को देखकर खुशी नहीं हो रही है,
1: तो आई डोंट लाइक सफलता, तो इट वोंट कम टू मी,
0: बिकॉज व्हाट यू रेडिएट, यस,
1: ये प्रैक्टिकल हो सकता है,
0: ट्राई इट आउट,
1: लेकिन मैं सफलता को थोड़ी देख रहा हूँ, उस इंसान को जो मिली है
0: सफलता,
1: उसके पास क्यों, मेरे
0: जो
1: पास
0: जो आप क्रिएट करेंगे सफलता इनको क्यों मिल रही है।
1: मतलब लक्ष्मी को देखकर, किसी के पास पैसा देखकर मैं जेलस फील करूं कि भाई इसके पास इतना माल आ गया, इतना पैसा आ गया और मेरे पास नहीं, तो मतलब वो भी नहीं आएगी मेरे पास,
0: क्योंकि आपने उसके प्रति अच्छी वाइब्रेशन नहीं क्रिएट की। सी सपोज एक थर्ड पर्सन है, आप ये देखो, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन आपके घर जा रहा है बार बार,

0: अच्छे में खुश हो जाएं।
1: सिस्टर, लाइफ में एक ही बार मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा, एक पाकिस्तानी बैट्समैन को बॉलर ने इतना अच्छा इंडियन ने बॉल किया, एक मतलब वो बोलते ने बीट कर दिया
0: है।
1: तो यू नो नॉट करके उसकी तारीफ किया है ना छोटे में, एक दो सेकंड में, वाह क्या बॉल डाला।
0: दिस इज नो सी एंड आपको अभी तक याद है ये चीज। दिस इज वॉट इट इज। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना।
1: इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन,
0: इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन।
1: हाँ तो लोग दुश्मनी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को, वहां तारीफ के तो वो आदमी की मेरे लिए कितनी इज्जत बढ़ गई।
0: सी दिस इज इट, कितनी इज्जत बढ़ गई।
1: और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, वाह निकल गया उसके
0: जेन्युइनली,
1: क्या बॉल डाला
0: जेन्युइनली। तो इसको अब हमें चेक करना है कि सफलता अगर पसंद है तो फिर हरेक को जिसको सफलता मिल रही है उसकी सफलता को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए, उसको दुआएं दे दिल से कि उसकी सफलता और भी बढ़ती जाए। किसी की सफलता को देखकर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना कभी भी। अब ये ही चीज को आप बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करें और वर्ड को रिप्लेस करें, कॉम्पिटिशन को हटाएं और एक दूसरा शब्द लाएं, कोऑपरेशन। इट्स नॉट कॉम्पिटिशन। अगर हम दो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं इकट्ठे, कम्पीट करने की जगह एक दूसरे को सहयोग दें आगे बढ़ने में। एक और लॉ है, इसको भी हिम्मत करके एक्सपेरिमेंट करके देखें, औरों को आगे बढ़ाते जाएं, औरों को आगे बढ़ाते जाएं, सहयोग दें। मतलब अगर मुझे दिखे कि आप कहीं अटके हुए हैं तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक लाइक दिस एंड सेइंग चलो
1: और एंजॉयिंग इट,
0: अच्छा है देखते हैं अभी क्या करें, इनका कर्म है इनको ऐसा, एंजॉय नहीं भी करें, विड्रॉ करके एक न्यूट्रल होके भी अगर हो जाएं, सहयोग दे सकते थे,
1: नहीं दिया।
0: एक थोड़ी सी सोच को बदलें, सहयोग देते जाएं, गो आउट ऑफ योर वे टू कोऑपरेट। जो आत्मा सबको सहयोग देगी और सबको आगे बढ़ाएगी, वो आत्मा को पता ही नहीं चलता है वो खुद कितनी आगे पहुंच जाएगी।
1: वंडरफुल सिस्टर,
0: लवली। क्योंकि जितना सहयोग देंगे तो मिलेगा क्या?
1: दुआ,
0: दुआएं। अब जो आत्मा औरों को सहयोग देती जाएगी उसको इतनी दुआएं मिलती जाएंगी एंड वो दुआएं उसकी जीवन की यात्रा को इतना फ्यूल देंगी, इतनी एनर्जी देंगी कि उसकी अपनी जर्नी तो बहुत गुना आगे चली जाएगी। तो वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना आगे कर लेगी, अगेन नॉट इन रेस विद एनीबडी, लेकिन अपनी कैपेसिटी से कई गुना आगे कर लेंगी सिर्फ क्योंकि औरों को सहयोग दिया। तो ये बिलीफ सिस्टम के साथ थोड़ा सा खेलना है, एटलीस्ट कॉम्पिटिशन वाला पार्ट तो खत्म करके अपनी यात्रा पर फोकस करना है।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।
0: ओम शांति।
1: थैंक यू वेरी मच।
2: इन स्टडीज, बिजनेस और एनी प्रोफेशनल, सोशल और क्रिएटिव एक्टिविटी, our resources, sanskars and skills are the present input parameters. Our past karmic accounts are the invisible input parameters. Past karmic accounts is a powerful factor in deciding our success today. Since our past karmic accounts can never be the same as others, we cannot compare or compete with others for our result. Questioning or being unhappy about others' success is a deep negative thought. When we start creating jealousy, insecurity, fear, and low self-confidence, then our present karmas also start declining. Focus completely on your present parameters and do the best to your capacity. Be satisfied with the results and continue to increase your capacity.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये है। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: ओ टूना,
3: क्या रे,

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: प्रिय श्रोत्यांनो, आज आपण ऐकली निषद देशाचा राजा नल आणि विदर्भ कन्या जमयंती यांची अमर कथा। संकट कितीही मोठा असलं तरी प्रेम, निष्ठा आणि श्रद्धा याची ताकद सर्वांवर विजय मिळवते हे या कथेतून स्पष्ट होतं। नल जमयंती ही गाथा आपल्याला शिकवते की जीवनात संकटे तात्पुरती असतात, पण विश्वास आणि प्रेम कायम टिकतात। आपल्या जीवनात ही प्रेरणा घेऊन आपण पुढे जाऊया। मी आरजे संजय रेडिओ पुणेरी आवाज वरून तुमचा निरोप घेतो। पुन्हा भेटूया एका नव्या कार्यक्रमात एका नव्या प्रेरणास्वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा। चला तर मग ऐकूयात एक सुंदर गीत।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस। पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो।

0: और अगर पांचों की होती तो वो जीवन वो घर स्वर्ग होता, राइट। अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं।

0: ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का विषय है भारतीय दर्शन में जीवन का उद्देश्य। यह विषय सुनने में जितना आध्यात्मिक प्रतीत होता है उतना व्यावहारिक भी है। भारतीय दर्शन केवल शास्त्रों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन को जीने की एक गहरी, व्यावहारिक और संतुलित दृष्टि है। यह दर्शन मनुष्य को यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है और उसका उद्देश्य क्या है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति, सामाजिक संतुलन और अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति है। भारतीय दर्शन जीवन को चार पुरुषार्थों के माध्यम से समझाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों मिलकर जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और सही आचरण है। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही सच्चा धर्म है। अर्थ का आशय है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों की प्राप्ति। भारतीय दर्शन यह सिखाता है कि धन अर्जन आवश्यक है लेकिन वह धर्म के मार्ग से होना चाहिए। काम का अर्थ इंद्रिय सुख या इच्छाओं की पूर्ति है किंतु वह भी मर्यादा और संतुलन के साथ। और अंत में मोक्ष, जीवन का परम उद्देश्य। मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति, दुखों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति और परम सत्य का अनुभव। उपनिषद कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य, अर्थात आत्मा को जानना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे यह बोध होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। यही आत्मबोध जीवन को नई दिशा देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्मयोग का संदेश देते हैं, कर्मण्य वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भारतीय दर्शन जीवन को कर्म से जोड़ता है लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर। निष्काम कर्म ही मनुष्य को शांति और संतोष देता है। भारतीय दर्शन में जीवन को एक यात्रा माना गया है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर और अहंकार से विनम्रता की ओर। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना है जिसमें संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना गया है। इस दृष्टि से जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण भी है। आज के आधुनिक तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में भारतीय दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक शांति महत्वपूर्ण है। ध्यान, योग, स्वाध्याय और सेवा, ये सभी साधन जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाते हैं। अंततः भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य है अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए सही मूल्यों के साथ जीना, आत्मा को पहचानना और समाज के लिए उपयोगी बनना। जब जीवन केवल मेरे लिए से आगे बढ़कर सबके लिए हो जाता है तब वह सार्थक बनता है। इसी विचार के साथ मैं विवेक जैन आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।
1: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल, आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वाले।

0: से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बाजू

0: क्यों ही साथी।
1: मैं बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: मैं बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
0: बाजू

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं इस प्रोग्राम को और आज के इस सफर को यादगार सफर बनाएंगे। और आज के इस सफर में हम लोग कुछ ऐसे चुनिंदा गाने आपको सुनाने वाले हैं, 50s और 60s के, वो भी बहुत ही खूबसूरत गाने। सारे ही गाने सी अक्षर से सुनने वाले इस एपिसोड में और आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ पुणे से विद्या जुड़ी हुई है। विद्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, आई एम विद्या चौधरी और मैं अभी पुणे से हूँ और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का एक पार्ट हूँ अभी आज। और मैंने कुछ गाने सिलेक्ट किए हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। 1950s एंड 60s की तो बात ही कुछ अलग है, उन गाने बहुत ही अलग है, उनका मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग बहुत ही अच्छा है। आशा है आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा।
0: और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में एंकरिंग करेंगे कुछ बातें और कुछ गाने जो आपके पसंदीदा है वो भी अक्षर सी से मैं सुनना चाहूंगा और सुनाए। आप गाते भी हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ कुछ गाने जो हैं आप थोड़ा थोड़ा सुनाइए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के इस सफर में। और जब भी हम लोग बात करते हैं तो कुछ अच्छी चीजें आपको सुनाते हैं और मैं ऐसे ही कुछ अच्छी चीजें सुनाने की आपको कोशिश करूंगा आज के शो में। और विद्या से कुछ गाने जो हैं सिलेक्टेड सॉन्ग्स हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। तो विद्या, एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगा एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपके जहन में हो और जो अक्षर सी से शुरू होता हो और 50s और 60s के समय का हो, ऐसा कोई गाना है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगी?
1: हाँ, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वो माँ से, वो 1954 का है, जागृति फिल्म से है, जो कि गाया है आशा भोसले जी ने, म्यूजिक दिया है हेमंत कुमार जी ने। और ये गाना एक बच्चा अपनी माँ के लिए गा रहा है। कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत अगर माँ से करो तो वो अच्छा ही रहता है, सफल ही रहता है।
0: हाँ विद्या, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि जैसे माँ की बात आपने कहा तो बड़ा अच्छा लग रहा है और चंद लाइनें जो है मैं आपको सुनाना चाहूंगा माँ के लिए। कैसे बुला दूं मैं अपने पहले प्यार को, कैसे तोड़ दूं उसके एतबार को, सारा जीवन उसके चरणों में अर्पण कर दूं, छोड़ दूं उसकी खातिर मैं संसार को। एक दुनिया है जो समझने से भी नहीं समझती, एक माँ की बिन बोले सब समझ जाती थी। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। और विद्या, मैं चाहूंगा जिस गाने की तरफ आप माँ वाली गाने पे इशारा कर रही हो तो मैं चाहूंगा कि उसका जो मुखड़ा है या स्थाही थोड़ा सा आप खुद भी गाती हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में उसको गुनगुना दीजिए।
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर। वैसे तो आशा भोसले जी इतना तो नहीं अच्छा गा सकती हूँ, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट।

विद्या बात ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी लग रहा होगा कि इस गीत को सुनना चाहिए। आइए मात्र चंद लाइनें आपको सुनाते हुए इस गीत की तरफ मैं इशारा करूंगा। हालतों के आगे जब साथ न जुबा होती है, हालतों के आगे जब साथ न जुबा होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं ये प्रोग्राम और रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं और शुरुआत में ही विद्या जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई और साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत में माँ पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत हम सभी को सुनाया है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: हाँ।
0: विद्या जी, दूसरा कौन सा गाना जो है आपको याद आ रहा है और अक्षर सी से जिसका टारगेट हमने आज के इस एपिसोड में रखा है, तो आप बताइए सी अक्षर से कौन सा गाना आप सुनाने वाले हैं अभी?
1: दूसरा गाना जो है वो तो सबका बहुत ही पसंदीदा है और वो बहुत ही हिट हुआ था वो गाना वो टाइम में, और आज भी हिट है वो गाना। तो वो गाना है पेइंग गेस्ट में से, 1957 का है, छोड़ दो अचल वो गाना है। सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो आज भी पसंद है। ऐसा गाना तो हुआ नहीं फिर तो। आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी का आवाज में है ये गाना, देवानंद और नूतन जी के ऊपर फरमाया गया है ये गाना। तो किचन लाइन आपको कुछ सुना के दिखाती हूँ मैं।

जी जी विद्या जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और मुझे लगता है कि ये नूतन और देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, और शायद ये लिखा गया था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था, और आशा भोसले और किशोरदा की आवाज में ये खूबसूरत गाना है, सचिन देव बर्मन का संगीत से सवारा हुआ, वेंगेश प्रेम का 1957 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सी अक्षर से ढूंढ निकाला है विद्या जी, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे श्रोताओं के लिए ये खूबसूरत गाना अभी सुनाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: बात ये मौसम सुहाना क्या कहेगा,
1: छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या।

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा,
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर इस कार्यक्रम को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातें हो रही है। और हम लोग एक टारगेट लेकर इस कार्यक्रम में सी अक्षर वाले 1950s और 60s के गाने आपको सुना रहे हैं। आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा होगा। और जिस तरह से हम लोग ख्याल करते हैं, कुछ चीजें हमारे अच्छा लगता है, कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर जीवन में अगर एक सोच लेके चलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं, तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा हम कर पाते हैं। तो आइए विद्या, एक और गीत मैं चाहूंगा कि आप कौन सा सुनाएंगे आज के इस कार्यक्रम में।
3: हाँ, हमने जैसे कि सबसे पहला गाना सुना था जो कि माँ पर पिक्चराइज था, एक बेटे ने अपनी माँ के लिए वो गाना सुनाया था, तो ये गाना है जो अपने उसके पापा उसके बेटे के लिए सुना रहे। माँ बाप भी बच्चों के लिए कुछ कम नहीं करते, उनको खिलाने के लिए, उनको ऐसे शांत कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है, अलग अलग आवाजें निकाल के उनको शांत करना पड़ता है। ये है।

0: गाना बहुत ही अच्छा गाना है। ये गाना है 1957 का अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का है, मोहम्मद रफी जी ने गाया है ये, बच्चों के लिए है ये गाना।
1: अच्छा
0: हाँ, तो मैं थोड़ा सुना के, वो आवाज को मैं नहीं निकाल सकती, वो तो मोहम्मद रफी जी निकाल सकते हैं। बहुत ही मुश्किल है
1: जी, जी।
0: पर मैं थोड़ा सुना के दिखाती हूँ।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया।
0: हाँ हाँ, चुन चुन करती आई चिड़िया। तो वो जो कर सकते थे ना किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफी जी, लता जी, आशा जी, वो कोई नहीं कर सकता अभी।
1: अभी के समय में बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें।
0: बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और सुनने को मिलती भी नहीं अभी।
1: हाँ।
0: तो मैं थोड़ा सा सुना के दिखाती हूँ अभी।
1: जी।
0: चुन चुन करती आई चिड़िया,

जी जी जी बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है, और खास बच्चों पर इसको पिक्चराइज किया गया था उस समय, और बहुत ही प्यारा सा ये गीत है जिसकी लिरिक्स सुनने के बाद लगेगा कि कैसे वो एक अलग खुशी प्रदान करता है ये गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजबूरियों को अपनी कहें, क्या किसी से हम लाए गए हैं, आए नहीं है खुशी से हम। आप सुना है रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM पर। चलिए सुनते हैं इस गीत को, किशोर दा, लता जी और मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, एक कोरस गाना है। आप सुना है रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

से मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: का सफर इस कार्यक्रम को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातें हो रही है। और हम लोग एक टारगेट लेकर इस कार्यक्रम में सी अक्षर वाले 1950s और 60s के गाने आपको सुना रहे हैं। तो आइए विद्या, एक और गीत मैं चाहूंगा कि आप कौन सा
1: है, थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग, वो है तारीफ सॉन्ग है वो, मतलब वो उनकी तारीफ में ये गाना गा रहे हैं। मोहम्मद रफी जी का ये गाना है, चौधरी का चांद फिल्म का है, सबका पसंदीदा गाना है ये। 1960 का है ये, 1960 में है ये फिल्म आई, ये गाना तो सबको पता ही है। म्यूजिक बाय रविशंकर है गाने का।

विद्या, बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया। उस जमाने का बहुत हिट गाना था और मुझे लगता है कि सभी को यह गाना पता ही होगा। 1960 में 14वीं का चांद फिल्म जो रिलीज हुआ था और जिसका संगीत जो है रवि साहब ने दिया था और शकील बदायूं साहब ने इसे लिखा था। और खास करके ये जो गाना है इसको पिक्चराइज किया गया था गुरुदत्त और वैदार रहमन पर। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाना जो है बहुत पसंद आएगा और कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाता है ये गाना। तो आइए सुनते हैं, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर। ख्वाबों का सफर, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं खुशी के, तो हमें पढ़कर खुशी होती है। और जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अलग चीजें आपको देने की कोशिश करते हैं और जिसमें हम लोग थोड़ा सा वैरायटी आपको बातें बताने की कोशिश करते हैं और अच्छी चीजें आप तक पहुंचे, ऐसी हमारा जो है विचार रहता है। तो आइए, विद्या हमारे साथ है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन 1950s और 60s का लेकर आई है और सी अक्षर से, वो भी किसी एक अल्फाबेट से ढूंढना और उसको उस ढंग से उस पूरे एपिसोड में उसी चीजों को ध्यान में रखना, ये अपने आप में कमाल की बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। बताइए कौन सा एक गीत अभी आपने सिलेक्ट किया है?
1: हाँ, तो अभी मैंने अगला गाना जो सुना है वो सब बच्चे भी बता सकते हैं और बड़े भी बता सकते हैं। अगर बच्चों को भी पूछो, उनको स्कूल में यही सिखाते हैं, बोलो सी देखिए क्या होता है, सी फॉर, तो वो बोलते कैट। तो ये गाना वो है, सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, वो गाना है। वो सबको बहुत ही पसंद है और बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। तो ये है दिल्ली का ठग फिल्म से है 1958 का, जो नूतन और किशोर कुमार के ऊपर है ये गाना पिक्चराइज। और गाना गाया है किशोर कुमार जी ने, इसको म्यूजिक दिया है रविशंकर जी ने। सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, तुम ही कहो इसका मतलब क्या हुआ। एम ए डी मैट, मैट माने पागल, डीओ बॉय, बॉय बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो क्या हुआ।
0: विद्या जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है। और इस गीत को सुनने के बाद, या आपने सुना दो तीन बार से, तो कैसा फील कर रहा है? इसका लिरिक्स, इसकी जो भाव है वो क्या है?
1: बहुत ही अच्छे हैं, वो सिखा रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा। वो है इसमें भाव, वो है मतलब वो उसको शायद से कुछ इंग्लिश वगैरह कुछ सिखा रहे। अच्छा। तो इसके ऊपर ये गाना है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है।
0: विद्या जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, थोड़ा मस्ती भरा है और कहीं ना कहीं इंग्लिश की जो बेखुदी और कुछ अच्छी चीजों को, जैसे मस्ती जिसको कहते हैं, एक मौलाई मस्ती जिसको कह सकते हैं, वो चीजें एक मस्ती भरा गीत है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, रवि साहब का संगीत और आशा भोसले और किशोरदास का गाया हुआ 1958 का ये गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशी आप बात।
2: सी ए जी कैट, कैट माने बिल्ली,
3: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा,
2: सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, आर

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी. L-I-O-N, lion. Lion माने शेर. अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ.
1: M-A-D, man. Man माने पागल. G-O-A-T, goat.

0: में हसी न होगा कोई हम सा भी।
1: लगे ने कभी अपने के मुंह देखा भी।
0: तुम्हें एक नहीं जहाँ में हसी न होगा।

0: घर मिला ले नजर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया।
1: यहाँ से डरो ये सोचा करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: बी ए डी बैड, बैड माने बुरा, बी यू टी बट, बट माने

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और सी अल्फाबेट से आपको बहुत सारे गीत हम लोग सुना रहे हैं और कहते हैं, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कितना अच्छा पॉजिटिव चीजें हैं इस लाइनों में, इन शब्दों में। देखिए एक बार फिर से वापस दोहरा के देखिए, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो बार बार इन चीजों को अगर आप सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अच्छे शब्दों से, अच्छे विचारों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या, आपका फिर एक बार स्वागत है और अभी कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं उसके बारे में बताइए।
1: हाँ, तो अगला गाना है, तो आपको पता है क्या, लड़की की सबसे खुशी का दिन और उसका दुख का दिन एक ही रहता है, एक ही पल रहता है। वो कौन सा रहता है? वो रहता है विदाई। मतलब वो खुश भी रहती है और वो बहुत दुखी भी रहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ के जाना होता है, सब कुछ छोड़ के जाना है। खुश रहती है कि एक नई जिंदगी में वो जा रही है। तो ये बहुत ही अनोखा पल रहता है और ये पल जो है वो क्या किया है इस गाने में, मतलब पूरे वर्डिंग उसके बहुत ही अनोखे है, मतलब बहुत ही मीनिंगफुल है ये गाना। एक लड़की कितनी खुश भी होती है, दुखी भी होती है, ऐसा ये है विदाई सॉन्ग। तो ये है बम्बई का बाबू फिल्म का 1960 का, जो कि देवानंद और सुचित्रा जी पे

पिक्चराइज है ये गाना मुकेश कुमार जी की आवाज में है और सचिन देव बर्मन जी का म्यूजिक है। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अनोखा गाना है, तो मैं थोड़ा सा सुना के दिखाती हूँ ये।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM पर। खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। और आज के हमारे खास मेहमान विद्या चौधरी हैं, जो बहुत सारे 1950s एंड 60s का सॉन्ग कलेक्शन उनके पास है और वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं और खुद गाती भी है, प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो चलिए, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। आप सुना है रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM पर। विद्या, आपका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छा गीत हमने सुना अभी, सुचित्रा सेन और देवानंद पर पिक्चराइज किया गया चल रही सजनी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद दिलाया और सुनाया भी। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप कौन सा एक गीत जो आपके जहन में है या आपका कलेक्शन में है उसे बताइए।
1: हमने अभी सब तरह के गाने सुने, तो एक सैड सॉन्ग तो होना ही चाहिए। वो अभी ये अगला है, एक सैड सॉन्ग, बहुत प्यार का गाना है, सैड सॉन्ग पर फिर भी बहुत अच्छा है। तो ये छुप गया कोई दूर से पार के, वो गाना है, वो चंपकली फिल्म का है, वो बहुत हिट रही थी ये फिल्म उस टाइम में, चंपकली फिल्म 1957 में है। ये गाना गाया है लता मंगेशकर जी ने, और ये गाना भी सुचित्रा सेन और भारत भूषण के ऊपर पिक्चराइज है। ये गाना सैड सॉन्ग है, शायद
0: सैड सॉन्ग थोड़ा सा सुनाइए। हाँ।

जी जी चंपाकली फिल्म का 1957 में ये रिलीज हुआ था शायद। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने और लता मंगेशकर ने इसे गाया था। हेमंत कुमार का संगीत से सजा ये गीत है और बहुत ही उस समय का पॉपुलर गाना जैसे आपने कहा वैसे ही है। तो आइए हमारे श्रोताओं के लिए इस गीत को हम सुनाएंगे अभी। तो चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और इस गीत का लुत्फ उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातें करते हुए। कुछ चीजें जो है हमारे जीवन में आती है जाती है, लेकिन आती जाती सिचुएशन भी हमें कहीं ना कहीं एक सीख देकर जाती है। तो इसीलिए अगर हमें कुछ नहीं समझ में आया या हम कुछ नहीं सीख पाए तो ये वक्त का नहीं, हमारा खुद का कमी है। इसलिए हर वक्त हमें सतर्क रहना है, हर चीजों से कहीं ना कहीं जो भी कुछ मिल रहा है अनुभव जरूर लेना चाहिए, सीखना जरूर चाहिए। इसीलिए कहते हैं खुशियों की तरह गम भी एक दस्तूर है जमाने का, जब हर ओर छा जाता है अंधेरा तो वक्त आता है दिया जलाने का, तो वक्त आता है दिया जलाने का। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुना है और हमारे साथ आज के इस शो में जिस तरह के हम गाने आपको सुना रहे हैं 50s और 60s के खूबसूरत गाने जो अक्षर सी से शुरू होते हैं, उन चीजों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारा जो गाने का टारगेट है वो पूरा करने विद्या काफी चीजों को कलेक्ट करके हमारे बीच में लेकर आई है। तो विद्या, आप कौन सा गीत के और आपका इशारा?
1: हाँ, अभी अगला गाना है वो भी बच्चों के लिए ही है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और खिलाने के लिए तो थोड़ा सबसे ज्यादा जो मेहनत लेनी पड़ती है ना, वो उनको दूध पिलाने के लिए रहती है, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं रहता और जो सबसे हेल्दी रहता है। तो ये गाना है उसी के लिए है कि वो बच्चा मतलब नहीं बोल रहा है दूध पीने के लिए, तो उसको पिलाने के लिए वो उसके लिए गाना गा रहे।
0: अच्छा,
1: क्या ये गाना है? चंदा मामा दूर के कुए पकाए दूर के, वो गाना है। वचन फिल्म का है ये गाना, 1954 में आशा भोसले जी ने गाया है वो, और म्यूजिक दिया है रविशंकर जी ने। तो मैं थोड़ा सा सुना के दिखाती हूँ आपको वो गाना। चंदा मामा दूर के हुए

0: बहुत ही अच्छा।
1: मुझे पता है बहुत ही मुश्किल है।
0: चलिए, बच्चों के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। आशा करता हूँ हमारे सभी बच्चों को और बड़ों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके जीवन से रिलेटेड है ये गाना 1955 का आपने याद कराया। और इसे

रवि साहब ने संगीत से सवारा था और असद जयपुरी साहब ने इसे लिखा था। असद जयपुरी साहब के साथ साथ पंडित रविशंकर ने भी इस गाने को लिखने में उनको हेल्प किया था। आशा भोसले की आवाज में ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मुस्कान ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर इस प्रोग्राम में। और बहुत ही अच्छी अच्छी जो सिलेक्शन है गानों का वो विद्या जी हमारे हमें सुना रही हैं और हम सुनते जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की तरफ वो इशारा कर रही है। और दुनिया में काफी चीजें जो है हम लोग देखते हैं, तो जिस तरह से एक माँ एक बच्ची का रोल, एक माँ का रोल, और किस तरह से एक जो ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति है अपने ऑफिस में किस तरह का रोल करता है, और वो परिवार में आता है तो किस तरह से उसका एक्शंस पूरे चेंज हो जाता है। तो वो चीजें हम लोग देखकर कभी इन चीजों को अगर बड़े साक्षी होकर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप एक व्यक्ति हैं लेकिन अलग अलग रोल पूरे दिन में कितने रोल्स आप करते हैं कभी लिख के रखिए, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। आइए विद्या, आप किस गीत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं?
1: तो ये गाना है मतलब हमारा जो देश है उसमें सभी उनके सब लोग एक साथ रहते हैं, तो ये गाना उसी के ऊपर है। छलिया मेरा नाम गाना है, ये छलिया फिल्म का गाना है। सब लोग कैसे रहते हैं मिलजुल के सबको, ऐसा गाना है वो। और ऐसा अकेला इंडिया ही मिलेगा जहाँ पे ये सब होता है, तो सच में कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा।

विद्या जी याद आ गया मुझे, ये राज कपूर पर पिक्चराइज किया गया था चलिया मेरा नाम, और इसे संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी ने, और इसे लिखा था कमर जलालाबादी ने। मुकेश साहब का ये गाया हुआ गीत है, बहुत ही प्यारा सा गीत है और जो हम सभी को बांध के रखता है। भारत की जो भाव है वो विविधता में एकता जो प्रदर्शित हम लोग करते हैं, और उन चीजों को यहाँ पर बताया गया है। तो आइए इस गीत का लुत्फ उठाते हैं, बहुत ही प्यारा संगीत है मुकेश की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सवारा ये गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो आइए इस गीत को सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीली आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीली आवाज 107.8 FM पर। खाबों के सफर इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा मैसेज।
2: बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिजी शेड्यूल में से कुछ बच्चा, मैं तो सिर्फ वही रहता है कि सब पिता बच्चों को संभालो, खाना पकाओ, मतलब जो यही हाउस वाइफ हूँ मैं, तो हाउस वाइफ को तो यही काम रहता है। पर मुझे ये अनोखा एक्सपीरियंस लेके सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा। अपने शेड्यूल में से भी थोड़ा सा कुछ टाइम निकाल के खुद के लिए है ये, अब सबके लिए तो करते ही रहते हैं, खुद के लिए भी कुछ करने का मौका मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। तो थैंक यू सर, और आगे भी अगर हो तो मुझे पक्का बताओ, मैं पक्का करूंगी।
1: ओके थैंक यू विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बात शेयर किया। और आपको अच्छा लग रहा है तो हम आगे भी आपको सुनना चाहेंगे और आपको बुलाते रहेंगे इसी तरह कार्यक्रम में। तो आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका फिर से एक बार थैंक यू सो मच। कभी अपने सपनों को हकीकत की दुनिया दिखाओ, खुद को इस दुनिया में आजमाओ, दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान बनाओ। तो चलिए इसी के साथ मुझे और विद्या जी को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। नाम नमस्ते, खम्मा गणिसा। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ मनाओ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करके जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती?

नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभ सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो बच्चों।
1: हेलो दीदी।
0: कैसे हो तुम लोग?
1: अच्छे।
0: और तुम लोग की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है ना?
1: हाँ।
0: तो फिर तो कोई भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता होगा।
2: हाँ, घर पे बोर हो जाते हैं।
0: घर पे बोर हो जाते हो? दोस्तों के बिना तो हम सब बोर हो जाते हैं ना?
1: हाँ दीदी।
0: तुम लोग के सारे दोस्त स्कूल में हैं या कुछ दोस्त घर के पास भी रहते हैं?
3: कुछ दोस्त घर के पास रहते हैं।
0: अच्छा, आदि के कुछ दोस्त घर के पास रहते हैं। कौन कौन रहता है आदि के दोस्त?
3: यश, देवत, आर्यन और विवेक।
0: अरे वाह, आदि के तो बहुत सारे दोस्त हैं। और सताक्षी?
4: मेरी भी रहती है एक फ्रेंड।
0: एक फ्रेंड रहती है घर के पास। और भुवना?
5: मेरी तो अपार्टमेंट है ना, इसलिए बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन मेरे से कम उम्र में। इवलिन, इथन, वैष्णवी, कार्तिक, अनन्या।

0: मतलब ये सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं ये आपसे छोटे हैं?
1: हाँ बहुत छोटे।
0: कितने बड़े हैं?
1: फोर्थ क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे।
0: अरे वाह, तो हमारे दोस्त तो हमसे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं।
1: हाँ,
0: है ना बच्चों?
2: हाँ,
0: दोस्ती की तो कोई एज नहीं होती, लेकिन ज्यादातर फ्रेंड्स तो हमारे वही बनते हैं जो हमारे साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके साथ हम दिन भर रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, है ना? और पंकज?
2: हाँ दीदी।
0: हमारे भी बहुत सारे दोस्त होंगे?
2: हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ज्यादा स्कूल में ही।
0: ज्यादातर स्कूल में ही है। घर
2: हाँ।
0: के पास कोई भी दोस्त नहीं है जिनके
2: के पास
0: क्रिकेट खेलते हो?
2: हाँ, ऐसे तो बहुत हैं क्रिकेट खेलने वाले दोस्त, लेकिन स्पेशल फ्रेंड्स कुछ खास नहीं है।
0: अच्छा, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त हैं?
2: अच्छे तो हैं।
0: कितने दोस्त?
2: मेरे अच्छे दोस्त दो हैं जो मेरे घर के पास हैं।
0: दो दोस्त हैं, वो आपके साथ में पढ़ते हैं कि आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं?
2: एक टेंथ में पढ़ता है और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ट्वेल्थ में पढ़ता है।
0: अच्छा, अरे वाह, मतलब आपके बराबर के ही हैं।
2: हाँ।
0: है ना? आदि, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है?
1: आयुष।
0: आयुष, वो आपके साथ पढ़ता है? कब से आपके साथ में पढ़ता है आयुष?
1: फर्स्ट।
0: अच्छा, तो आयुष आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है?
1: मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुष और मेरी दोस्ती कब हुई। एक दिन जब हम पार्क में खेल रहे थे तब वो आया था और बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं क्या, तो मैंने बोल दिया हाँ खेलो। तो उसके खेलने के बाद जब हम घर जा रहे थे तो मैंने उसका नाम पूछा और उसने मेरा नाम पूछा, ऐसे ही दोस्ती हो गई हमारी।
0: ऐसे खेलते खेलते दोस्ती हो गई।
1: हाँ।
0: आयुष और आदि की। सताक्षी, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है?
3: मेरी बेस्ट फ्रेंड उन्नति है।
0: उन्नति, और कितने सालों से वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है?
3: वो 3 इयर्स से।
0: 3 इयर्स से। अच्छा, उन्नति आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड जो आपकी है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद क्यों है?
3: क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग है, इंटेलिजेंट है और बहुत ही फ्रेंडली है।
0: अच्छा, वो बहुत केयरिंग है, तो क्या वो आपकी बहुत केयर करती है?
3: हाँ, हम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं।
0: तो कोई सिचुएशन आपको ऐसी याद है, कोई ऐसी बात जो उसके बारे में आपको याद हो?
3: हाँ, एक बार एक मेरी फ्रेंड है, बहुत झगड़ा करती है मुझसे, तो एक बार वो उससे मेरे से बहुत बुरा वाला झगड़ा कर लिया था, तो उन्नति ने उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था।
0: अच्छा, मतलब उन्नति ने जाके उसको समझाया था?
3: हाँ।
0: बेस्ट फ्रेंड की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो प्यार से समझाते हैं, और अगर हम कोई भी गड़बड़ कर दें तो उसको क्या करते हैं?
3: सॉल्व करते हैं।
0: सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं, है ना? पूर्णा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है?
4: मेरे बेस्ट फ्रेंड 4 लोग हैं। निवेदिया, सुश्रुता, आकांक्षा, विंध्या।
0: ये सब आपके साथ स्कूल में पढ़ते?
4: नहीं, विंध्या तो दूसरे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन ये तीनों मेरे साथ ही है। लेकिन विंध्या जब मैं छोटी थी तब से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी।
0: अच्छा, मतलब विंध्या आपकी सबसे पुरानी दोस्त है।
4: हाँ।
0: उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है?
4: वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है।
0: बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो कोई सिचुएशन आपको याद है जब उसने आपको अंडरस्टैंड किया हो?
4: हाँ, एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, ये हुआ, तो मैंने कुछ बात नहीं की। छोटे लोग आते हैं और पूछते क्या हुआ क्या हुआ, मुझे बहुत इरिटेशन होता है, लेकिन वो अच्छे से समझती है और सॉल्व करती है, प्यार से बात करती है और बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है।
0: अच्छा, मतलब और लोग पूछते हैं तो आपको बुरा लगता है?
4: हाँ।
0: लेकिन वो इतने प्यार से आपसे बात करती है और पूछती है,
4: मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों की ये खूबी तो होती है कि वो हमसे इतने प्यार से बात करते हैं, उन्हें पता होता है जब हम टेंशन में हैं तो इतने अच्छे से बात करते हैं कि हमारी सारी टेंशन हम उन्हें बता देते हैं, और फिर आपको अच्छा महसूस भी होता है ना?
4: हाँ।
0: और बाकी तीनों फ्रेंड्स?
4: वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतना बड़ा सिचुएशन नहीं आया था कि मैं उनसे इतना बात करूं, लेकिन वो बहुत अच्छी दोस्त है विंध्या।
0: सिचुएशन आने पे हमारी अच्छी दोस्तों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज और उभर कर आती है।

0: सेंडे की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है कि मैं कितना भी परेशान होता हूँ लेकिन उसके पास रहता हूँ तो मैं अपनी परेशानियाँ भूल जाता हूँ।
1: अच्छा, आप अपनी परेशानियाँ भूल जाते हो।
2: हाँ।
1: तो कोई ऐसी बात आपको याद है जब आप बहुत परेशान हुए हो, कभी पढ़ाई की कोई टेंशन हुई हो या घर की कोई टेंशन हो और आप सैंडी के साथ हो और फिर सब भूल गए हो?
0: वैसे एक बार फ्रेंड से झगड़ा हुआ था किसी दूसरे फ्रेंड से, तो मैं अपने फ्रेंड सैंडी से मिला और उसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मतलब अपनी प्रॉब्लम ही भूल जाते हैं।
1: मतलब वो बहुत सारी मस्ती करता है आपके साथ?
0: हाँ।
1: कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, और चाहे हम कितना भी सीरियस क्यों ना हो हम वो सब उनकी मस्ती में भूल जाते हैं। आदि, क्या आपका भी दोस्त आपसे बहुत मस्ती और मजाक करता है?
3: हाँ।
1: हाँ, और आप क्या करते हो अपने दोस्त के साथ?
3: मस्ती और मजाक।
1: अच्छा, हमारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो हमने बात की, पर हम भी तो उनके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे ना?
3: हाँ।
1: तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद की हो?
0: हाँ, बहुत बार की है।
1: बहुत बार की है, तो पंकज बताएगा हमें।
0: जी दीदी।
1: पंकज, क्या आपके सामने भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने सैंडी की मदद की हो?
0: सैंडी का तो याद नहीं, लेकिन मैंने हर्षित की हेल्प की थी एक बार।
1: अच्छा, क्या मदद की थी?
0: उसे आई साइट है तो उसके एक बार ग्लासेस टूट गए थे।
1: उसके ग्लासेस टूट गए थे तो आपने क्या किया फिर?
0: तो उसके पास पैसे नहीं थे और उसे डर लग रहा था कि घर पे कहीं डांट ना पड़े, तो उसे मैंने पैसे दिए थे और उसके ग्लासेस दो दिन के अंदर ठीक करवा के वापस दिए थे।
1: लेकिन आपने उसे पैसे कैसे दिए, अपनी मम्मी से पूछ के?
0: मम्मी ने मुझे दिए थे पॉकेट मनी।
1: अपनी पॉकेट मनी से आपने उसकी मदद की?
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि अपनी पॉकेट मनी से आप उनकी मदद करें। लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी बात आए जहां आपको ज्यादा जरूरत हो तो अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। भुवना, आपको कोई ऐसी सिचुएशन याद है?
4: हाँ, एक दिन हमें सडन टेस्ट हुआ तो टीचर ने 2 मिनट दी सबको रिवाइज करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो साइंस सब्जेक्ट है और वो पूर है उसमें। तो मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में कंबाइंड स्टडीज की और उसको समझाया क्या क्या है, और फिर हम दोनों ने एग्जाम इतना अच्छा लिखा कि हमको 10/10 मिला।
1: अरे वाह, दोनों को?
4: हाँ।
1: ये दोस्ती की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि हम आगे अकेले नहीं बढ़ते बल्कि अपने दोस्त को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।
4: हाँ,
1: है ना? तो आदि, आपने अपने दोस्त की कभी कोई मदद नहीं की?
3: की है।
1: क्या की? पढ़ाई में की कि खेलने में की कि मस्ती में की?
3: मैंने अपना फेवरेट गेम उसे दिया था, वो मांग रहा था इसी।
0: कैसे दिया?
3: जेंडर से।
1: अच्छा, मतलब आपका फेवरेट वीडियो गेम आपने अपने दोस्त को दिया?
3: हाँ।
1: अपना फेवरेट गेम शेयर किया। अच्छा, क्या तुम लोग का कभी कोई स्कूल चेंज हुआ है?
0: हाँ हुआ है।
1: और पुराने दोस्त छूटे हैं?
3: हाँ।
0: नहीं, मेरे पुराने दोस्त नहीं छूटे।
1: अभी भी उनसे मिलते हो?
0: हाँ, अभी भी मिलता हूँ।
1: तो वो दोस्त अभी भी वैसे ही है या कोई दोस्ती में फर्क पड़ा है?
3: नहीं,
0: मेरे सारे दोस्त अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थे।
4: मैंने तो नर्सरी और LKG अरविंदो में पढ़ी, तब से मैं एक ही स्कूल में हूँ तो मुझे कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो छोटे हैं ना, मैं भूल गई।
1: अच्छा, मतलब लेकिन आपके दोस्त वही हैं हमेशा से।
4: हाँ।
1: कभी चेंज नहीं हुए। और आदि तो अभी बहुत छोटा है, है ना आदि? तो आपके दोस्त तो अभी भी वही है।
3: हाँ।
1: ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पुराने दोस्त हमसे छूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं, लेकिन तब भी हमारी दोस्ती हमेशा कैसी रहनी चाहिए?
3: अच्छी।
1: हाँ, जैसे पहले थी वैसी ही रहनी चाहिए, चाहे स्कूल चेंज हो जाए, चाहे हम दूसरी क्लास में आ जाएं, तब भी

0: अच्छा, अब तो हमने बात की अपने बेस्ट फ्रेंड की, लेकिन आपको पता है एक और बेस्ट फ्रेंड हमारे पास होता है। कौन?
1: माँ।
0: हाँ मम्मी, क्योंकि मम्मी से भी तो आके हम सब बातें बताते हैं, है ना?
1: हाँ।
0: तो किस किस की बेस्ट फ्रेंड उनकी मम्मी है?
1: मेरी।
0: और पंकज?
2: मेरी भी है।
0: आदि?
3: मेरी भी है।
0: अच्छा, तो मम्मी के बारे में बताओ, मम्मी के साथ दोस्ती के बारे में फूकना हमें बताएगी।
1: माँ के साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, वो इतनी अच्छी समझती है कि मुझे कंसोल करती है कुछ हुआ तो, और मुझे पढ़ाई में हेल्प करती है जैसे फ्रेंड्स करते हैं, और सभी बातों में मेरे साथ एंजॉय करती है, कुछ भी जोक्स हो कुछ भी मुझे समझाती है और अच्छे से बात करती है।
0: और सताक्षी?
4: मम्मी मुझे ढेर सारी चीजें बनाना सिखाती है और भी बहुत सारी चीजें सिखाती है, और मैं उनके साथ हर एक प्रॉब्लम शेयर करती हूँ जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ करती हूँ।
0: हाँ, तो मम्मी इसीलिए हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है क्योंकि वो हमें हर सिचुएशन से निकाल सकती है, हर सिचुएशन में हर बात हम उन्हें बता सकते हैं और हेल्प उनकी ले सकते हैं, है ना पंकज और आदि?

0: अच्छा मुझे ये बताओ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब जब अभी कोई आपको प्रॉब्लम हो या आपकी छुट्टियां हैं, आपको कुछ चाहिए हो, तो मम्मी पापा तो साथ में होते हैं, पर क्या दोस्तों से भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो?
1: हाँ।
0: क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने दोस्तों से सताक्षी?
1: वो बहुत ही शेयरिंग हो और मतलब एक दूसरे को समझने वाले हो, क्योंकि जब तक वो लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो फ्रेंड्स नहीं कहलाएंगे अच्छे, और फिर झगड़ा होता रहेगा एक दूसरे में।
0: और पंकज आप क्या एक्सपेक्ट करते हो?
2: मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी मुझे मेरे फ्रेंड्स की जरूरत पड़े तो वो कभी मुझे मना नहीं करे। जैसे हर फ्रेंड की आदत होती है कि चाहे खुद को कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर किसी फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए।
0: मतलब जब हमें जरूरत पड़े तो हमारा दोस्त हमारे साथ हो।
2: हाँ।
0: और भुवना आप क्या चाहते हो अपने दोस्त से?
3: मेरे दोस्त से मैं ये चाहती हूँ कि वो हंसते बात करे, क्योंकि थोड़े लोग मेरे दोस्त ना बुरे तरह से बात करते हैं कि बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात ना इतना इरिटेटेड हो जाते हैं कि दूसरे लोगों को बहुत बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त हंसते बात करे और हर टाइम खुश से रहे।
0: आप चाहते हो कि आपके दोस्त कोई भी ऐसी बात न करें कि किसी को बुरा लगे?
3: हाँ।
0: और खुशी से सबके साथ रहें?
3: हाँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है भुवना। और आदि?
4: मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और दूसरों की हेल्प करते रहे।
0: दूसरों की हेल्प करते रहें? तो पता है बच्चों, ये एक्सपेक्टेशन हमारी जो हमारे दोस्तों से है वो कैसे पूरी होंगी, किसी को पता है?
1: जब हम लोग खुद के साथ इसी तरह से बिहेव करें।
0: हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो आप दूसरों से चाहते हैं

0: ऐसा आप बन के दिखाइए तो आपको वो जरूर मिलेगा।
1: हाँ।
0: तो ये सब चीजें जो आप अपने दोस्तों से चाहते हैं, वो अगर आप उनके साथ करेंगे, वही व्यवहार आपको वापस उनसे जरूर मिलेगा।
1: लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स है वो सभी जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे वो सभी वैसी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, वो सभी ऐसे हैं, तभी तो वो हमारे दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना बच्चा?
1: हाँ।
0: लेकिन अगर कभी कभी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए बताओ?
2: हमें उनका साथ तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
0: तो अगर आप लोग के दोस्तों से कोई गलती हो जाएगी तो क्या करोगे?
2: माफ कर देंगे
0: और बाद में उसे प्यार से समझाएंगे।
2: बिल्कुल यही होता है, अभी भी
0: यही होता है।
1: हाँ।
0: अच्छा, क्या तुम लोग का अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ है?
1: हाँ,
2: हाँ। हुआ है।
0: अच्छा, तो कौन सबसे पहले बताएगा झगड़े के बारे में? पंकज, अगर आपका दोस्त आपसे झगड़ा करे किसी गलत काम के लिए, आपको करने को बोले कि कोई गलत काम है जो वो बोले कि आपको करना है, आपका बहुत अच्छा दोस्त, तो आप क्या करोगे?
2: फिलहाल तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरे किसी अच्छे दोस्त ने कोई गलत काम करने को कहा हो। मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे समझदार हैं और कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते या गलत काम नहीं करते।
0: कोई कभी बोले तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में?
2: उस सिचुएशन में उसे डायरेक्टली मना कर दूंगा।
0: डायरेक्टली मना कर दोगे? और अगर वो आप पे गुस्सा हुआ तो?
2: अगर वो मुझ पे गुस्सा हुआ तो मैं उसे समझाऊंगा, समझे तो ठीक है। तो हमें गलत काम तो हमें नहीं करने चाहिए नहीं, और फ्रेंड भले कितना भी अच्छा हो लेकिन गलत काम करने को कहता है तो उसे मना कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, फ्रेंड कितना भी अच्छा हो अगर गलत काम करने को कहे तो हमें मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड के लिए भी गलत है ना? दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, गलत काम हमें उस दोस्ती में कभी
1: नहीं करना
0: है ना? आदि कोई गलत काम तो करता नहीं, और आदि के दोस्त

0: अच्छा अब मुझे बताओ दुखी दोस्तों के साथ तुम्हारी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है।
1: मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है मेरे बर्थडे टाइम पे मेरे खूब सारे फ्रेंड्स आए थे स्कूल के और हमने खूब ज्यादा मस्ती की थी।
0: बर्थडे पे तो दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है। और आदि सबसे ज्यादा मजा दोस्तों के साथ कब आया?
2: जब मेरा बर्थडे हुआ था तभी आया।
0: बर्थडे स्कूल में मनाया था कि घर पे?
2: दोनों जगह।
0: दोनों जगह दोस्तों के साथ?
2: हाँ।
0: अरे वाह, तब तो टू टू टाइम मजा आया आपको। और पंकज?
3: मुझे मेरे दोस्तों के साथ मजा आया था। एक बार जब मैं सुंदर माता मंदिर घूमने गया था अपने फ्रेंड्स के साथ।
0: घूमने गए थे तो वहाँ पे क्या क्या किया दोस्तों के साथ?
3: वहाँ पे बहुत मस्ती की, बस हम वो भूल नहीं सकते।
0: और भूगना?
4: जब हम पिकनिक गए वाटर पार्क।
0: वाटर पार्क पिकनिक गए स्कूल से?
4: हाँ।
0: अच्छा, तो क्या क्या किया वहाँ पे?
4: बहुत सारी गेम्स थी, हम सब दोस्तों ने पैसे पैसा बांट लिया और हम सब बहुत सारे गेम्स ट्राई की और इतना मजा आया कि मैं भूल नहीं सकती वो मेमोरी।
0: मतलब जब हम दोस्तों के साथ ग्रुप में बाहर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे हमारा बर्थडे हो चाहे पिकनिक हो, तो हमें बहुत मजा आता है।
4: हाँ।
0: ठीक है बच्चों, तो हमने दोस्तों के बारे में बात की और ये भी बात की कि हमें दोस्ती निभानी भी जरूरी है कि नहीं?
5: हाँ।
0: हाँ, तो जो एक्सपेक्टेशन हम अपने दोस्तों से रखते हैं वो पहले हमें पूरी करनी है। और अगर हमारा दोस्त कभी कोई गलत काम करने को कहे तो हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दोस्त के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है।
4: हाँ।
0: है ना बच्चों?
4: हाँ।
0: और क्या जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं बस वही आपके दोस्त होते हैं, या जो लोग जिनसे आप डेली मिलते हो, जिनके साथ रहते हो, वो भी आपके दोस्त होते हैं?
4: सब लोग हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन हमको जो बहुत सारे जिनसे हमको बहुत रिलेशन हुआ वो हमारे खास दोस्त होते हैं।
0: वो हमारे खास दोस्त होते हैं।

0: लेकिन जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं, अगर उन्हें भी दोस्त बना लें तो उनके साथ भी हम एंजॉय कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: है ना दादी?
2: मुझे एक शायरी याद है। ये शायरी उस वक्त पे डिपेंड करती है जब सारे दोस्त छूट जाते हैं और हम उन दोस्तों को याद करते हैं। शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हसीन पल मिल जाए, चल बैठे क्लास की उस लास्ट सीट पे, शायद फिर वो पुराने दोस्त मिल जाए।
0: अरे वाह, दोस्तों के सब लोग तालियां बजाएंगे, क्योंकि बचपन की जो दोस्ती होती है वो सबसे स्ट्रांग रहती है। जब आप बड़े हो जाओगे तब भी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी।
3: हम भी वो टाइम मिस करते हैं।
0: इसलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करो और उस दोस्ती को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखो।
3: हाँ नीति,
0: लास्ट में ये बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हो?
3: मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कहना चाहता हूँ, वो अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पे पहुँच जाए लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूले और मुझे जब भी उसकी जरूरत हो वो हमेशा मेरे पास हो।
0: और उसे जब आपकी जरूरत हो
3: तो मैं भी उसके पास होऊंगा।
0: मतलब उसे जब भी आपकी जरूरत होगी, चाहे वो कहीं भी चला जाए, आप उसके पास होंगे।
3: हाँ जी।
0: भूपना,
4: कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कहीं भी वो जो शेयर करे, और ताकि हम दोनों बात करें और उसको समझाएं।
0: अच्छा?
4: ऐसा बात करिए और हम दोनों को कंसोल करिए, ताकि उसको इतना बुरा ना लगे और वजन थोड़ा कम हो जाएगा।
0: मतलब आपकी फ्रेंड जहाँ भी हो, कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो शेयर करे, ताकि वो प्रॉब्लम हल्की हो जाए और उसका
4: हाँ।
0: वजन कम हो जाए और एक सोल्यूशन आप लोग मिलके निकालो।
4: हाँ,
0: है ना? अपने बेस्ट फ्रेंड को आदि क्या मैसेज दोगे?
4: वो जहाँ भी हो मुझे ना भूले, जब भी वो बड़ा हो जाए।
0: जब वो बड़ा हो जाए आपको नहीं भूले, इतने नटखट प्यारे आदि को कौन भूल सकता है?
3: कोई नहीं।
0: और आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स को
4: नहीं भूलो।
0: सताक्षी,
2: मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने इन स्कूल टाइम में खूब ज्यादा मस्ती करें और फिर एक दूसरे को कभी ना भूलें, क्योंकि फिर 11th में तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हॉस्टल में चले जाएंगे, तो हम लोग एक दूसरे को कभी भी ना भूलें।
0: दोस्ती अगर सच्ची है तो डिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो, एक दूसरे को नहीं भूलते और एक दूसरे की हमेशा खुशी चाहते हैं, जिससे दोस्ती बनी रहती है। ये था हमारा कार्यक्रम। आज हमने बच्चों से बात की दोस्ती के बारे में और दोस्तों के बारे में। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

कहना, हर मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। अय्यो अय्यो अय्यो अय्यो मान ले मेरा कहना, हर मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना बिना बिना बिना।

दिल में रटा है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा कहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

0: बना ले मुझे पति, मैं हो गया माशरती तेरे बिना। आई ओ
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी।

0: किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: अजी सुनते हो?
6: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
5: क्या सुन रहे हो?
6: रेडियो पुणेरी आवाज।
5: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं. जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
1: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अबोब फिरकतं. त्याचसोबत
2: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
3: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार साथियो, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं.
5: मधुबन FM सुनने वालों को रोहिताश्व गौड़ का प्यार भरा नमस्कार. सलाम खमा गनीसा. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.
6: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में. और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट के बारे में. जी हाँ, करियर का एक बहुत ही सुंदर विकल्प है आज के समय में. और आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्किल सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त होते हैं अपने करियर अच्छा बनाने में. तो अगर बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है व्यवसाय विकास प्रबंधन. जी हाँ, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को कहते हैं व्यवसाय विकास प्रबंधन. और वे एक ऐसी पेशेवर भूमिका है जो कंपनी के व्यवसाय को बढ़ाने और व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने, ग्राहक संबंध बनाने और रणनीति साझेदारी विकसित करने के लिए जिम्मेवार होते हैं. अब इसमें अलग अलग जो विकल्प हैं वो इस तरह के हैं कि एक नए अवसरों की पहचान, बाजार की जरूरत और रुझान समझकर एक नए व्यावसायिक अवसर खोजना. दूसरा है कनेक्टिविटी बनाना, संभावित और मौजूदा ग्राहक के साथ मजबूत संबंध विकसित करना और बनाए रखना. तीसरा है बिक्री बढ़ाना, जिसमें बिक्री लीड ढूंढना और उन तक पहुंचाना और बिक्री रणनीतियों को विकसित करके कंपनी के राजस्व में वृद्धि करना. इसके साथ है रणनीतिक योजना, जिसमें कंपनी की बाजार उपस्थिति का विस्तार करने के लिए रणनीतियां विकसित करना है. और इसके साथ अलग अलग और चीजें भी जुड़ती हैं, जैसे कि टीम का नेतृत्व करना, बाजार का विश्लेषण करना, बिक्री टीम के साथ सहयोग करना, ये सारी भी चीजें इसमें आ जाती हैं. तो अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके जो मोटे तौर पे जिन चीजों को इसके अंदर यानी व्यवसाय विकास प्रबंधन में जो आते हैं, मोटे विषय को लेकर हम बातें करने वाले हैं. और आप इस विषय करियर बनाना चाहते हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का एक अच्छा ऑप्शन है. अगर आपको लोगों से जुड़ना, बात करना और सेल करना अच्छा लगता है तो आपके लिए ये सारी चीजें, नए प्रोजेक्ट को या नए प्रोडक्ट को बाजार में लाना, उसको लॉन्च करना, उसका सेल बढ़ाना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है. तो ये एक पूरा समूह के साथ मिलकर काम करना होता है.

और उसके लिए कंपनी जो है किसी व्यवसायिक विकास प्रबंधन को हायर करती है। तो आइए इसमें क्या क्या बारीकियां होती है, कैसे इसको हम लोग ठीक से समझकर इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार और बातें कर रहे हैं करियर ऑप्शन में। आज विशेष बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की बातें। जी हाँ, ऐसा देखा जाए नौ कुछ अवसर पहचानने की बात जब आती है, नए अवसरों को पहचानना, ये इस मैनेजर का बहुत बड़ा काम होता है। अब देखिए, नए अवसरों की पहचान करने के लिए बाजार अनुसंधान, ग्राहक की जरूरतों का विश्लेषण और सिचुएशन पर नजर रखने और जैसे अपने आने वाले समय में जो उपयोग किए जा सकते हैं ऐसे वस्तुओं का भी विशालता से समझ लेना या उसको परख लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने ग्राहक आधार को छोटे छोटे समूह में बांटना, पैटर्न को समझना और विविधता देखना, नेटवर्क बनाना और शायद अपने समूह के साथ मिलकर काम करना, नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए हमेशा जागरूक और तैयार रहना जरूरी है। जैसे बाजार अनुसंधान रिसर्च जिसको कहते हैं, और इसमें नए बाजारों में मौजूदा रुझानों, ग्राहकों और जरूरतों पर विशेष प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को समझे। बाजार का आकार क्या है, उस बाजार के आकार और विकास की संभावनाओं का आकलन करें, जहां उत्पाद या सेवाओं की मांग बढ़ रही है। दूसरी बात यहां पर यह आता है कि जब हम लोग उपभोक्ता व्यवहार यानी ग्राहकों की प्राथमिकता को देखें, खरीदारी की आदत को और जरूरत का विश्लेषण करें, ऐसी चीजें जो समझे अगर आप, तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये सारा इस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आता है। और प्रतिस्पर्धा विश्लेषण यानी जो कंपटीशन है मार्केट में, तो उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। मौजूदा प्रतिस्पर्धा का जो ताकत है, कमजोरियां है, बाजार की हिस्सेदारी का मूल्यांकन करना, ये तय करना कि आप क्या अनोखा और बेहतर पेश कर सकते हैं, इन सभी चीजों को देखकर। तो यहां पर ग्राहक आधार को समझे, अपने ग्राहक को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर छोटे समूह में बांटे, जैसे कि उम्र, लिंग, जीवन शैली और खरीदारी की आदतें। इससे आप प्रत्येक समूह के विशेष जरूरतों को समझकर उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और अलग अलग नेटवर्क बना सकते हैं आप। एक विविध नेटवर्क बनाने में आप आसानी से अवसरों के संकेत को पहचान सकते हैं। दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उपयोगकर्ता की जरूरतें क्या है और उन्हें कैसा पूरा किया जा सकता है। पैटर्न पहचाने, ये एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है जहां आप विभिन्न घटनाओं के बीच पैटर्न और संबंध पहचानना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक अग्नि शमन कर्मी ने अपने अनुभवों के आधार पर एक नया उत्पाद अवसर देखा जो अग्नि श्रमिकों के सटीक स्थान का पता लगाने वाला एक उपकरण था। तो जैसे ही आप अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का पता लग जाता है, आपको सिर्फ आइडिया आने भर की बात है। अगर आइडिया आता है और वो आइडिया काम आता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, तो निश्चित तौर पे ये जो है काम करता है। और इससे आप जो है एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके अच्छी मार्केट पकड़ सकते हैं। हमेशा जागरूक रहें और तैयार रहें। अक्सर देखा जाता है अपॉर्चुनिटी आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमेशा अगर आप चौकन्ने रहते हैं, आपके कान और आंखें खुली रखते हैं,

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

फिर सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को। जागो और जगाओ सभी को, अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के बारे में बातें हो रही हैं और इसमें जो विकल्प आता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले अवसर पहचानने की बात की, अब बात करते हैं बिक्री बढ़ाने की।

कंपनी के राजस्व को बढ़ाने की प्रक्रिया है जिसमें बिक्री लीड ढूंढना, उन तक पहुंचना और प्रभावी बिक्री रणनीतियों को विकसित करना शामिल है। इसमें एक स्पष्ट बिक्री योजना बनाना होता है, जैसे ग्राहक की जरूरत के अनुसार आप सक्रिय रूप से बेचना और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना इसके अंदर शामिल है। जैसे बिक्री लीड ढूंढना और उन तक पहुंचना, ये भी एक प्रक्रिया। इसमें लीड जनरेशन की बात आज करते हैं। कई बार ऑनलाइन बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो आपको लीड जनरेट करके दिया जाता है, यानी उन लोगों की जो लिस्ट है वो आपके पास भेजी जाती है जो आपके प्रोडक्ट के उपयोग करता है या सर्च करने वाले। तो यहाँ पर लीड जनरेशन की बात अगर करें तो लक्षित ग्राहकों की पहचान करें और उनसे संपर्क करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे समझो आपको कुछ समूह के लिस्ट मिल गए हैं और वो कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अलग अलग माध्यमों से। मार्केटिंग अभियान चलाकर सोशल मीडिया पर रेफरल नेटवर्क शामिल हो सकते हैं और इसके जरिए भी आप अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जब कोई उच्च संभावना वाला लीड मिले तो तुरंत संपर्क करें। एक प्रक्रिया रुचि बनाए रखती है और ग्राहक के प्रश्नों का समाधान अगर आप करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह आता है, सक्रिय रूप से बेचे जो ग्राहक की जरूरतों और समस्याओं का हल करना, ग्राहकों को ये समझाने में या समझने में मदद करे कि आपका उत्पाद आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे आपको हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। एक स्पष्ट योजना बनाए, बिक्री फाइनल को सुव्यवस्थित करे, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाए, डेटा का उपयोग करे, बाजार को समझे। अतिरिक्त रणनीतियों को अगर समझने लगेंगे आप तो बिक्री और मार्केटिंग को रेखांकित करें, अपने कर्मचारियों को ट्रेन करें, प्रोत्साहन योजना बनाएं जिससे चीजें जो है आसान हो, लोग आप तक जल्दी से पहुंच सके। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हां करियर ऑप्शन कार्यक्रम को। आइए यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम लोग किस तरह से एक प्लान बनाए आप अपने ग्राहकों की सुविधा और उन्हें अपने मनचाहा प्रोडक्ट कैसे मिले, है ना? तो आइए इस पर आगे बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की बातें हैं, वो हम लोग आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझा रहे हैं। कंपनी की बाजार उपस्थिति का विस्तार करने के लिए, रणनीतियां विकसित करने के लिए, बाजार अनुसंधान करें, प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें, स्वॉट एनालिसिस करें, ताकत कमजोरी अवसर खतरे का, और इन सभी चीजों का उपयोग करके लक्षित विज्ञापन और उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अच्छा, इन सभी चीजों को करते वक्त बाजार में पेट बाजार विस्तार और विकास और रणनीतियों का गठजोड़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ता है। प्रभावी अगर ये सारी चीजें आपको याद हो या समझ हो तो आप अच्छी तरह से मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हैं, जिसको बाजार में पैट कहा जाता है। मौजूदा उत्पादनों को मौजूदा ग्राहकों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें और नए ग्राहकों को आकर्षित करें। इसके साथ कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन ये भी बहुत बड़ा काम करता है, जिसको आपको ठीक से समझना होता है। लागत नेतृत्व या विभेदीकरण जिसको कह सकते हैं, अपने विशेष शक्तियों के आधार पर आप इन चीजों को ठीक से समझें और जानें। एक और बात

पर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, नए उत्पादों को या फिर मौजूदा उत्पादों के नए प्रयोग या उसमें कुछ एडिशनल करेक्शन करके भी आप चीजों को मार्केट में उतार सकते हैं। इसके लिए जो योजना है, जैसे कि मैंने कहा स्वॉट एनालिसिस, ये भी जरूरी है। बाजार अनुसंधान सबसे ज्यादा जरूरी है। लक्षित बाजार की परिभाषित जो है चीजों को समझना वो भी जरूरी है। आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बिजनेस डेवलपर मैनेजमेंट के साथ जुड़ता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। आशा करूंगा आप सभी को ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली बात जरूर हो रही होगी। मन जो है हमेशा कुछ नई चीजें सुनता है तो उसे टाइम लगता है उसे पकड़ने में, लेकिन जब आप इन चीजों के साथ खेलने लगेंगे, इन सारी चीजों को ठीक से समझने लगेंगे तो काफी अच्छा आपको लगेगा। तो आइए, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बिक्री और विकास टीम का नेतृत्व कैसे करें, क्योंकि जब तक आप सेल एंड प्रोडक्ट इन दोनों के बीच का जो कड़ी है उसको अगर समझेंगे तो चीजें अच्छी तरह से कर पाएंगे। एक दृष्टिकोण निर्धारित करें, टीम की शक्तियां और कमजोरियों को समझें और खुले संचार, सहयोग और निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करने वाली सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाएं। टीम के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए उन्हें बड़ी तस्वीर में उनकी भूमिका को समझाएं, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, रचनात्मक प्रक्रिया दें और उनकी उपलब्धियों को पहचानें। स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करें, टीम के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए सभी को एक साथ लाएं। टीम को सशक्त बनाएं, टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सार्थक कार्य सौंपे और उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार दें। सकारात्मक संस्कृति का निर्माण करें, एक ऐसा वातावरण बनाएं जो सहयोग, खुले संवाद और निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करे। व्यक्तिगत जुड़ाव बनाएं, टीम के सदस्यों के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं और उनकी व्यक्तिगत प्रेरणाओं को समझें, जैसे पुरस्कार, मान्यता और करियर की आकांक्षाओं को देख सकते हैं आप। प्रभावी संचार करें, जैसे कि टीम के सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं और उनकी सफलताओं और चुनौतियों को ठीक से आप देखे और उन्हें उस जगह पे सहयोग दे और उस जगह पे उन्हें सम्मान भी दे। उदाहरण अगर प्रस्तुत करें तो मैं एक के बजाय हम का उपयोग कर सकते हैं और अपनी टीम के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे एज ए मैनेजर, तो हम शब्द का प्रयोग करने से टीम को मजबूती मिलती है। अपनी टीम की उपलब्धियों को पहचाने और उनकी जो है यथासंभव उनका सम्मान रखें। इसके बाद कुछ और दो बातें आती है, जैसे ग्राहक केंद्रित रहे, ग्राहकों की जरूरतों को समझे और उनके साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इससे बिक्री में दीर्घकालिक सफलता मिलती है। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसे परिवर्तन को अपनाएं जो उसका पालन करें और व्यावसायिक परिणामों को बेहतर बनाते चले। तो आशा करूंगा आज हम लोग बिजनेस डेवलपर मैनेजर के बारे में बातें की, इस पोजीशन के बारे में बताया कि जिसमें ये सारी प्रक्रिया जो है आती है। तो इसमें एक भी चीज अगर एक्सपर्टाइज आप करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अच्छा हो सकते हैं और आपका करियर ब्राइट हो सकती है। तो इसमें कमीशन प्लस पेमेंट दोनों मिलते हैं आपको, और जितना आप ज्यादा कर पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए ये करियर का विकल्प है। तो हर चीज में जैसे मेहनत है, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जितना मेहनत आप करेंगे, जितना काम करेंगे उतना ज्यादा आप जो है कमाएंगे। तो अच्छा करें, अच्छा अपना करियर बनाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए करियर ऑप्शन में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए।

0: लाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 01, 02 बोरे की एरर, नए पन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नया पन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना। बात पुरानी बड़ी सुहानी, फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

معلوم ہوتا ہے، کیا قانون نہیں معلوم یہاں کا؟

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंदित रहा।
2: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो। चल, चल, चल।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की जहां हम बात कर रहे हैं, खुद को समझा और किस तरह से खुद को मैनेज करने का प्रोसेस है, जहां रिस्पांसिबिलिटी की बात आई तो सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मेरे ही प्रति थी। आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज में जानते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी के बाद कौन सा एस्पेक्ट है जिंदगी का जिसको देखना जरूरी है जब हम सेल्फ को मैनेज करने की बात करते हैं। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुश्री शिवानी, जिस तरह से रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर हमने बात कर रहे थे, बड़ी अमेजिंग बात यह है, क्लैरिटी ये हुई कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ही प्रति होती है, उसके बाद बाकी सारी जिम्मेदारियां अपने आप आती जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ें और जानें कि अगला पड़ाव क्या होगा।
1: जैसे हमने देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट, तो हम हर चीज अपने से जोड़कर कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले आए स्व के प्रति हमारी जिम्मेवारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, क्योंकि हमने पहले दिन ही देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट में चार एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है, द फोर आर्स दैट वी हैड सेड, सो दैट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेज। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन, कि जीवन में मेरी अपने प्रति जिम्मेवारियां और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य, पर्पज ऑफ माई लाइफ, एंड वो पर्पज को अचीव करने में वैल्यूज ऑफ माई लाइफ। तो वो एक कंपस, क्योंकि एक कंपस नहीं होगा तो जैसे एक दिशाहीन जीवन हो जाता है, बट वंस यू हैव अ कंपस यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग। सो द कंपस इज द कंपस ऑफ माई वैल्यूज। तो जीवन में चलते चलते अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है मन में, कई बार डिसीशंस लेने में कॉन्फ्लिक्ट होता कि ऐसा करें या ऐसा करें, तो जब डायरेक्शन नहीं पता चल रहा तो अपना कंपस निकालना है। कंपस निकालें और कंपस पर ही डिपेंड करें कि कंपस विल शो मी द राइट डायरेक्शन, लेकिन वो कंपस पहले तैयार होना चाहिए, एंड दैट कंपस इज द कंपस ऑफ माई वैल्यूज। तो अपनी वैल्यूज पर अगर चलकर डिसीशन लेंगे तो हम जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे लिए एटलीस्ट हित में होगा, और जहां मेरे हित में होगा ऑटोमेटिकली उसमें सारा कल्याण ही समाया होगा। एंड इट समटाइम्स सीम्स कि जब हम वैल्यूज पर चलते तो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं, इनफैक्ट कुछ न कुछ लगता कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपस विल ऑलवेज शो मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट।

0: कि लॉन्ग टर्म ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम सेल्फ को नहीं पहचानते तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर आता है, बिकॉज वी सो कि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं है तो अंदर से तो हम बहुत सारे जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, यू नो हु एम आई, मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑल द लेबल्स जो हमने देखे थे, तो हमें यही नहीं पता चलता कि आखिर मैं कौन हूँ। और अपने को न जानने के कारण सारा दिन में हम कोई ना कोई एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी में रहते हैं, क्योंकि वन ऑफ द आईज जो अंदर है, वन ऑफ द लेबल्स इज अंडर थ्रेट, यू नो, तो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी हमेशा अंदर एक बनी सी रहती है एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे रिलेशनशिप्स पर आता है।
1: आई थिंक वेरी ट्रू, यू नो, जब हम ये कई सारी चीजों में होते हैं, हमें कई बार ये भी हो रहा होता है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूं, किस लेवल को प्रायोरिटी दूं, मैं ये देखूं मैं ये बनूं या मैं ये बनूं। इन फैक्ट देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन एवरी टाइम गोइंग इनसाइड,
0: सो देन देयर इज एंग्जायटी और देयर इज फियर और देयर इज इनसिक्योरिटी एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट विल कम ऑन माई कनेक्शंस एंड माई रिलेशनशिप्स। All my relationships, if I just, you know, rewind and see all my relationships today, तो अगर हमारे संबंधों में कहीं भी disconnection आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आज अगर हम देखें कि हमारे सभी जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कहें एक connectivity, you know, एक closeness होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिखरते जा रही है, क्योंकि हमने अपने relationships में machines, गैजेट्स और इन सब को रिप्लेस कर दिया है और ज्यादातर हमारा रिलेशनशिप अब इनके आधार पर बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड कितना, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ उतना अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वी रादर प्रेफर टू कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, रादर देन कॉलिंग यू अप एंड सेइंग सॉरी, आई वुड रादर जस्ट सेंड एन SMS, इट इज सो इजी, आई डू नॉट हैव टू कॉल अप एंड से सॉरी, but the process of actually meeting you and saying sorry would have been what would have got me to do the inner work. Lekin wo phone uthaya, ek SMS banaya sorry aur bhej diya.
1: Acha, ek aur jo problem hai relationships mein dekhte hain, zyada tar log hum face kar rahe hain, sab kuch theek chal raha hota hai lekin wo zyada der tak theek nahi chalta hai, wo 10 minute ek ghanta theek rahenge hum, koi na koi baat, मतलब ज्यादातर हर रिश्ते में, चाहे वो माँ बेटे के रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई ना कोई बात ऐसी खटकेगी जरूर, जो आप अगर ओपनली नहीं भी बात करेंगे, इंटरनली आप उसको जरूर लेंगे।
0: तो इंटरनली वही हम देखेंगे आज, इंटरनली ही ज्यादा वो चल रहा है। वो बात ज्यादा दूसरे की नहीं है जो मुझे खटकती है, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस है और आप जो कहते हैं वो उस डिस्टर्बेंस को ट्रिगर करता है। See, again, we will have to understand it's less about the other person and it's more about me.
1: But in relationships, though, actually, we are always thinking it's about the other person.
0: No, but then that's what we saw the whole series, even in situations. Humne socha it's always about the situation. The situation is also, a relationship is also a situation. Situation matlab vyakti bhi to na. To agar main kahun aapki wajah se like this, but then it's not aapki wajah se. इट्स मेरी अपनी स्थिति क्या है। तो इसलिए व्हेन वी आर एग्जामिनिंग रिलेशनशिप्स आल्सो, इट्स लेस अबाउट अदर पीपल एंड इट्स मोर अबाउट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इनसाइड। सो टुडे बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टिंग वेरी इजिली विद यू, आई कनेक्ट टू यू थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, थ्रू SMS एंड यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ, नॉट दैट इट्स नॉट गुड, नॉट दैट यू नो हमें ये गैजेट्स नहीं यूज करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी के अंदर ही एक उससे हम वैसे ही थोड़ा सा कट रहे थे एक दूसरे से और उनकी वजह से हम इतना ज्यादा उनमें ही, यू नो, लाइक आज एक दूसरे से बात करने की बजाय वी रादर चैट ऑन द, यू नो, यहां तक कि हम एक स्ट्रेंजर से ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। आजकल के यूथ, दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम जस्ट चैटिंग एंड दे डोंट इवन नो हु दे आर चैटिंग विद, बट कमिंग एंड टॉकिंग टू देयर ओन पेरेंट्स सीम्स टू बी अ चैलेंज। So somewhere I have to say कि this is a reflection of my personality. ये कहीं ना कहीं मेरा एक issue है कि मैं अपने parents से या अपने जो close हैं उनसे मैं बात नहीं कर पा रही जाके, but I'd rather sit online and chat with a stranger. What does this say about me? It's not saying about them. बट फिर हम जनरली कहेंगे उनके साथ ये, वो ऐसे हैं एंड कम्प्लीटली पुट द ब्लेम ऑन everyone else.
1: In fact, I know somebody, he says कि मैं इतना थक जाना चाहता हूँ घर जाते जाते तक कि मैं जाके सो जाऊं, मुझे किसी को फेस ही ना करना पड़े, एंड दिस इज लाइक

0: अवॉइडिंग ना, हम अवॉइड कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को. बहुत सारे बच्चे भी आज यही कहते हैं कि वी रादर रीच होम जबकि हमारे पेरेंट्स सो चुके हैं, ताकि ना वो कांटेक्ट हो तो ना वो आर्ग्यूमेंट हो, ना मुझे उसको फेस करना पड़े, ना वो मुझे कुछ कहे, ना मुझे सुनना पड़े. तो ये क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं. देन रिलेशनशिप्स विद अदर्स, देन रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, इसमें भी तो कहीं उतनी हीलिंग नहीं है. आई डोंट नो, आज अगर हम किसी से कहें रिलेशनशिप विद सेल्फ तो they will just look, अपने आप से कौन सा रिश्ता होता है? रिश्ता तो दूसरों से निभाया जाता है. अपने आप से रिश्ता इज समथिंग दैट वी हैड नॉट इवन थॉट ऑफ. के आई वॉज जस्ट टॉकिंग इन अ प्रोग्राम एंड आई सेड वॉट अबाउट स्पेंडिंग सम टाइम टॉकिंग टू योर सेल्फ. के सारा दिन में इतने लोगों को पूछते हो क्या हाल है क्या हाल है, एक मिनट रुक के अपने आप से भी तो पूछ सकते हैं क्या हाल है. एंड देयर वर पीपल एंड दे सेड अपने आप से कैसे पूछा जाता है, मतलब द कॉन्सेप्ट वॉज सो एलियन. लाइक ये औरों को पूछना तो बहुत ईजी है क्या हाल है, ये अपने आप को कौन पूछता है? तो वो ज्यादा उनको लगा था कि ये कई मतलब पता नहीं कोई अजीब सी बात है.
1: मैं समरी एंड ही सेज कि मुझे तो ये रिलेशनशिप वर्क ऑन योर रिलेशनशिप शब्द से ही इतनी चिड़ हो चुकी है, क्योंकि हर जगह यही बात किया जाता है. एंड हाउ टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, इफ रिलेशनशिप आर देयर तो आर देयर, उन पर वर्क क्या करना है? लाइक पीपल आर बिकमिंग सो वेरी ऑफ इट कि हमें नहीं जानना उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो मिलना चाहिए था वो खत्म होता जा रहा है. शायद
0: किससे मिलना चाहिए
1: था? जो रिलेशनशिप्स में हम ढूंढ रहे थे.
0: हाँ, तो फिर अगर हम गलत जगह पर ढूंढेंगे तो और वहां नहीं मिलेगा तो ये गलती किसकी है? अगेन लाइक यू सेड, रिलेशनशिप्स में जो मिलना चाहिए था, रिलेशनशिप्स में मिलना नहीं है कुछ भी.
1: या दिस इज यू नो लाइक
0: इट इज लाइक दिस, we are taking relationships only for receiving. ki mujhe ye chahiye, mujhe ye chahiye, aur fir jahan jahan dhoond rahe hain, it's like a hide and seek game going on.
1: fir bahut logon ka ye bhi kehna hota hai ki agar relationship mein kuch milna hi nahi hai to fir relationship ki zarurat kya hai?
0: Exactly, so important question ki agar relationship mein main itna effort kyu karu, fir itna inke sath bhi adjust karu, ye bhi karu, tolerate bhi karu, agar inse kuch milna hi nahi hai mujhe to main itna sab kyu karu? So what is the other option? कि मैं अकेले रहूं and I do not come into contact with people.
1: नहीं फिर मैं और लोगों को ढूंढता, अकेले तो मैं रह नहीं सकता.
0: वो और लोग भी तो वैसे ही वाले होंगे आपके. So here the important realization is कि relationships हमारे लिए बहुत बहुत बहुत matter करते हैं. क्यों matter करते हैं? Relationships में हमें मिलना नहीं है कुछ भी, उस एंगल से नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि एक रिलेशनशिप में ही मेरे पास जो है एनर्जी, चाहे वो प्यार की है, शांति की है, खुशी की है, वो एनर्जी मैं क्रिएट करता हूं, और जब मैं आपकी तरफ उसको ट्रांसमिट करती हूं तब वो पहले मुझे मिलता है.
1: तो मैं महसूस करता हूं.
0: I feel it first.
1: You know, अच्छा, realization of my own inner value is through relationship.
0: Yes.
1: Oh yes.
0: So the experience, because everyone wants to experience peace, love and happiness. Ye teen cheeze to I want to experience. Now I'm trying to look for them there. If mujhe khushi chahiye, I want to experience, then I'm not getting. Parmatma ne aakar sirf formula change kiya. It's not ask mujhe experience karna hai, it is give. And while you're giving, it will flow through you. And the first person to get it
1: is me.
0: अगर मैं रिलेशनशिप्स में नहीं हूं, इफ आई एम नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, कई बार ऐसा होता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अकेले बैठ जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जीवन कैसी हो जाएगी? क्योंकि जब तक मैं इंटरेक्शन में नहीं आती तो मुझे मौका नहीं मिलता वो एनर्जी क्रिएट करने का, वो एनर्जी एक्सप्रेस करने का, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एनर्जी एक्सपीरियंस करने का.
1: तो इसीलिए हम जो अब रिलेशनशिप से थके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो सारी नेगेटिविटी कर रहे हैं.
0: तो वो सबसे पहले किसको मिल रही है?
1: मुझे ही मिल रही है. तो एक तो नेगेटिविटी ऑलरेडी है, दूसरा जैसे ही मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ वही नेगेटिविटी और क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम में से हर कोई अब ये चाह रहा है कि बस हम रिश्तों में और नहीं घुसना चाहते, नहीं फंसना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोझ लगने लग गए.
0: वो बोझ इसलिए लगने लग गया क्योंकि हम रॉन्ग एंगल से फॉर्मूला को यूज कर रहे थे. अच्छे से अच्छी चीज भी रॉन्ग डायरेक्शन से अगर यूज करनी जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो जो जनरल स्टेटमेंट अब है वो ये, रिलेशनशिप्स जस्ट डोंट वर्क, दे डोंट वर्क. अब व्हेन वी आर सेइंग रिलेशनशिप्स

0: don't work, hum kya kehne ki koshish kar rahe hain? Yeah, I'm not
1: anything.
0: Getting.
1: They don't give anything.
0: Yes. They don't give anything.
2: No, but people are open about it. I don't get anything from my relationship. There's nothing in that relationship.
0: So, aaj se hume sirf us formula ko dusri tarah se use karna hai ki relationships was never forgetting. It was never for the purpose of getting.
1: But ye belief system jo hai, ye change hone mein bahut strong belief system jo hamara hai, because all our words, you know, agar hum dekhe statements, khas kar relationship mein to, hum yehi mante aa rahe hain ki is rishte mein main isliye hoon, kyunki mujhe bahut kuch mil raha hai.
0: Wo lekin jo mil raha hota hai, wo bhi kaise mil raha hota hai? If I can say ki when I am with you, I feel very good. Mm. You know, I will say that for certain people. Ki when I am with you, I feel very nice. It's less about the other person. It's because I feel very nice while I am with you. So if I am feeling very nice while I am with you, iska matlab jab main aapke saath hoon, so I'm creating the right kind of energy. Mm. And this right kind of energy, whether it's love or purity or whatever, this makes me feel good. But मुझे ये एहसास नहीं आ रहा कि ये एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ. मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ बैठने से ये एनर्जी मुझे आ रही है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज आपके साथ बैठने से ये एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ.
2: लेकिन मैं बाकियों के साथ क्यों नहीं फिक्र
0: तो कर सकती हूँ ना, जिस दिन ये रियलाइज होगा कि मैं कर रही हूँ.
2: मतलब मैं आपके साथ बैठते हुए जैसा फील कर रही हूँ, मैं हर एक के साथ कर सकती हूँ.
0: दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ आई परसीव देम. It's just that मैंने यहाँ पर एक लेबल बना दिया. कनुप्रिया इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो वो मेरा लेबल फिट है. अब कईयों के लिए मैंने लेबल फिट कर दिया कि
2: बहुत बुरा है.
0: क्या तो उनके साथ बैठकर आई डोंट क्रिएट द राइट एनर्जी. क्रिएशन सारी यहाँ हो रही है डिपेंडिंग ऑन हाउ आई फील यू. एंड देन आई से बट देन वॉट हैपन्स इज बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इट देयर, तो मैं आपके ऊपर क्लिंग ऑन कर देती हूँ कि वेन कैन आई मीट यू, वेन कैन आई टॉक टू यू. क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे बात करती हूँ या आपके साथ बैठती हूँ, आई फील गुड. तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी क्या बन गई कि मुझे आपकी जरूरत है टू फील गुड. एंड दैट्स वेयर द होल थिंग विल स्टार्ट कोलैप्सिंग.
2: बट वेन दैट पर्सन इज नॉट देयर, वी रियली डोंट फील गुड.
0: या सो वाई? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दैट थॉट ना. जब मैंने एक थॉट क्रिएट कर दिया, दिस इज लाइक एनी अदर एडिक्शन. ये कोई भी एक एडिक्शन की तरह है. कॉफी पियेंगे, आई विल फील गुड. चाय पीते हैं, आई फील गुड. नहीं पी, मुझे डिस्टर्बेंस होता है. चाय एंड कॉफी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. इट्स माई एडिक्शन टू दैट पर्टिक्युलर स्टिमुलेंट. सिमिलरली इट्स माई एडिक्शन और अटैचमेंट्स टू पर्टिक्युलर पीपल. So I am just being able to create that energy while I'm with you. But if I understand that main create kar rahi hu, samne wala nahi de raha hai. Main create kar rahi hu, wo create karke main transmit kar rahi hu, lekin transmit karte samay pehle kisko mil raha hai? Mujhe mil raha hai. And I feel very good and I say, yes, this is the person. I need this person. लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब मुझे ये realization नहीं रहती कि ये creation मेरी है, तो मेरी वो जो power to create है उसकी awareness नहीं होने के कारण, I again start feeling that it is coming from here. And again now I start expecting from there. And फिर अभी suppose I'm not feeling, suppose I'm in pain, and I go into my series of negative thoughts and all, and I come to you. Or you say something which I don't like or fits in my, and then I start saying, अब तो मुझसे आपसे वो वाला प्यार नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था.
2: And then I feel that I don't get the love.
0: Yeah. And then I start saying, you have changed. And I'm not getting that anymore with you. पहले आप जो मुझे रिस्पेक्ट देते थे, पहले आप जो मुझे प्यार देते थे, पहले आपसे मिलकर जो मुझे खुशी मिलती थी,
2: it's
0: not coming. What I am not realizing is, right now I am going through a low phase. वो नहीं बदले हैं, वो वैसे ही हैं. I am going through a
2: low phase. पहले भी तो वो कुछ नहीं कर रहे थे.
0: Exactly.
2: Okay.
0: And जैसे अभी वो कर रहे हैं, we are not saying कि जो सामने वाला है, that person is always constant. He and she is going to go through their ups and downs and lows and highs. लेकिन the question is, who is creating the energy? I am creating the energy. तो अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन हम इस अवेयरनेस के साथ चले कि रिलेशनशिप्स के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ऐसे नहीं पहले ऐसे है, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑटोमेटिकली कि व्हाट आई एम गिविंग यू पहले मुझे मिलेगा. एंड देन व्हाट

0: ठीक ठीक, तो फिर वो क्या हो गया? आज किसी से हम पूछे वो
1: ठीक ठीक, और उसके लिए मैं करती थी सी कर्म तो कर रही थी। अगर अगेन ये नहीं मुझे पता था कि कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जैसे ही जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, जो भी है, चाहे मेरा बेबी बच्चा है या कोई भी है, उनके होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत सारी चीजें कर्म करूंगी उनके लिए।
0: वो तो आउटसाइड हो गया।
1: हाँ, पर मेरे लिए तो वही इम्पोर्टेंट था, तो वो मैं कर्म करती रही, और उसके बाद अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वो कर्म करने के बाद, तब मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और फिर आप मेरे लिए नहीं कर।
0: सो दैट विल बिकम एक्सपेक्टेशंस कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने इन रिटर्न क्या किया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एटलीस्ट इन टूडेज टाइम, अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से मेंटेन करके चलना चाहते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंट हम खुश रहना चाहते हैं, तो कितने लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए? हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक?
1: आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो अब और नो वन, मैक्सिमम लोग ये बोलते भी हैं कि हमारे जीरो एक्सपेक्टेशंस,
0: जीरो एक्सपेक्टेशन, वो बोलते हैं
1: हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उससे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते।
0: दैट्स नॉट इन द नेगेटिव सेंस कि उससे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट लाइक दैट, बट नो एक्सपेक्टेशंस मीन्स कि यू गिव फॉर द फीलिंग ऑफ योर गेटिंग इट वाइल इट्स गोइंग। अब वहां से आता है या नहीं, डोंट थिंक अबाउट इट। हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देने में मुझे अच्छा लगता है। लेट्स पुट दैट एज आर बेंचमार्क कि आपको जो कुछ देने में अच्छा लगता है, अगर उसको
1: हम फिजिकल रूप पर दें, हमें जो चाहिए वो हम देना शुरू कर दें, तो वो हमें ही तो मिलेगा।
0: एब्सोल्युटली, परमात्मा हमेशा कहते हमें कि तुम्हें जो चाहिए ना पहले तुम दो। सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, रिस्पेक्ट दो, बिकॉज यू विल फर्स्ट बी गिविंग इट टू योर सेल्फ। हाउ डू वी वर्क विद जीरो एक्सपेक्टेशंस? इट्स अगर फिजिकल रूप से देखें, हम किसी को एक गिफ्ट देते हैं। अभी आज क्या होता, मैंने आपको ये गिफ्ट दिया, आपने मुझे क्या दिया? या मैंने जो आपको गिफ्ट दिया वो तो 2000 का था, आपने मुझे जो गिफ्ट दिया वो वाई डिड वी गिव, वर वी गिविंग for the with the intention that now in return if I have given a gift of 2000 I should get a gift of 3000 in return? No, same jo ye gift ka flow hai, agar aapko gift dena hai aap dijiye, jitne ka dena hai utne ka dijiye, jitna dene se aapko comfortable lagta hai utna dijiye, without expecting ki you are to get a gift in return. Agar wo dene mein it makes you feel good, and that is the gift of energy. Ye gift to theek hai, easy hai.
1: No, I can make it out, you know, aajkal birthdays mein there's a return gift thing.
0: Wo to theek hai na, that I took an example because physical karne se it becomes easier to understand.
1: Ki bachcha pehle jahan pe bhi apne kisi bhi friend ke paas ja raha, no, it has changed, suddenly I can make it out, you know, uske mann mein pehle hi hota hai ki return gift kya hoga, you know, somewhere wo jo expectation hai, jo ek choti si cheez bhi कहीं न कहीं हमने पूरे थॉट प्रोसेस में किया हुआ है।
0: सो वी नीड टू गिव। अब जो आप संबंधों में कल चले, उतना दें जितना देते हुए इट्स योर कैपेसिटी। यू नो, आज हम क्या कहते हैं, मैंने इतना किया जितना मैं कर सकती थी, उससे भी कई गुना ज्यादा किया। क्यों किया? अगर आपसे नहीं हो रहा आप मत करो, लेकिन इसलिए नहीं करो क्योंकि सामने वाले ने भी मुझे उतना देना है। We need to start working in our relationships with the process of giving. Utna dena hai jitna I can give in terms of energy. Aapke paas jitni khushi hai, jitna pyar hai, jitni shanti hai, aap usko dete jaye. Jitna denge utna aapke andar
1: wahi to mujhe it's the other way around. In fact, ab mujhe jitna chahiye main utna dena shuru karu.
0: Absolutely, you know, not with the expectation ki aap mujhe in return kya denge.
1: Nahi, main ye maan ke hi chalu na fir ki jitna main de rahi hu wo mera sara mujhse hi ja raha hai.
0: Absolutely, main ye samajh kar chalu ki jab main de rahi hu tabhi mujhe
1: mil raha hai. Ha,
0: ab mujhe kab milega, किससे मिलेगा? नहीं, मिलने वाला पार्ट हो गया देते टाइम। दिस इज लाइक अ गिफ्ट के जब हम वो दे रहे हैं, वो गिफ्ट पहले मुझे मिल रहा है, फुल स्टॉप, मिल गया।
1: आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव गिवन इट,
0: एंड बाय गिविंग इट इट इंक्रीजेस इन मी। जितना हम खुशी से, हमने पहले भी देखा वही कर्म है, शोर मचा के भी हो सकता है, शांति से भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है, जितना उसको प्यार से शांति से करेंगे वो शांति की शक्ति हमारे अंदर
1: और
0: बढ़ती जाएगी। तो वो वहां से नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरे अंदर क्रिएट करने से वो अपने आप बढ़ती जाएगी। सो रिलेशनशिप्स मीन्स गिविंग

0: giving. Mm. Receiving अपने आप हो रहा है.
1: रिसीविंग पहले इनफैक्ट अगर हम ये थॉट प्रोसेस लें, अगर हम करके देखें, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट आउट.
0: इट्स जस्ट लाइक दैट. वंस आई जस्ट, बिकॉज एनर्जी फ्लो तो ऐसे ही कर रही है. अब क्या हो रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, दिस इज अ नेगेटिव थॉट, इट्स अ पेनफुल थॉट. अब मैं आपको मुझे चाहिए के एंगल से जब रिश्ते में आती हूँ तो मैं आपको कौन सी एनर्जी दे रही हूँ,
1: नेगेटिव.
0: नेगेटिव तो मतलब मुझे क्या मिला,
1: कि ये मुझे देंगे कि नहीं देंगे,
0: तो
1: मुझे मुझसे कैसे बात करेंगे, मुझसे कैसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे,
0: तो मुझे क्या मिला,
1: पूरा नेगेटिविटी.
0: तो मैंने सोचा किसने दिया मुझे,
1: उन्होंने दिया. ओ यस, इज अ फॉर्मूला विच वी नीड्स टू वर्क ऑन. वेरी गुड शिवानी, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आज जो रिश्तों को देखने का एक नया अंदाज हमारे सामने है कि कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है, और हर बार की तरह एक्सपेरिमेंट की तर्क की कसौटी पे अगर हम देखते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं, तो इट रियली वर्क्स, यू नो, एनर्जी का फ्लो अगर हम देखें. लेकिन यही है कि अपने अनुभव को, अपने अनुभव से बड़ी और कोई कसौटी नहीं हो सकती.
0: We'll explore this more
1: now. इसको हम अपने आने वाली कड़ियों में जरूर करेंगे. आज की इस बातचीत के लिए थैंक यू सो मच. शांति, देखना यही है कि क्या हमें चाहिए. अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें प्यार चाहिए, खासकर रिश्तों में तो हम प्यार तलाश रहे होते हैं, कई बार खुशी तलाश रहे होते हैं, कई बार शांति तलाश रहे होते हैं. ये फॉर्मूला आप अपना के देखें कि मुझे चाहिए. सपोज अगर अपने आप से हम बात करें और कहें कि इस रिश्ते में मुझे प्यार चाहिए, तो उतना ही प्यार देने की कोशिश करें, देना शुरू कर दें. ये अनुभव एक दिन के लिए करके देखें तो क्या मैं प्यार का अनुभव कर रही हूं विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वो मुझे देंगे, या ये कहें कि उनसे ही प्यार मुझे मिलेगा. मैं जब प्यार अपने आप को देना, उनको देना शुरू करती हूँ, किसी को भी देती हूँ, वो मुझसे होकर गुजर रहा है. ये थॉट अगर हम अपने साथ रखें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर अपने अनुभव को आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करें. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी साहब का अपना प्रोग्राम है. हर रोज हमारे साथ कुछ नया हो रहा है, कुछ नया घट रहा है. नए अंदाज से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा था, अब रिश्तों को देख रहे हैं. इन्हें एक्सप्लोर जरूर करें. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, कोई अनुभव है आपका, हमारे साथ शेयर करें, या तो फोन पर संपर्क करें, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं.
2: हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0987-3-666-0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org.
1: अब इतनी ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि जो भी बात हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं, वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर. तो जरूर इन सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, ताकि वो खुशी, वो पीस, वो शांति, वो प्रेम जिसकी मैं अधिकारी हूँ, हम सब अधिकारी हैं, हम अनुभव कर पाए. आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी. लेते हैं आपसे विदा. ओम शांति.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शांति अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ और एक बार फिर जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीख रहे हैं, जिसे हम लाइफ स्किल्स कह रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में बहुत कुछ नया सीखा अपने बारे में और देखा कि किस तरह से माइंड पावर, थॉट पावर जो है वो ना सिर्फ मेरे रिश्तों को, मेरे पूरे जीवन को, बल्कि मेरे बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं किए हैं हमने, जो हमारे बैकलॉग में चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें। और बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बहुत सारी बातें तो आपने हमें हमारी बॉडी के बारे में अवेयर करके बताई, ये भी बताया कि एक एक थॉट, एक एक फीलिंग कैसे विजुअलाइज करके हम उसको हील कर सकते हैं। बात करते हैं उन मुद्दों की जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने पहले भी इसी श्रृंखला में बात की थी कि वो नहीं छूटती हैं, वो जो एक दर्द है, एक गुस्सा है, एक हर्ट है, मतलब वो थॉट आते ही, वो घटना सामने आते ही, वो सब कुछ सामने आता है और बहुत मुश्किल होता है पास्ट से निकल पाना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कम आउट?
1: सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इफेक्ट कितनी पावरफुल हो रही है बॉडी पर। आज कई बार कोई इस प्रकार के इमोशंस हो, इमीडिएट हार्ट अटैक आ सकता है। हैंड सेल की जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत काम किया है, उनका कहना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनका कारण है कि वह किसी को माफ नहीं कर पाते और वह जो फीलिंग है उसके कारण उनको इस प्रकार की बीमारी भी हुई। तो जब जब भी वह फाइल खुलती है तो सारी नेगेटिव इफेक्ट, न केवल मन पर, आपने जो कहा मन पर तो इफेक्ट हो ही रही है कि बॉडी पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। यह भी एक पावरफुल रीजन है कि इन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जितना उससे ऊपर उठेंगे तब ही आप पूरे स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकेंगे।
0: तो क्या करें, मतलब हर बार यही आ जाता है सवाल कि क्या करें, ये रिजॉल्व करें और कैसे करें, उस पर आते हैं। पहले ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक समवेयर वी नीड टू नो कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, मुझे धोखा दिया था, चीट किया था, बिजनेस में किया था, रिश्ते में किया था, वो मुझे याद आता है और मुझे सारा गुस्सा फिर आता है, लेकिन आता है, उसके थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद चला जाता है क्योंकि बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मेरी बॉडी पर उसका असर क्या पड़ रहा है?
1: तब यही जो टॉक्सिक इमोशंस का हमने समझा था वो सारी इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर से सिंपैथेटिक अराउजल होगा, बॉडी पर उसकी इफेक्ट होगी, एंडोक्राइन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, दैट विल अफेक्ट यू। आपकी जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बिड सप्रेस्ड होगी तो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होगा, वो ब्रेन के 900 केमिकल्स विल गेट डिस्टर्ब, दैट ऑल्सो विल हैव अ इफेक्ट।
0: जैसे शिवानी, विल इट इंस्पायर मी मोर कि जब मुझे पता चले कि ये सब कुछ हो रहा है कि मैं रिजॉल्व करूं?
2: या आई वाज जस्ट थिंकिंग, आजकल बहुत अवेयरनेस है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की, कि बहुत सारे कुछ एक महीने या कुछ एक साल से हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसे लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जम चुके हैं, तो हम एक अलग डाइट को लेते हैं, कुछ दिन अलग निकालते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। व्हाट अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन हियर? इतनी टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट की हुई हैं इतने सालों से, कई बार तो जैसे बचपन से हमने पकड़ी हुई हैं वो बातें, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे अगर, तो व्हाट मिरेकल्स इट कुड क्रिएट। क्योंकि जब भी कोई अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इमीडिएटली फील करता है कि मैं रिजुविनेट हो गया, इट्स लाइक अ न्यू बॉडी ऑल टुगेदर
0: हो जाता है। बिल्कुल,
2: क्योंकि इट्स लाइक पॉइजन, इट्स लाइक ये सारा जो गंध था वो मेरे शरीर से निकल गया। अब इसी तरह जो सारा गंध मैंने यहां पकड़ कर रखा हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लीन कर दूं तो हमें हम कितना हल्का महसूस करेंगे यहाँ, आई विल फील लाइट, और जितना पकड़ कर रखा है आई फील वेरी हैवी। तो लेट्स स्टार्ट डिटॉक्सिफाइंग द माइंड, डिटॉक्सिफाइंग द सोल।
1: दिस इज नो मोर नेसेसरी, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो तो

0: मृत्यु के बाद चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जो टॉक्सिन्स आपने भर के रखे हो दूसरे जन्मों में भी आप कैरी ऑन कर रहे हैं,
1: फिर हम वो कहेंगे कि पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है ये सब कुछ, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग।
0: हाँ, और दिस कैन बी अ पावरफुल मोटिवेशन। अभी भी कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट था, वो करीब 25 साल का लड़का होगा, फादर के प्रति उसको बड़ी हेट्रेड थी, क्योंकि फादर ने बचपन में उसको बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे, लोअर मिडिल क्लास एरिया था कि भाई गलत संगत में आ जाएगा, और उसके कारण उसमें डर निर्माण हो गया। वो अभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लोगों को मिल नहीं पाता है, तो बड़ा हेट्रेड था फादर के प्रति। एक दो सेशन के बाद मैंने उसको कहा कि तुमने किया उससे ऊपर, कहते नहीं नहीं हो सकता है। फिर एक दिन बोलता है डॉक्टर साहब करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि मैं सफर कर रहा हूं। फिर और एक सेशन में मैंने कहा देखो अभी आपने नहीं किया ना तो अगले जन्म में भी तुम इसको ले जाओगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हाँ हाँ नाउ आई एम फ्री, मुझे इससे मोटिवेशन मिल गया कि अगर अभी मैं फ्री नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी इस हेट्रेड को, इस रिवेंज को मैं ले जाऊंगा, तो मैंने उसको पूरा छोड़ दिया।
1: तो वंडरफुल थिंग, रिवेंज और हेट्रेड उससे निकलने के लिए हम लोगों को छोड़ते हैं, व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, जिंदगी मतलब किधर किधर किधर घूमते हैं। सी, हम लोगों को छोड़ सकते हैं। सपोज मेरा आपके साथ चीट आपने मुझे किया, मैंने आपको छोड़ दिया, चलो लेट मी से कि देयर इज नो अदर सोल्यूशन, मुझे आपसे अलग होना है, मैंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन क्या नफरत को छोड़ दिया? उस नफरत को तो फिर भी पकड़ के रखा ना, तो आपसे विड्रॉ हो गई। इट वॉज नॉट अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल, इट वॉज अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द इमोशन, बट वी विड्रॉ फ्रॉम पीपल, होल्ड ऑन टू द इमोशन, सो द डैमेज इज मल्टीफोल्ड, कि मैं बार बार बार बार वही चिंतन कर रही हूँ। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो शरीर का बेनिफिट है, लेकिन माइंड अगर टॉक्सिक है तो वो माइंड तो हर काम कर रहा है ना, हर रिश्ते में जा रहा है, हर प्रोफेशन में, मेरे हर फील्ड में वो टॉक्सिक माइंड वर्क कर रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन का हर क्षेत्र है अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द माइंड इज डूइंग एवरीथिंग,
2: एक्चुअली हर चीज में रिजेंटमेंट, डिप्रेस ना करना,
1: सो इट्स नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट द माइंड। देखो सपोज माय बॉडी इज टॉक्सिक, चलो मेरा शरीर ठीक नहीं चलेगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मेरे रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि मैं बॉडी डजंट डू एनीथिंग इनटू द रिलेशनशिप्स, मैं अपने करियर में तो फिर भी थोड़ा ठीक चल लूंगा, बट माय माइंड इज एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, हर स्फीयर पे मन है, इस पे टॉक्सिन्स अगर है मीन्स देयर इज गोइंग टू बी डैमेज एवरीवेयर, फिर मैं हरेक से नाराज होता रहूंगा, घर में लोगों से, प्रोफेशन में अपने कोलीग से, हरेक से नाराज होता रहूंगा विदाउट रियलाइजिंग कि जहर तो यहाँ भरा हुआ है।
2: मतलब वो एक जहर की जो एक वो नहीं कैरी करते थे पुराने जमाने में कि अंगूठी में डाल के रखते थे, सी आई थिंक हर बार एक ड्रॉप उसका वो डाल देते हैं। तो सब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की सतीश वाणी ने, कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी तो टेक्निक्स हम समझ गए, ऐसी डाइट, अब इसको करें कैसे? नहीं होते रिजॉल्व, कितनी कोशिश करते हैं, इट जस्ट यू नो इट्स लाइक आई एम नॉट से इट कम्स, बट आई क्रिएट, कंटिन्यू टू क्रिएट, इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू,
0: Yeah.
2: It just comes.
1: It's because we don't want to forgive. Forgiving is not difficult. Forgiving is
2: we don't want to forgive.
1: अब मैं क्यों नहीं फॉरगिव करना चाहती? क्योंकि गलती उनकी इतनी बड़ी थी, दर्द मुझे इतना हुआ था, तो क्यों मैं फॉरगिव करूं? अगर मैं फॉरगिव करती हूं तो फिर वो और वो ही करेंगे, यू नो कितना ज्यादा
2: हम जस्टिफाई हो जाएंगे फिर।
1: अगर मैं ही बार बार माफ करती रहूं तो वो तो फिर से, चलो कुछ होती हैं जीवन की बड़ी बातें जिसमें यू नो विच कैन बी लाइफ चेंजिंग, लेकिन छोटी छोटी बातों में ले लेते हैं, सारा दिन बातें हो रही हैं जो हम कहते हैं मैं अगर हर बार इसको बात को हल्का कर दूं, माफ कर दूं, तो ये तो हर बार करते जाएंगे, तो औरों को सुधारने के लिए अपना नुकसान, एंड फिर वो इतना संस्कार पक्का होता जाता है, इट बिकम्स माय नेचर टू होल्ड थिंग्स अगेंस्ट पीपल, नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव बिकॉज आई से उनकी गलती इतनी बड़ी थी। बहुत सारे भाई बहने हमें मिलते हैं हु आर कैरिंग बर्डेंड पास्ट, हुआ है जीवन में, इट कुड बी एनीथिंग। कुछ समय पहले एक बहन से मिलना हुआ जो ये टेलीविजन का प्रोग्राम काफी समय से देख रहे हैं, और उन्होंने आकर अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक दिन अपने किसी दोस्त के घर भेजा जो अकेला था, वो अबाउट 50 ईयर ओल्ड पर्सन था जिसकी फैमिली किसी और सिटी में गई थी, तो पेरेंट्स ने कहा वो अंकल अकेले हैं, आप आज उनके घर चले जाओ। And that person, and this girl was 11 years old. That 50-year-old man physically abused this 11-year-old girl. Today, that lady is 40 plus.
2: Later,

0: 11-year-old girl, today she's 40+. लेकिन ये 30 साल से ऊपर की जर्नी में उसने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पकड़ के रखी है. She openly says, I hate my parents. I thought she'll say, I hate that person, जिसने ये किया. She said, उससे मुझे कोई इतना लेना देना नहीं. गलती किसकी थी इसमें?
1: मेरे पेरेंट्स
0: की जिम्मेवारी थी मेरा ध्यान रखना. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां भेजा, तो पूरी गलती मेरे पेरेंट्स की. शी कैरीड दैट रिजेंटमेंट इन हर फॉर मोर देन 30 ईयर्स नाउ. रिजल्ट, आज वो एडिक्शंस में है और वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल के आ रही. कितनी इतनी नफरत मेरे अंदर भरी है कि जब तक मैं ये नहीं लेती आई डोंट फील गुड एट ऑल. नहीं तो वो माइंड में मेरे वही थॉट्स चलती रहती है. मैरिज हुई, बेटी है, लेकिन डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी. करियर वाइज कुछ भी नहीं कर पा रही. फिजिकली भी कुछ एक एलिमेंट्स लगी हुई है. पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ओनली बिकॉज 30 ईयर्स से ऊपर वो नफरत पकड़ के रखी है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये रिजेंटमेंट नहीं कैरी कर सकते, इवन इफ द पास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी वेरी डैमेजिंग. चाहे कुछ भी हुआ हो, वी नीड टू फॉरगिव, क्योंकि उसी से हमारी हीलिंग होगी. नहीं तो उस बहन को देखकर मुझे लगा, देखो पूरी जीवन इस नफरत को पकड़ने की वजह से इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, चारों एस्पेक्ट्स पर कहीं भी हेल्दी नहीं चला.
1: आई थिंक रफ पटेल, क्यों हम फॉरगिव नहीं करते? क्योंकि शायद हम उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन चाहते हैं. तो अब वो तो आएगा नहीं, क्योंकि लगता है वो तो खत्म हो गया. तो इसीलिए अब वो प्राप्ति तो होने वाली है नहीं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं करते हैं. हम उसको पकड़ के रखते हैं या रिजेंटमेंट या गुस्से में रहते हैं कि वो तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो वापस नहीं मिल पाएगा जो था हमारा इतना सुंदर.
2: नहीं, हम डैमेज तो सोचे ना. जैसे शिवानी बेन ने कहा, मुझे मेरे दो पेशेंट के एग्जाम्पल याद आए. भाई यहां तो डिप्रेशन सिर्फ हुआ है, वहां तो सिजोफ्रेनिया हुआ है. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अब्यूज. आज दोनों सिजोफ्रेनिक है. तो देखो, उन्होंने इतना उसको दिल पर ले लिया कि पागलपन आ गया. तो अगर वहीं पर माफ कर देते जल्दी से, कोई टेक्निक को अच्छे से समझ लेते, तो बीमारी नहीं होती.
1: माफ करना क्यों जरूरी है?
0: क्योंकि माफ करने से मेरी कितनी सारी हीलिंग हो गई ना. देखो, जैसे गिरीश भाई ने कहा, एक एक थॉट हमारे सेल पर वर्क कर रही है, माइंड पर वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के हर सेल पर वर्क कर रही है. तो हेट्रेड की थॉट है ना, आई एम कैरिंग अ होल बंच ऑफ थॉट्स ऑफ हेट्रेड, तो पूरे इफेक्ट नहीं आएगा. एनर्जी है, वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगी. जिनसे भी मैं मिलूंगी उनको मुझसे कौन सी वाइब्रेशंस मिलेंगी? इट्स लाइक द परफ्यूम यू आर यूजिंग, दैट इज योर एनर्जी. तो अगर आपने नफरत की परफ्यूम यूज की हुई है, आपके किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा. आई कम नियर यू एंड आई मूव अवे. कई लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें लगता है नॉट वेरी कम्फर्टेबल इनसे मिलने से. कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इनका ओरा बहुत भारी है, इनकी वायनो बहुत भारी भारी है. ये कुछ लोगों से आप मिलेंगे, आपको लगेगा इनसे मिलकर अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ वॉट पैकेट दे आर कैरिंग हियर. इसलिए आपका सिर्फ एक रिश्ता नहीं खराब होता, यू नो, जिसमें आपने वो एक्सपीरियंस किया. आप किसी भी रिश्ते को ब्यूटिफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि आपकी अपनी ऑरा बहुत भारी है. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपकी जीवन, ठीक है, एक हादसा कितना भी पड़ा, एक हुआ है, देयर इज लॉट्स मोर टू हैपन. बहुत कुछ है जीवन में और, लेकिन अब आगे की डेस्टिनी, इसके बाद मुझे कैसी क्रिएट करनी है, दैट्स कम्प्लीटली इन माई हैंड्स नाउ. नफरत पकड़ के रखो, दिस विल बी द डेस्टिनी. फॉरगिव, the world will be beautiful for me. There was another lady, she was abused when she was a child. Today she's 35+. I think she's one of the most sincere watchers I have seen of this program. Ek bhi episode shayad nahi miss kiya, notes banaye, study kiya. She had been physically abused and ek din wo program mein baithi thi, live program mein, and humne us pe commentary kar rahe the ki let go, jinko bhi humne aaj din tak pakad kar rakha tha, आज हम उनको जाने देते हैं. आफ्टर द प्रोग्राम शी गॉट अप एंड सेड, 30 ईयर्स के बाद आज उस व्यक्ति को जाने दिया. उस एक इंसिडेंट की वजह से शी डिड नॉट गेट मैरिड, लोगों से वो दूर हो गई. शी आई हेट पीपल, उस एक एक्सपीरियंस की वजह से. लेकिन थोड़ी देर बैठी, उसके डैमेज को समझा, शी सेड आई लेट हिम गो टूडे. जीवन परिवर्तन हो गई, टूडे शी इज अ डिफरेंट पर्सन. सो हम ही खुद को डैमेज करते, हम ही खुद को हील कर सकते हैं. दिस इज ट्रिमेंडस पावर दैट वी हैव.
2: दिस इज पावरफुल. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है. और एक इम्पोर्टेंट बात की भी, क्यों मैं माफ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे कारण मेरे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ. मैं तुमको माफ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके. लेकिन मेरे पर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू राइज अबाउट दैट.
1: तो मैं अपने आप को तो माफ करूंगा
2: नहीं, उसको ही माफ कर, तभी वो इन्फ्लुएंस से आप ऊपर उठेंगे. तो मेरे फायदे के लिए मैं किसी को माफ कर रहा हूँ, वो तो करना ही चाहिए.
0: एंड माफ करना मतलब भी क्या, मतलब उस इंसिडेंट और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद. It doesn't have to come back on my mind. That is maaf karna na. Maaf means wo baat baar baar baar baar mere mind mein chalti rehti hai, wo thoughts create hote rehte hain. Maaf karna need not mean ki main unke saath jaakar best of friends ban jaun. Maaf karna is not ki main unse roz baatein. Maaf karna just means wo mere chit par ab nahi hai.
1: Wo mere thoughts mein na aaye, main unke wo jo feelings thi wo na. But is it possible? Kaise kar sakte hain? Mere haath mein nahi hota na. See again when it ओके आई क्रिएट, बट देन वो जब क्रिएट कर रही होती हूँ मैं, तो मैं उसके वश में हूँ.
0: तो अपने आप को फिर से समझाओ ना. सी अगेन अवेयरनेस, ये थॉट सारे हैं, मैं फिर अपने आप को समझाऊं. एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, बाकी नुकसान मैं अपने कर रही हूँ. एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, जो भी किया, बिजनेस में चीट किया, अब्यूज किया, जो एक नुकसान किया, यस दैट पर्सन हैज डन वन डैमेज, बाकी नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ. टॉक टू योर सेल्फ, दिस इज चेंजिंग माई थॉट्स. और इसमें परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें वो हील करने में मदद करता है. कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है, कोई भी प्रकार का धोखा, इट्स अ रिजेक्शन. मुझे एक रिजेक्शन मिलता है किसी रिश्ते में, परमात्मा से मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो मेरी हीलिंग को ईजी कर देता है. जस्ट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द प्रोसेस. बट ओनली इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ डैमेज उन्होंने नहीं किया, ये रिपीटेड करने से डैमेज मैं कर रही हूँ. दिस आई हैव टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ. आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया, क्या नुकसान किया, पैसे ले गए ना आपके, सारे पैसे ले गए लेट से, लेकिन आपके मन का, शरीर का और आपके रिश्तों का अब नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ. किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज किया, फिजिकली किया ना, लेकिन अब माइंड का, रिलेशनशिप्स का, प्रोफेशन का नुकसान मैं कर रही हूँ. दिस इज हाउ आई विल हैव टू कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड कम आउट ऑफ इट.
2: और कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स भी याद करो. ग्राहम स्टेन का उदाहरण बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जो ओडिशा में एक फादर थे, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था. तो एक साल के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी को यह प्रश्न पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में आपके दिल में कैसी भावनाएं. तो उस महिला ने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया. तो बताने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए.
1: रिजेंटमेंट रख के भी क्या फायदा,
0: इट्स नॉट अबाउट क्या फायदा, शी चेंज हर डेस्टिनी. वो पूरा परिवार अपना देश छोड़ के इन लोगों की सेवा के लिए आए थे. इन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया. नाउ दिस लेडी, शी लॉस्ट ऑल हर थ्री फैमिली मेंबर्स, शी कुड हैव लिव्ड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन पेन. शी इज वर्किंग टुडे विद द सेम पीपल, शी इज सर्विंग देम, शी इज हेल्पिंग देम, शी इज चेंज्ड हर डेस्टिनी. आप वो सिचुएशन को तो नहीं चेंज कर सकते, यू कैन गेट दोज पीपल बैक, बट यू कैन चेंज हाउ यू आर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड. दैट्स द पावर, क्रिएटिंग माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर, not only holding back my past. This is the power we have.
1: In fact,
2: remember such example. और इसमें बहुत बड़ा healing power है. कहते हैं I forgive you. ये तीन शब्दों में बहुत जबरदस्त शक्ति है. बस
1: यहाँ एक मेरे को एक और भी आस्पेक्ट लेना है, रिजेक्शन का, जो आपने कहा कि ये तो सिचुएशन वो थी कि लोग चले भी गए और लोगों से मैंने अपना नाता भी नहीं रखा, बिकॉज आई वॉज रिजेक्टेड, या मुझे धोखा हुआ. देर आर टाइम्स वेन आई हैव बीन रिजेक्टेड, बट आई एम वेटिंग. आई नो समबडी जो एक रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ और उसके बाद वो लड़का कहीं गया, लड़की यही है. अब वो रिजेक्शन है या जो भी, द गर्ल इज स्टिल वेटिंग, यू नो, वो वेट. और उसके प्रति वो नफरत भी है कि मुझे रिजेक्ट किया, किस कारण किया, क्या. और वो जो वो वेट, तो आज भी पूरा जीवन, दो साल बाद भी वो जीवन वैसा का वैसा है. और آنا ویٹ بھی, اور تو یہ اس کو کیسے ہیل کرے, کیونکہ یہ پوری زندگی ایک طرح کے ریزینٹمنٹ میں چل رہی ہے, باقی سارے رشتے جو ہیں وہ اور خراب ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ ویٹ جو ہے وہ بہت پینفل ہے.

0: Church of Marriage Rishto mein jud chuke the, they have overcome it. And it's an inspiration. I feel very nice when I meet such people. Ke look at the power every soul has. Jo atma decide kar leti hai ki mujhe ye karna hai, wo kar leti hai. And every time hum kisi se aise milte hain, it reinforces ki jo apne upar karega, usko result zarur milega.
1: Dr. Patel, Sister Shivani, aaj phir ek baar hum apne hi thought power ko kya miracle dekhte hain. You know, aise situations jab lagta hai ki let go kiya hi nahi ja sakta, hum chhod hi nahi sakte, ye dard mujhe kabhi nahi chhodega, humne matlab jeevan ka ek sach maan liya hai.
0: Dard ko hum, dard hame nahi chhodega, hame dard ko chhodna hai.
1: Hum dard ko chhod ke equations change karke statements change kar rahe hain. Thank you so much. Abhi tak to ye chal raha tha ki bahar dard hai उस व्यक्ति के कारण, उस सिचुएशन के कारण मैं कंटिन्यूस पेन में हूँ. पूरा टाइम मेरे मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लिए जाना ही, उसको ढोए जाना ही मेरी जिंदगी है. लेकिन जब अपने आप को पहचानते हैं और इस शक्ति को जानते हैं कि मुझ में ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ही क्रिएट किया, ये ऑब्सेशन भी उस व्यक्ति या सिचुएशन ने तो नहीं कहा था, या वो जो कुछ हुआ था वो उस वक्त का सच था, आज उस सच को बदले बहुत वक्त गुजर चुका है. आज का सच ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ. शरीर के साथ हूँ, इसीलिए शरीर भी, शरीर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने प्रति मेरी जिम्मेदारी है. बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी देखें, अपनी ही ताकत को पहचाने, बदलाव संभव है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे. शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक बहुत प्यारा इंसान तलत महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तलत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल मॉलिसन ने लिखा है कि भारत ने जो महान देशभक्त क्रांतिकारी पैदा किए हैं उनमें तात्या टोपे का स्थान प्रमुख है। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे और 1857 के महासमर के रणनीतिकार भी। कहा जाता है कि उनकी युद्ध योजनाएं सैन्य दृष्टि से नेपोलियन की तरह हुआ करती थी। उन्होंने कानपुर पर अंग्रेजों के अधिकार को नकारते हुए उन्हें वहां से खदेड़ बाहर किया था। 6 दिसंबर 1857 को जब अंग्रेज कानपुर पर फिर पूरी तरह काबिज हो गए तो तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने झांसी पहुंच गए। उनकी मदद से ही रानी ने ग्वालियर पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। तात्या टोपे ने अकेले ही 1857 के संग्राम को 2 सालों तक जारी रखा था। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा, छोटा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जीरापुर, नाहरगढ़, इंद्रगढ़, जयपुर, दिवासा, सीकर और जोधपुर के क्रांतिकारी राजाओं और सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। उनके युद्ध कौशल, रणचातुरी और कुशल मोर्चाबंदी का अंग्रेजों के पास कोई जवाब न था, इसलिए अपने चिर परिचित अंदाज में षड्यंत्र का सहारा लेकर अंग्रेजों ने उन्हें 8 अप्रैल 1857 को जंगल में सोते हुए बंदी बनाया था। 15 अप्रैल को सैनिक अदालत में न्याय का नाटक रचकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों का प्रजाजन कभी नहीं माना, इसीलिए फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने स्वयं ही अपने गले में फंदा डाल लिया था। देश के प्रति अपने कर्तव्य का इतनी जिंदा दिली से पालन करने वाले देशभक्त कम ही मिलते हैं।
2: क्यों भाई चाय मास्टर, ये काका कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है?
3: अरे नमस्कार भैया, वो

0: दादा तो शिवपुरी गए हैं, आज ही लौटने वाले हैं। अब परसों गए थे, कुछ काम था शायद।
1: और सुनाओ मास्टर, तुम्हारे क्या हाल हैं?
0: अरे बस भैया, सब बढ़िया चल रहा है। अब बिटिया नवी में है और बेटा बारहवीं में है।
2: तो भैया बिटिया को क्या बनाने का सोचा है?
0: अरे अब बनाना क्या है भैया, बस दसवीं के बाद अच्छा सा घर देख के शादी कर देंगे और बेटे को मैकेनिक क्या लगवा दूंगा, थोड़ा सीख जाएगा फिर उसकी शादी। तो पर वो बोलता है कि डॉक्टर बनूंगा, पागल है।
1: तो इसमें हर्ज क्या है?
0: अरे साहब, हम अनपढ़ गरीब लोग, हमारी क्या औकात है डॉक्टर बनने की?
1: क्या भैया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? गज भी दादा के साथ तुमने कुछ नहीं सीखा। देखो, सरकार गरीब तबके के लोगों के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। आज कई बच्चे ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के पर वो डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। सरकार पिछड़ों को आगे लाना चाहती है। आप बच्चों को पढ़ने दीजिए। लड़का डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे शाबाशी दीजिए, उसमें लगन है, वो जरूर आगे बढ़ेगा।
0: अरे बस भैया, भगवान करे आपकी जवान फल जाए।
2: और लड़की की शादी जल्दी नहीं करना?
0: हाँ भैया, कहते तो सही हो। ये लो, आपके दोस्त छोटे भैया आ गए। गुड मॉर्निंग।
3: ओहो, क्या बात है मास्टर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से बढ़िया चाय और नमकीन बिस्किट दो।
2: क्यों बेटा, अकेले अकेले चाय?
3: नहीं, अकेले नहीं, बिस्किट के साथ है।
2: अच्छा बेटा, हमसे ही बदमाशी।
0: ये लो भैया, दो स्पेशल चाय इनके खाते में। क्यों बेटा, तुम कॉलेज नहीं गए?
4: हाँ यार, कल कॉलेज में एक प्रोग्राम है, आजादी के दीवाने। इसमें हमारे क्लास में मुझे क्रांतिवीर तात्या टोपे पर बोलना है। बहुत पहले स्कूल में दसवीं के कोर्स में पढ़ा था, अब सब भूल गया। अरे यार, कल क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे बोलूंगा।
2: हाँ यार, राम भरोसे दादा भी तो नहीं है, उनके पास तो काफी अच्छा कलेक्शन है। क्यों मास्टर, दादा आएंगे या नहीं कि अब शिवपुरी में ही होटल खोल ली?
0: अरे लो भैया, बड़ी लंबी उम्र है, वो सामने देखो चले आ रहे हैं।
4: जय हो दादा, जय हो संकट मोचन। नैया पार लगा दो भैया।
2: लगा बेटा, और मक्खन लगा, तेरी नैया तो डूबने वाली है।
4: तो मजाक बंद कर। दादा प्रणाम। क्या दादा, कहाँ गायब हो गए थे आप?
5: अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो? हाँ, मैं किसी काम से शिवपुरी गया था।
1: दादा आपका चेला कॉलेज में फंस गया, इन महाशय को तात्या टोपे के आजादी के संघर्ष की गाथा सुनानी है, इन्हें डर के मारे बुखार चढ़ रहा है।
5: अरे तुम भी क्या डर गए यार? अरे तात्या टोपे का नाम सुनकर तो अंग्रेजों तक को बुखार चढ़ जाता था। डरो मत, मैं ये किताब शिवपुरी से लाया हूँ, कल तक तुम्हारा बुखार उतर जाएगा।
0: लीजिए दादा, पानी लीजिए। दादा ये रहा पानी, ये रहा पेन, ये कॉफी, अब आप बोलते जाइए और मैं लिखता जाता हूँ।
5: लो चाय पियो। अरे घबराओ मत यार, मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करवा दूंगा। तात्या टोपे नाना साहब पेशवा के यहाँ एक साधारण से लिपिक थे।
6: मुझे केवल भरण पोषण के लिए नौकरी नहीं करना है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूं। मेरी मातृभूमि अंग्रेजों के कब्जे में है, मुझे भारत माता की बीड़ियों को तोड़ना होगा। अंग्रेजों के अत्याचार से भारत को मुक्त करने के लिए अगर मेरा सर कटकर जमीन से जा लगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपनी इस नौकरी को त्यागता हूं, मेरी आवश्यकता तो रणभूमि को है।
5: लेकिन देश प्रेम और लगन और जिद से तात्या 1857 के स्वाधीनता समर के महासेनापति बन गए।
7: साइलेंस प्लीज। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग क्या कर रहा है? वो अकेला तात्या टोपे कुछ सैनिकों को लेकर कई बार हमारी नाक काट चुका है, यह हमारे लिए शर्म का बात है। वो ऐसा क्या जादू जानता है कि हम ब्रिटिश लोग उस काले आदमी का बाल तक बाका नहीं कर पाए?
8: सर, हम चाक खरे वो बहुत चालाक है, उसके लिए कोई

0: टाइट प्लानिंग खाना होगी।
1: यस, लंदन तक उसका नाम गूंज रहा है और लोग मुझे टारगेट बना रहा है।
2: देखा, उस तात्या टोपे ने अंग्रेजों को किस हद तक परेशान कर रखा था। वो चालाक नहीं, बहादुर था।
0: मेरे प्रिय साथियों, भारत माँ के सपूतों, आज हमें बता देना है कि हम किस माँ की संतान हैं। भारत वर्ष के गौरव को मिट्टी में मिलने नहीं देना है। हमारा एक एक सिपाही 10 अंग्रेजों पर भारी पड़ेगा। चलो तैयार हो जाओ और कूद पड़ो समर में। हमारा पहला निशाना कालपी होगा। चलो कालपी, कूद पड़ो।
3: भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
2: उसने बहादुरी के बल पर ही कालपी, ग्वालियर और कानपुर को हत्या लिया था। अंग्रेज उसे सबसे कट्टर शत्रु मानते थे। एक दिन की बात है,
0: मैं इन गोरे चूहों से नहीं डरता। ये अंग्रेज मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे सौगंध है झांसी की रानी की और उन सारे शहीदों की। मैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। औरतों और बच्चों पर किए गए एक एक अत्याचार को मैं भूला नहीं हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन कर मारूंगा उन गोरे चोरों को। कर्नल होम्स भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चलो साथियों, दक्षिण की ओर प्रस्थान करो, आगे बढ़ो।
3: भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
0: अब मेरे अधिकार में है। आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कर्नल होम्स को भूल जाइए और ये तोपे मुझे दे दीजिए। तोपे अपने कब्जे में ले लो साथियों। अच्छा नवाब साहब, फिर मिलेंगे।
2: कर्नल होम्स ने अपनी सहायता के लिए रॉबर्ट्स को बुलावा भेजा। दोनों ने मिलकर चंबल नदी पर तात्या को घेर लिया, पर तात्या उनको चकमा देकर बूंदी जा पहुंचा, जहां से नीमच होकर नाथद्वारा पहुंचा, मंदिर में भगवान के दर्शन किए। अंग्रेजी सेना पीछा कर रही थी। दोनों ने जमकर युद्ध हुआ।

तात्या पराजित हुआ पर हारा नहीं। तात्या चंबल की तरफ भागा। चंबल पार करके झालरापाटन पहुंचा। वहां के नरेश से उसने भारी मात्रा में रसद, तोपें और घोड़े कब्जे में कर लिए। फिर उसने इंदौर पर हमला करने की योजना बनाई।

0: Oh my God. अगर तात्या इंदौर पहुंच गया और होलकर सेना उसके साथ हो गई तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर वहां से नारपदा पार करके दक्षिण चला गया तो मराठे उसको सहयोग करेंगे। फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे, उसको इंदौर जाने से रोकना होगा। रॉबर्ट होम्स, पैट मिचेल्स, होप एंड हार्ट, तुम सब अलग अलग रास्ते से टाटा टोपी को इंदौर जाने से रोको।
1: कोई राजगढ़ की ओर से चला, कोई उज्जैन की तरफ से, कोई महू की तरफ से और कोई देवास की तरफ से। इस समय तात्या के पास बहुत बड़ी सेना थी, पर उसने अंग्रेजों से भिड़कर अपनी शक्ति नष्ट करने की बजाय अपनी सेना को विश्राम दिया ताकि वे संकट में जबरदस्त मुकाबला कर सके। अंग्रेज तात्या को चारों तरफ से घेर रहे थे जिससे वो जंगल में फंस जाए, लेकिन तात्या इन सब को ठेंगा दिखाते हुए पर्वतों को लांघता हुआ, जंगलों को चीरता हुआ, नदियों को उफानता हुआ अंग्रेजों को छका रहा था।
2: चाचा टोपे ने हमको परेशान कर दिया है, कभी वो रसद लूटता, कभी हमारा डाक काटा, वो बड़ौदा के रास्ते पर आए। सेनापति मेजर सैंडरलैंड को कहो चाचा टोपे का काम तमाम कर दे।
1: यह आसान नहीं था, पर हाँ, सैंडरलैंड से तात्या का जमकर मुकाबला हुआ। ये स्थान था करकुल।

equipo Caribe Fútbol. ¡Salud!

0: नाना साहब, नाना साहब, कर्नल पार्क हमारे पीछे है।
1: दक्षिण में नर्मदा है, पश्चिम में रॉबर्ट्स खड़ा है। इसलिए कुछ करना होगा, इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा।
2: रास्ता बदलो, चलो।

0: इधर उधर घूमता हुआ तात्या देवास पहुंचा। वहां उसने फिर चकमा दिया, अंग्रेज बौखला गए।
1: आप तात्या जो भीतर दिखा था, आप ही भूसा था, आप खीजा गया।
0: तात्या देवास में डूबा तो ग्वालियर के पाडोन जागीर में जा निकला। वहां तात्या का एक मित्र मानसिंह था। मानसिंह ग्वालियर नरेश से रुष्ट होकर जंगलों में डेरा डाले हुए था। अंग्रेजों को भी मालूम हो गया कि तात्या ने मानसिंह के यहां डेरा जमा रखा है। तात्या से अंग्रेजों को हर बार हार मिल रही थी, इस बार अंग्रेजों ने

0: 조혜롱.
1: 반조할까? 아, 찬찬아.
0: 저놈.
1: 예, 박사.
0: 그래, 하, 그, 땀매버 다 담을 땀에.
1: 자지야,
0: 저놈.
1: 바디씨, 아, 파마라 빈드라마. 자지만, 완생 좀 내가 말까.
2: मानसिंह तू तूने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को दाग लगा दिया नीच मुझे धोखे से पकड़कर खुश मत हो
3: छा छा छा रो यही

तात्या को शिवपुरी में जनरल मीड की छावनी ले जाया गया। उस पर कई झूठे आरोप लगाए लूट और हत्याओं के, फिर उसे फांसी का दंड दिया गया। शिवपुरी की जनता भारत माता के उस सपूत को देखने को उमड़ पड़ी, पर अंग्रेजों ने जनता को रोक दिया। 18 अप्रैल 1859 को तात्या को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया।

0: ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। हे ईश्वर, मुझे हर बार इसी देश में जन्म देना, ताकि मैं हर बार अपने देश पर जान निछावर कर सकूं।
1: तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है?
0: हाँ, मेरी भारत माता दासता की बेड़ियों से मुक्त हो, ये मेरी अंतिम इच्छा है। और मेरी अंतिम इच्छा ये भी है, तुम अंग्रेजों का नामो निशान इस पवित्र धरती से मिटा दूं, और मेरे साथियों को मेरा अंतिम प्रणाम। हाँ, एक बात और, मेरे वृद्ध माता पिता को परेशान न किया जाए, क्योंकि वो निर्दोष है। मैं मृत्यु मंच तक खुद चलकर खुशी से जाऊंगा। मुझे सिर पर काला टोपा नहीं चाहिए, मैं मौत को खुद अपने सामने देखने को तैयार हूँ। मैं स्वयं खांसी के फंदे को माला समझकर पहनूंगा।
2: ओके, 1, 2, 3।

0: और खट की आवाज के साथ कात्या का शरीर फंदे में झूल रहा था। उसके दोनों हाथ खुले थे। सूर्यास्त तक उसकी पार्थिव देह रस्सी पर झूलती रही। और मैं उसी शहर शिवपुरी से आ रहा हूं, उस शहीद को प्रणाम कहकर। तो जाओ, कल कात्य टोपे से प्रेरणा लेकर निडर होकर उसके बलिदान की गाथा लोगों तक पहुंचाओ। ईश्वर तुम्हारे साथ है।
1: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
2: अला अला अला।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड नमस्कार।
2: थैंक यू।
1: लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि जो कंपटीशन है वो भी एक संस्कार बन जाता है, और इतना मतलब हैबिट कहें उसको,
2: बिलीफ सिस्टम, बिलीफ
1: आदत पड़ जाती ना।
2: हाँ, तो वो आदत कैसे पड़ी? वी सॉ ना हैबिट, आपने कहा ये हैबिट बन गई है। हैबिट कहाँ से बनी?
1: स्कूल से सिखाया गया था।
2: बिलीफ सिस्टम बना ना। आप देखिए, एक बच्चे की परफॉर्मेंस हमेशा बाकी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर की जाती है, एंड उसको यही मोटिवेट किया जाता है आपको उनसे आगे जाना है, उनसे आगे जाना है। उसकी अपनी यूनिक परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स, क्वालिटीज, सिर्फ उस पर ना फोकस कर। इट्स ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विद समथिंग एल्स। सो ये बिलीफ सिस्टम जो तब बना, और फिर हर स्टेप पे वो री इन्फोर्स होता गया, मतलब मेरी थॉट्स उसी से अराइज हुई, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, नाउ पर्सनैलिटी ट्रेट, स्टार्टेड विद द बिलीफ सिस्टम। आज भी वो संस्कार को या हैबिट को चेंज करना इजी है, प्रोवाइडेड बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, हर जगह मुझे आगे होना है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा, फैमिली में भी वो चीज आ जाएगी।
1: घर में नौकर किसको ज्यादा प्यार करते हैं?
2: यस, व्हाई नॉट,
1: मुझे या मेरी पत्नी को?
2: यस, वो भी नहीं, सास और बहू में कितना होगा ये कि किसकी बात ज्यादा मानी जाती है,
1: किसको? घर का बड़ा कौन है? उम्र में बड़ा है भले, लेकिन चाचा की बात ज्यादा सुनते हैं, डैडी की नहीं।
2: तो अब इसमें तो कोई प्रॉफिट की भी बात नहीं है, कोई टारगेट और अचीवमेंट की भी बात नहीं है, बट इट्स अ संस्कार।
1: बट सिस्टर, एज अ पेरेंट मैं ये पूछूंगा, मेरा बच्चा कल स्विमिंग कॉम्पिटिशन, ये जो शब्द है,
2: राइट,
1: रनिंग कॉम्पिटिशन,
2: राइट,
1: राइटिंग कॉम्पिटिशन, एग्जाम्स, मेरे समझ में कॉम्पिटिशन का वर्ड है तो कम्पीट तो करते हैं एक दूसरे से।
2: हाँ, तो वही
1: और भी शब्द है इंग्लिश में, हेल्थी कॉम्पिटिशन इज गुड।
2: जैसे गुड स्ट्रेस था, जैसे गुड स्ट्रेस था ना, वैसे ही हेल्दी कॉम्पिटिशन है। आई नीड टू आस्क मायसेल्फ, जो आपने कहा रेस है, जहाँ कि स्विमिंग रेस है, रनिंग रेस है, वो एक रेस है, एक स्पोर्ट है ना। स्पोर्ट में और जीवन में तो फर्क होगा, और स्पोर्ट में भी क्या सिखाया जाता है, डू द बेस्ट ऑफ योर अबिलिटी, वो करना है। सी, कॉम्पिटिशन क्यों एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हेल्दी अनहेल्दी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब तो चलो सेकेंडरी। कॉम्पिटिशन पॉसिबल नहीं है दो लोगों के बीच, क्योंकि दो लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट तब करें जब दोनों के पैरामीटर सेम होने चाहिए।
1: दुनिया में कोई चीज दो चीज एक नहीं है।
2: लेट्स से आप और मैं इकट्ठे अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम पर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। आपने कहा दुनिया में कभी भी दो चीजें सेम नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं अभी कि सब कुछ सेम है। लेट्स से हाइपोथेटिकली, नो अजम्पशन, सपोज सेम शहर, सेम लोकेशन,

0: same time, same product. ये है external चीजें कि same जगह पर, same शहर में, same समय पर और same product हम दो business शुरू करते हैं. अब हम अपनी qualities को लेते हैं जो एक business को run करने के लिए चाहिए.
1: और एक चीज add कर लें.
0: हाँ.
1: Same parents के दो बेटे.
0: Fantastic. Same parents के दो बेटे. अब ये हैं outside parameters हमारे same हैं. अब inside parameters ले लेते हैं. And let's assume कि वो भी सेम है. सेम अमाउंट ऑफ ऑनेस्टी, दोनों के अंदर वैल्यू सिस्टम उतनी ही सत्यता है, उतना ही हार्डवर्क, मेहनत करने का संस्कार, सिंसियरिटी, विल पावर, दृढ़ता, जो चाहिए ना एक काम को करने के लिए, एक बिजनेस को करने के लिए, वो दोनों के पास सेम है. आपने कहा दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, उसको एक स्टेप और लेकर जाते हैं, दोनों ट्विन्स हैं.
1: अरे वाह.
0: पैदा एक ही टाइम एक ही दिन हुए थे, तो दोनों का वो जो प्लैनेटरी इफेक्ट है, क्योंकि वो भी नहीं तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, वो भी सेम है. अब सारे पैरामीटर्स सेम होकर, सेम पेरेंट्स तो सेम पेरेंट संस्कार, सेम रिसोर्सेस, सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम प्रोडक्ट, सेम लोकेशन, सेम सिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, लॉयल्टी, ये सब कुछ सेम जब होगा तो दोनों का आउटपुट बिजनेस का सेम होगा.
1: होना तो चाहिए.
0: होगा, लेकिन अगर हम ये करके देख लें, हम ये कर लेते हैं, लेट्स से वी डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट, ये कर लें जुड़वा भाइयों को लेकर जिनके संस्कार भी सिमिलर है.
1: आज तक तो नहीं हुआ कहीं.
0: नाउ वी हैव टू थिंक, सब कुछ सेम होकर, सब कुछ, एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट, जो एक इनपुट होगा एक बिजनेस के लिए, सब कुछ सेम होकर भी आउटपुट क्यों सेम नहीं है? कहाँ डिफरेंस आ रहा है? क्या उसको क्या बोलेंगे? दोनों को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है?
1: पास्ट कर्म.
0: दिस इज इट.
1: रियली, एम आई राइट?
0: एब्सोल्युटली.
1: मैंने वैसी बोल दिया क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि सही हो सकता है कि नहीं.
0: वी सॉ बिफोर ऑल्सो, हम जितनी मेहनत करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, हमारे अंदर जितनी क्वालिटीज, वैल्यूज, सब कुछ आज है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, इनफैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे सक्सेस को डिसाइड करता है, वो है हमारा
1: पास्ट कर्म,
0: पास्ट कार्मिक अकाउंट. कोई भी दो सोल्स के सारे प्रेजेंट फैक्टर्स भी अगर सेम होंगे, तो दोनों का पास्ट कार्मिक अकाउंट तो सेम नहीं हो सकता है. किसी का भी दोनों का सेम पास्ट कर्म नहीं हो सकता है. इसलिए सब कुछ सेम होते हुए भी, क्योंकि पास्ट कर्म दोनों का अलग अलग है और ये एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है आउटपुट डिसाइड करने के लिए, तो सब कुछ सेम होके भी आउटपुट सेम नहीं होगी. वेयर इज द कॉम्पिटिशन? अब मैं इनके साथ कम्पीट ही कैसे करूं? मैं इनके साथ रेस में लड़ू ही कैसे जब इनपुट फैक्टर ही अलग है? दिस नाउ वी विल नीड टू अंडरस्टैंड.
1: मैंने ये देखा है सिस्टर कि बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टूडियो, बड़े लोग, उनके एक एक के तीन तीन बच्चे हैं, किसी के चार हैं, किसी के दो हैं, किसी का एक है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, लेकिन सारे के सारे एक्टर नहीं बने ना. बाप की तरह या दादा की तरह या चाचा की तरह सारे सब कुछ थे, उनके पास गुण भी वो थे, जीन्स भी वो थे, पैसा भी सबके पास था, गुड लुक्स भी थे, लेकिन किसी में आठ में से एक बन गया, तीन में से एक बन गया, किसी की बेटी बन गई, बेटा नहीं बना, किसी का बेटा बन गया.
0: और ये भी देखा कि सबने ट्राई किया.
1: हाँ,
0: है ना,
1: इक्वल.
0: यस, सबने ट्राई किया, कोई बहुत सक्सेसफुल हो गए.
1: एक पेरेंट्स के बच्चे होकर भी, सारी सुविधाओं के साथ भी, अपना अपना कर्म लेके आते हैं सब.
0: एक पेरेंट्स के बच्चे तो वो सिर्फ अभी है ना, वो तो इस कॉस्ट्यूम में वो पेरेंट्स के बच्चे है ना, थोड़े साल पहले. इसीलिए कंपटीशन नहीं हो सकता कोई दो आत्माओं के बीच. आप और मैं अब इक्वल भी मेहनत कर लें, लेकिन आप बहुत श्रेष्ठ पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकर आए हैं और मैंने अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट में कुछ गफलत किया है, कुछ गड़बड़ किया है. अब मैं कैसे आपके साथ कम्पीट करूं? अब मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी सब कुछ करूं, आपको सक्सेस ज्यादा मिलने वाली है.

0: मीन्स मुझे आपकी सफलता अच्छी नहीं लग रही, मतलब आपके प्रति कैसा थॉट क्रिएट किया फिर कि ये इतने सफल क्यों, मतलब सूक्ष्म में इनको इतना सफल होना नहीं चाहिए था।
1: और ये जब बैठ जाएं, डूब जाएं,
0: वो तो
1: खुशी भी हो।
0: हाँ, पर फिर भी ये सपोज हम नहीं भी क्रिएट करें किसी के लिए, हम कहते हैं ना नहीं मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, लेकिन ये थॉट दूसरे की सक्सेस पे एक क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट करना, ये बोलना चाहिए ना आई एम सो हैप्पी इनको ये इतना अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये बोलना इनको इतना कैसे मिल रहा है मुझे नहीं।
1: सेम क्वेश्चन मैंने अपनी माँ से पूछा था, मेरी मदर बहुत वाइज थी, विजडम। मैंने बोला माता जी को पंजाबी में पूछता था, मैंने बोला ऐसा है देखो ये किया इतने गंदे काम करता, मुझे बोले उन्होंने फिर ये मुझे पंजाबी में बोला पुत्र जिन्हों रब ने वड्याया उदे नाल बैर की।
0: सो ब्यूटीफुल।
1: तो मैंने पूछा कि मतलब हिंदी में जिसको भगवान ने एक पोजीशन दी उससे मैं वैर करूं या जेलेसी करूं तो मैं किससे कर रहा हूं?
0: एब्सोल्युटली।
1: तो उन्होंने भगवान का मतलब ये समझाने के लिए बोल दिया होगा कि उसकी पास कार्मिक अकाउंट।
0: एब्सोल्युटली।
1: जिन्हों रब ने वड्याया उदे नाल वैर की,
0: क्योंकि ये नहीं कि वो एक न्यूट्रल है कि कोई बात नहीं आपने उससे वेयर कर लिया, आप एक बहुत बड़ा डीप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं उसको।
1: इसलिए बोला ना मतलब वेयर में भगवान से कर रहा हूँ,
0: उनकी
1: भगवान के लॉस
0: उनका भाग्य वो लिख कर लाए हैं, और हम किसी की सफलता को देखकर खुश नहीं हो रहे, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, ये बहुत चेक करना पड़ता है, क्योंकि जेलेसी इतना सटल संस्कार है, इतना सटल थॉट है कि हम ऊपर ऊपर से उसकी चेकिंग करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम जेलस है ऑफ समबडी। हमें नहीं मामे से हम बिल से नो नो वी आर वेरी हैप्पी। दूसरे की प्राप्ति पर सक्सेस पर क्वेश्चन मार्क उठना, उसकी खुशी के लिए उतना खुश ना होना, ये जेलसी है। अब क्या हुआ, मेरे इनपुट पैरामीटर सारे अच्छे थे पहले, मतलब मेरी एनर्जी कैसी थी जो हमने उस दिन आपने पढ़ा था ना, तो यूनिवर्स नीदर ब्लेसेज यू नॉर पनिशेज यू, इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू द वाइब्रेशंस ऑफ योर एटीट्यूड। पहले मेरे वाइब्रेशंस सारे कैसे थे, क्लीन, ऑनेस्ट, हार्डवर्क, एफर्ट, सिंसियरिटी, सब था, एक पास्ट कर्म था। लेकिन अब जो मेरे वाइब्रेशंस क्रिएट होते जा रहे हैं बिकॉज मैं दूसरे की सक्सेस देख रहा हूँ,
1: तो एक ऑलरेडी पास्ट कर्म ऊपर से और क्रिएट कर रहा हूँ,
0: अब प्रेजेंट कर्मा भी चेंज
1: और क्रिएट कर रहा हूँ ना नेगेटिव,
0: राइट,
1: जल के
0: दुखी होकर, विल पावर कम करके, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करके, इनसिक्योर होकर, फियर क्रिएट करके, अब मेरा एक अननोन तो था, बाकी पैरामीटर्स भी क्या होने लग गए। अब जैसे ये कम होने लगे मेरा आउटपुट ऑब्वियसली और कम होने लगेगा, जितना आउटपुट कम होने लगेगा, कंपैरिजन की तो आदत है ही, वो कंपेयर करेंगे और ईर्ष्या और दुख और इनपुट और कम होता जाएगा। जब अब जो मेरा आपका और मेरा आउटपुट का जो गैप है, डिफरेंस है, और बढ़ता जाएगा, और ये जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा मेरे इनपुट पैरामीटर्स कम होते जाएंगे, खुशी। अब सेम सिचुएशन को ले लो, फिर से दो लोग, सेम इंडस्ट्री, सेम इनपुट पैरामीटर्स, दोनों के पास्ट कर्मा अलग, दोनों का आउटपुट अलग अलग आ रहा है, आपको बहुत सफलता मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं करती, मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि मैं आपके साथ कंपेयर करूं। आपके मेरे को नॉलेज है कि आपको आपके भाग्य का मिल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू हैव, एंड आई विल से this soul has done very good past karma. I will tell myself.
1: That's a very nice line.
0: I will tell myself, ye atma bahut shreshth karam lekar aayi hai na apne, isliye usko itna acha bhagya mila hai. Very nice. Achhi thought create ki. Aur apne liye kya karungi? Ki haan, mere abhi sab kuch acha hai, lekin mera kuch past karmic account theek nahi hai. Mujhe abhi apne present input par और अपनी बेस्ट डालनी है, एंड अपनी बेस्ट डालकर जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है उसको प्यार से स्वीकार करना है। लेकिन वो तब होगा जब मैं सिर्फ अपने इनपुट और अपने आउटपुट पर ध्यान दूंगा।

0: दूसरा काम कर सकते हो।
1: आपको पीछे कर दूं,
0: आपको पीछे, मैं यही हूँ। अपने स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कुछ ऐसे काम तो कर सकते हो ना जिससे आपकी स्पीड को कम कर दूं। हम वो कर्म ही करने शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही हम वो कर्म करने शुरू कर देंगे, हमारे प्रेजेंट कर्म कौन से हो जाएंगे? ये हमें थोड़ा सा अपने कर्मों से डरना चाहिए कि हम आगे जो हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कॉम्पिटिशन,
1: तो हम लोग कहते हैं कि भगवान से डरो बेटा, तो भगवान की लाइन बोली कर्म से डरो बेटा।
0: अपने कर्म से डरना चाहिए ना, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम में कंपटीशन है, आगे जाना है। एंड देन लुक एट द लाइन, ऑल इज फेयर इन कंपटीशन। तो मैं आगे नहीं जा सकती, तो मैं आपको पीछे खींचना शुरू करूंगी, कुछ कुछ करूंगी, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भी भेज सकती हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है।
1: नहीं करते
0: उसके बाद फिर वो, एंड देन इट्स सच ए डीप एडिक्शन, इतना डीप एडिक्शन, कॉम्पिटिशन भी एडिक्शन है। ये इतना डीप एडिक्शन हो जाएगा कि अब मैं अपनी मर्यादाएं, अपने प्रिंसिपल्स को कितना भी तोड़ दूंगी आपको पीछे करने के लिए।
1: मैंने उस दिन देखा सिस्टर कि एक हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरीशिप के लिए,
0: यस,
1: सोसाइटी में उसकी इतनी बदनामी की, और हमारे गोल्फ कोर्स में कोई प्रेसिडेंट या वो जो भी बनते हैं, वो बनने के लिए इसने इतना नुकसान कर दिया, उसने इतना नुकसान, इतने बड़े बड़े प्रिंट एक एक घर में पोस्ट कर रहे हैं, फोटोज डाल के, इतने लाखों रुपए खा गया, करोड़ों खा गया, इसको मत देना वोट, क्या नहीं करते। और
0: ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे को अपने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है हम नहीं जा पा रहे आगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे को मलाइन करना, दूसरे के बारे में गलत फैलाना, दूसरे के ऊपर गलत काम करना, दूसरे की सक्सेस में बाधा डालना, ये हम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा प्रेजेंट कर्म, अब पास्ट तो था ही थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमारा प्रेजेंट कर्म तो किस क्वालिटी का बन जाएगा? अब जो प्रेजेंट कर्म इस क्वालिटी का बन गया, हो सकता है इस तरह के तरीके यूज करके या किसी को गिरा के आगे जाके मटीरियलिस्टिकली मैं सक्सेसफुल हो भी जाऊं, उनसे आगे भी निकल जाऊं,
1: गेन कर भी लिया,
0: लेकिन अंदर जो दो चीजें हम साथ लाते हैं और दो साथ में जाते हैं, संस्कार और कार्मिक अकाउंट, ये तो हमने किस लेवल के क्रिएट कर दिए हैं। स्टॉप एंड वेक योरसेल्फ अप, अगर हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा फोकस नहीं है। जिनका ऐसे फोकस होगा, माय इनपुट माय सक्सेस, नॉट सफिशिएंट वर्क हार्डर, स्टिल नॉट सफिशिएंट पुट इन मोर, लेकिन ओनली फोकस ऑन माई इनपुट माई आउटपुट, वो आत्मा कभी ना दुखी होगी, ना ईर्ष्या होगी, ना विल पावर कम होगी, एंड ना कभी गलत कर्म करेगा आगे जाने के लिए। वो सिर्फ अपनी यात्रा पर फोकस करेगा, और क्योंकि उसके प्रेजेंट कर्म बहुत अच्छे होंगे, और जो हमने देखा प्रेजेंट अच्छे करते जाओ तो आपका पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल होता जाएगा, फाइनली धीरे धीरे वो पास्ट कर्मा का जो पैरामीटर था वो कम होता जाएगा, एंड आपकी सक्सेस जितनी आपको मिलनी थी, आपका भाग्य उससे ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने थॉट्स अभी प्रेजेंट की चेंज की, डेस्टिनी विल चेंज, ऑल इन आवर हैंड। सफलता एक बहुत सूक्ष्म है, एंड हर एक को अपनी चेक करनी चाहिए ना, इवन वी हैव सीन इन स्कूल ऑल्सो, अगर दो पड़ोसी हैं, दोनों के बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं, एक फर्स्ट आ गया और दूसरे का बच्चा थर्ड, सेकेंड आ गया या थर्ड आ गया, उसको उस बच्चे की सफलता देखकर खुशी नहीं होगी। एक सूक्ष्म लॉ है, जिसको देखकर आपको खुशी नहीं होगी, वो आपके घर नहीं आएगा।
1: मतलब
0: सफलता, अब सफलता एक एंटिटी बना,
1: मैं समझा इंसान
0: ना,
1: अगर सुरेश ओबेरॉय को देखकर आपको खुशी नहीं होगी तो सुरेश आपके घर नहीं आएगा, ऐसा नहीं।
0: सफलता एक एंटिटी है, अब उसको एक एंटिटी की तरह देखें। मुझे आपको मिलती हुई सफलता देखकर खुशी नहीं हो रही, मतलब मुझे सफलता को देखकर खुशी नहीं हो रही है,
1: तो आई डोंट लाइक सफलता, तो इट वोंट कम टू मी,
0: बिकॉज वॉट यू रेडिएट, यस,
1: ये प्रैक्टिकल हो सकता है,
0: ट्राई इट आउट,
1: लेकिन मैं सफलता को थोड़ी देख रहा हूँ, उस इंसान को जो मिली है
0: सफलता,
1: उसके पास क्यों, मेरे
0: जो
1: पास
0: जो आप क्रिएट करेंगे सफलता, इनको क्यों मिल रही है?
1: मतलब लक्ष्मी को देखकर किसी के पास पैसा

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर

0: काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर. तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है. आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ ज्ञान की कुछ बातें, तो आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं बच्चों से अपेक्षाएं नहीं उनकी क्षमता बढ़ाएं। वर्तमान समय बच्चों की शिक्षा तथा आजीविका को लेकर प्रत्येक माता पिता अत्यधिक सचेत, प्रयासरत और चिंतित भी है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन करके दिखाए, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करे, शीर्ष स्थान पर पहुँच कर दिखाए, जिससे कि माता पिता का सर समाज में, गांव में, शहर में ऊंचा हो। इन्हीं अपेक्षाओं को लेकर ज्यादातर बालकगण बच्चों पर पढ़ाई को लेकर निरंतर दबाव बनाते जा रहे हैं। बच्चों से असीमित अपेक्षाएं माता पिता की आंखों को धुंधला कर रही है, जिसके कारण उनको बच्चे की क्षमता, रुचि, दक्षता, कौशल, कला, समस्याएं और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के अपने सपने नजर नहीं आते। इसके फलस्वरूप यही देखा जाता है कि प्रत्येक माता पिता खुद के सपनों व अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पर डालते जाते हैं। प्रिय बालकगण और माता पिता, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर अपेक्षा न रखें या उनके लिए सपने न देखें। जरूर सपने देखें, परंतु ध्यान रहे कि खुद के सपने बच्चों से पूरे कराने के बजाय बच्चे को उसका अपना सपना पूरा करने में सहयोग करें। बच्चों से अपना सपना पूरा कराने के लिए बच्चों के सपनों की बलि ना चढ़ाएं, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। तो हम चर्चा कर रहे थे बच्चों से अपेक्षाएं नहीं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाएं। उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। हर कोई दूसरे के सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करते करते स्वयं के सपनों की कुर्बानी देता है। किसी भी इंसान को पूर्ण संतुष्टि और खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह स्वयं का सपना पूर्ण नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपेक्षाओं की। बच्चों पर अपेक्षाएं नहीं बल्कि विश्वास रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपेक्षाएं बढ़ाने से बच्चों का प्रदर्शन बेहतर नहीं होता, बल्कि बच्चों की क्षमता बढ़ाने से उनका प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतर होता है। अपेक्षा रखने से पहले बच्चे की क्षमता की जांच करें, बच्चे की रुचि व सपने की पहचान करें। बच्चे की जो कार्य क्षमता है उसकी भी जो भी कार्य कुशलता है, दक्षता कौशल व कला को विकसित करने पर जोर लगाएं, प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, सपने देखना व पूरे करना सिखाएं। फिर जब बच्चे के अंदर वो क्षमता एक बार आ जाए तो यकीन मानिए आपका बच्चा आपकी अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन करके दिखाएगा। जो सपना आपने अपने लिए देखा था उसे भी पूरा करके दिखाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी पालकगण व माता पिता तथा बच्चों के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इसकी

नमस्कार। तो फिर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे बच्चों से अपेक्षाएं नहीं उनकी क्षमता बढ़ाएं। एक होता है तुलना करने की, बच्चों की तुलना न करें, अपने बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से कभी न करें, क्योंकि हर एक बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। जब हम बच्चों की तुलना करने लगते हैं तो बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है, वे हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर उनकी कार्य क्षमता गिरने लगती है, जिसके कारण वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? तुलना करने की जगह आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें सकारात्मक संकल्प दें, जैसे तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, सफलता तुम्हारे लिए ही बनी है, ऐसे ऐसा बोले उसे, ऐसे ऐसे संकल्प दे उसे। हाँ, जब ऐसे संकल्प वो विचार बच्चों को देंगे तो बच्चे जो हैं, बच्चों में उत्साह बढ़ेगा और उनकी कार्य क्षमता भी तेजी से विकसित होगी। असफलता में भी बच्चे को साथ दें। कभी कभी बच्चे असफल भी हो जाते तो उसमें हमें बच्चों को साथ देना चाहिए। बच्चों का साथ माता पिता को बहुत जरूरी, माता पिता के साथ से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चों की हर असफलता में उसके साथ खड़े रहें। ऐसे समय पर बच्चों की जो भावनात्मक जो है उनको भावनात्मक उनको सहयोग चाहिए। सहयोग की बहुत जरूरत होती है। माता पिता ही बच्चे के सबसे करीब और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। भावनात्मक सहयोग देने का अर्थ यही है कि बच्चे की सफलता माँ बच्चे की जो असफलता को माता पिता स्वीकार करें और बच्चे को यह विश्वास दिलाएं कि तुम्हारे बार बार असफल होने पर भी साथ और सहयोग देने के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आपका ये कथन हाँ आपके प्रति बच्चे का विश्वास बढ़ाएगा और यही विश्वास बच्चे का आत्मविश्वास बनेगा और यही आत्मविश्वास आपके बच्चे को हर क्षेत्र में असीम सफलता दिलाएगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कोयल फड़क के मस्त करे, जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे, तबले की थर।
1: शामिपुर पर, शामिपुर पर सजे

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

फिर कहाँ तक चले, हाय हाय फिर कहाँ तक चले, जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में।

01-02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में

0: नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं मीका जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, खुश रहो, खुशियां बांटो। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक विशेष मेहमान, तो चलिए उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जानेंगे उनके बारे में। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में और आपके बिजनेस के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद बेहरा है और हमारा जो बिजनेस है वो पुणे महाराष्ट्र में है, बट हम ऑल ओवर भारतवर्ष में और ग्लोबली हम काम करते हैं। हम स्पेशली वाटर रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि हमें सिखाया गया है कि जल ही जीवन है, तो हम जल को भी धन और जीवन समझ के इसमें हमारी सेवा देते हैं। तो हमारा जो काम है वो वाटर प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड ट्रीटमेंट इसमें है, जिसमें हम हर तरीके का पानी शुद्ध करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, अलग अलग तरीके के यूसेजेस के लिए उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए, हमें नदी का पानी पीना चाहिए, झरने का पीना चाहिए, बट आज जो पोल्यूशन हुआ है, जो प्रदूषण हुआ है, उसके कारण हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो जैसे कि हम सीखे हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी ही है और हर बीमारी पानी से हो सकती है, तो हमने जो अभ्यास किया है कि हर बीमारी पानी से ठीक भी हो सकती है, तो हमें बहुत उच्च क्वालिटी का प्योर, नॉट ओनली प्योर बट आल्सो हेल्दी पानी हमें पीना चाहिए। तो ये जो पानी है हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो बॉडी को हमें मिनरल्स, विटामिन्स जो भी चाहिए, या हमें हाइड्रोजन युक्त पानी पीना चाहिए, तो ये पानी के हम यंत्रणा बनाते हैं, इसको सप्लाई करते हैं और इसको रिपेयर करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, इसकी AMC सर्विसेज देते हैं, और हम जो भी MNC बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको भी एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशन देते हैं, जो कि बॉटल वाटर खरीद के पीते हैं, तो उसका जो खर्चा है वो बहुत ही महंगा जाता है, और एंड ऑफ द डे वो प्योर वाटर तो पी रहे हैं बट हेल्दी वाटर नहीं पी रहे। तो हम क्या करते हैं, इनको सेंट्रलाइज सिस्टम देते हैं जहां से इनको 365 दिन प्योर एंड हेल्दी पानी मिलता है, जो कि उनकी हेल्थ भी बचती है और उनका बहुत सारा मैन पावर, ऑपरेशन कॉस्टिंग एज वेल एज

0: दी कमर्शियल पार्ट वो बहुत ज्यादा सेव करते हैं।
1: जी सर, तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे यही बिजनेस करना है या इसी फील्ड में आगे बढ़ना है?
0: एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो MN इंग्लिश हुआ है। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैंने मल्टीपल फाइव स्टार होटल्स में काम किया, मैंने मुंबई दिल्ली ऑल ओवर इंडिया मैंने काम किया। उसके बाद मैंने एयरलाइन ज्वाइन की एंड मैं एयरलाइन में काम करता था। तो उसके बाद मुझे मेरे एक दोस्त ने ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और ये बिजनेस इतना बूमिंग था जब मैंने एनालिसिस किया कि आगे जाके पानी तो शूट करना ही करना है और जो ऊपर का स्थलीय जल है वो खत्म हो रहा है और जो भी है वो प्रदूषित हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जमीन के अंदर से पानी निकाल जो कि है बोरिंग, तो उसका पानी इतना क्षार है, तो हमें जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो उस हिसाब से पानी को ट्रीटमेंट किया और पानी की बेसिक नीड ये बढ़ने वाली है, ये मुझे समझा। मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, मैंने 5 साल जॉब किया, एज अ ग्लोबल हेड काम किया, मैंने बहुत सारे विक्रेताओं को या ग्राहक से बात किया। मुझे ये लाइन का समझा कि एक प्रॉपर कंपनी नहीं है जो इनको सॉल्यूशन दे रही है, अगर दे रही है तो वो मल्टीपल कस्टमर करने के चक्कर में क्वालिटी डाउन कर रहे हैं और कंपटीशन के चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन कर रही है जो कि एक्चुअली पानी की क्वालिटी डाउन कर रही है। ये सब इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो जब मुझे समझा कि ये इनडायरेक्टली हेल्थ प्रोडक्ट है, देखो आप फ्रिज खरीदते हो, मिक्सर खरीदते हो, ओवन खरीदते हो, ये तो होम अप्लायंसेस में आ जाता है राइट, बट जब आप वाटर प्यूरिफायर खरीदते हो मुझे नहीं लगता कि वो होम अप्लायंसेस है, वो एक हेल्थ प्रोडक्ट है। अगर आप पैसे कम करने के चक्कर में 365 दिन खराब या घटिया क्वालिटी के प्लास्टिक के अंदर अगर पानी स्टोर करके आप पी रहे हैं तो यू आर प्लेइंग विथ योर फैमिली एंड हेल्थ और यही जाकर के हमें कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे रोगों से हमें आदि कर देता है। तो मैंने ये जब जाना कि इसका रूट कॉज है कि लोगों को एजुकेट करना कि जब आप प्यूरिफायर लेते हो आप ये मत देखो कि कितने कम में लिया, आप ये देखो कितना अच्छा लिया। प्राइजेस तो बढ़ती रहेगी, देखिए आप सोना खरीदने जाओगे तो सोना बोलोगे, बट मैं जाऊंगा तो बोलूंगा 24 कैरेट सोना देना। ये बहुत डिफरेंस है और ये समझाना मार्केट में बहुत हार्ड है। कॉम्पिटिशन में अगर हम बोलते हैं कि हमारा प्यूरिफायर 20,000-25,000 में आता है तो लोग बोलेंगे यार हमारे यहाँ पे तो 5,000 का भी आता है। सो इनको एजुकेट करने का जो गैप है वो छोटे दुकानदार नहीं कर पाते। तो ये इनिशिएटिव मैंने लिया, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल। मैंने आज तक 1600 प्लस जो वाटर प्यूरिफायर विक्रेते हैं इनको ट्रेन किया कि किस तरीके से आप कस्टमर को समझा सकते कि प्राइसिंग इज नॉट मैंडेटरी, वो डिसीजन आप लीजिए। अभी मैम आप आओगे, हमारा भोसरी में एक शोरूम है जो कि आप AI में सर्च कीजिए या गूगल पे सर्च कीजिए, इंडियाज बिगेस्ट प्यूरिफायर वी हैव। तो बिगेस्ट क्यों है, क्योंकि हमारे पास 1000+ वैरायटीज है, प्लस आपको जो भी रेंज में चाहिए, मींस हमारे यहाँ पे मैम 500 से लेकर से घर के लिए 5 लाख तक है। जैसे विराट कोहली जी है या अनुष्का शर्मा जी, जैसे भी अक्षय कुमार जी है या बहुत सारे सेलिब्रिटीज या MLAs या स्पोर्ट पीपल आर माई क्लाइंट्स। जैसे कि पूना वाला है, डॉक्टर DY पाटिल कॉलेजेस है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इंडियन रेलवेज है और घोड़ावत है, संजय घोड़ावत ग्रुप है, कृष्णा डायग्नोसिस है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं। तो ये इंटरनेशनली स्प्रेड है और जो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये मैं क्यों किया, क्योंकि मुझे ह्यूमन काइंड में काम करना था, लोगों के हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वहां पे मेरा कुछ तो मुझे मेरा योगदान देना था कि कहीं पे तो 0.1% अगर भी मेरी हेल्प हो जाए, कुछ फैमिलीज को अगर मैं अच्छा फिल्टर या इनडायरेक्टली अच्छे हेल्थ दे पाऊं, तो इसीलिए मैंने ये बिजनेस लाइक अडेप्ट किया एंड मैंने 2020 में ये कंपनी स्टार्ट की। आज 2025 में हम 7 देशों में काम कर रहे हैं।
1: जी सर, तो जैसे कि आपने बताया कि ये बिजनेस चालू करने से पहले आप जॉब करते थे,
0: जी,
1: तो देयर यू यूज्ड टू वर्क अंडर समवन बट नाउ यू हैव अ डिफरेंट टीम, राइट?
0: यस मैम।
1: तो उस टीम को आप कैसे मैनेज करते हैं, वो वाला मतलब जॉब करने का एक्सपीरियंस और अभी टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस, हाउ इज दैट?
0: काफी बढ़िया क्वेश्चन है मैम, ये इस क्वेश्चन से बहुत लगाव है मुझे और यही क्वेश्चन मुझे जब बार बार मेरे दिल में आता था कि हम तो काम करते हैं, हम एक बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारा फाइनेंशियल सोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, हमें हमारे लेगेसी से भी बिजनेस समझना चाहिए।

0: आपका व्यवसाय करना है तो आपको गाय लगेगी। गाय लगेगी तो आप क्या करोगे, अभी कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे? तो मैं बोलूंगा हाँ मैं क्या करूंगा, मैं गाय लाऊंगा और काम चालू करूंगा। बोले रॉन्ग, आपको गाय नहीं लेना है, आपको पहले गोठा बांधना है फिर गाय लाना है। आप गाय लेके आओगे फिर बोलोगे मैं गोठा बांधूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने ये जो सीख मुझे थी तो मेरे दिमाग में बैठा कि हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए या कस्टमर चाहिए? तो मेरे दिमाग में आ गया हमें पहले कस्टमर चाहिए, हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए। प्रोडक्ट लेके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मैम, कस्टमर नहीं है। तो मुझे जब समझा कस्टमर चाहिए, और कस्टमर लाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, फाइनेंशियल कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती, फैक्ट्री डालने के लिए पैसे हाँ जरूर लगते। तो इससे मैंने क्या किया, कोविड में बैठ के मैंने 1000+ वाटर प्यूरिफायर विक्रेता को कॉन्टेक्ट किया। तभी टाइम भी था, सबके पास कोई बिजी नहीं था, और तभी मैंने पूछा कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है, आपके कस्टमर्स के क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं अर्लीस्ट कंपनी में काम कर रहा था, मुझे बेसिक नॉलेज था, तो मैंने ये क्वेश्चनरीज बनाई, इनका आंसर लिया, तो मुझे बहुत बुलेट पॉइंट्स मिले कि इनको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, टाइमली सर्विस नहीं मिल रहा है, इनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। मैंने कि प्रोडक्ट तो लेके आए बट कैसे बेचे नहीं पता है, या कैसे प्रॉफिट मुनाफा कमाए वो नहीं पता, कस्टमर को कैसे रिटेन करे वो नहीं पता। तो ये मैंने उनको सिखाया, देन मुझे मेरे डीलर बेस बन गया मेरा। अभी डीलर बेस बनने के बाद प्रोडक्ट देने के लिए कोई भी रेडी हो जाता है, आप गुजरात फोन करोगे, दिल्ली फोन करोगे। अभी मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइनर है, मैं डायरेक्टली इम्पोर्ट भी करता हूँ, तो दिस डीलर आर हैप्पीली टेकिंग मटेरियल फ्रॉम मी। तो इसलिए मैंने इस तरीके से मेरे माइंड में आया कि चलो हम ये काम करते हैं, और इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया, स्टार्ट किया।
1: जी सर, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हैं या कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस होता है या मानसिक तनाव होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस या ध्यान वगैरह कुछ करते होंगे तो?
0: मैम एक्चुअली मेरा भी मन बहुत विचलित रहता है, मैं बहुत ही बटरफ्लाई माइंडेड हूँ, बट मेरा मेडिटेशन आप बोल सकते हो कि मैं ऐसे एक्चुअली बैठ के मेडिटेशन नहीं करता हूँ, बट मैं सुबह में 2 या 3 मिनट का एक मौन व्रत रखता हूँ उठने के बाद। शायद से वो एज अ मेडिटेशन की तरह वो काम करता होगा, या मेरी एक स्किल है मैम, मैं कोई भी कुछ भी सोचता हूँ तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ एंड एक ब्लैंक पेपर लेता हूँ, मुझे किसी को समझाना होगा तो मैं उस पर ड्राइंग बनाता हूँ, उसको मैं हायरार्की वाइज या पॉइंट वाइज लिंक वाइज पूरा टेबल वाइज उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं वो बताते बताते खुद समझ जाता हूँ, और उसमें ही मेरा मीन्स लाइक मेडिटेशन का एक फ्लो रहता है कि हाँ आगे क्या आगे क्या, तो मुझे वो विजन दिखता है कि इसके आगे क्या है इसके। तो मैं अगर आंखें बंद करता हूँ तो मुझे कुछ बातें से प्रतीत होती है कि हाँ अभी ये होने वाला है, जरूरी ना है कि वो वही वैसे ही होती है, बट हाँ मैम 60-70% तो होती है।
1: जी सर, बहुत बढ़िया। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माय एनर्जी लाइक दिस। माय एनर्जी इज फॉर अ पर्पस ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज, दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

तरस है, क्यों न ले इसी वतन में फिर से एक जन्म। हम के हैं।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

Come on.

दुनिया कहती मुझको पागल, अरे मैं कहता दुनिया को पागल। हाय हाय मेरा दिल।

0: नदिया ओए भाई तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ओए ओए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: गोरी गोरी गोरी भड़के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय नटखट रंगीले आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ कवरिया हाय हाय
0: ले गई मेरा दिल तेरी फिर की नजरिया ओ गुजरिया।

0: बचा लूंगी और बचाओ हमरे हमरे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना बचा लूंगी और।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: अरे नैना हम मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना दे बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे बैठे कटरिया, ओ कवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया,
0: आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ कवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ कवरिया
1: ओ गुजरिया।

एक रानी को, धूप की एक मस्तानी को, मस्ती भरी जवानी को। हाय रे हाय, मैंने देखा जी। हाँ हाँ जी, मैंने देखा जी।